ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 24वीं तिथि। तदनुसार 14 मई 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं को सुप्रभात।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी

0: हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात करेंगे।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect।
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। लीजिए अब सुनिए, चिंतन विषय है स्वाध्याय। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ। हम कितने भी ज्ञानी ध्यानी हो जाएं, कुछ न कुछ सीखने समझने की गुंजाइश सदैव बनी रहती है। हमारे यहाँ ये भी कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। निरक्षर लोग भी ज्ञानी बन सकते हैं, बशर्ते वे निरंतर सीखने का अभ्यास करें। हम जब छोटे होते हैं, अक्षर भी ठीक से नहीं लिख पाते, तब निरंतर अभ्यास करवाए जाने के कारण हम अक्षरों को लिखना सीखते हैं। उसके बाद लिखे हुए वाक्यों को पढ़ना सीखते हैं। धीरे धीरे हम स्मृत होते चले जाते हैं। जो लोग सीखने की दुनिया से दूर रहते हैं, वे जीवन भर निरक्षर बने रहते हैं। हमें सीखने से ही आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। गुरु हमसे बड़ा हो यह जरूरी नहीं, हमसे गुरु छोटा भी हो सकता है। जो हमें बेहतर गुरु सिखाए वह हमारा गुरु, फिर चाहे वह छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। बस सीखने की ललक होनी चाहिए हमारे

माता पिता ने बचपन से ही सीखते रहने के जो संस्कार दिए वे अब तक हमारे काम आ रहे हैं। माता पिता के संस्कारों के कारण ही आज भी हम सीखने में परहेज नहीं करते, समय समय पर तकनीकी जानकारी हासिल करते रहते हैं। तो चलिए आज हम सब मिलकर इस सुप्रभात वेला में संकल्प करें कि हम नित्य कुछ नया सीखेंगे।

0: इसी देशभक्ति गीत के साथ वंदना कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क ऋषि बोले, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तो धूल भी उसके लिए पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता काल स्वरूप।

और मामूली रस्सी सांप के समान काटने वाली बन जाती है। राजा प्रताप भानु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों द्वारा अभिशप्त होकर राजा प्रताप भानु कालांतर में रावण नामक राक्षस हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा और मंत्री धर्मरुचि ने अपने ज्ञान, विवेक तथा आस्था के कारण विभीषण का शरीर पाया। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने कठिन तपस्या की। अपने उग्र तप के कारण रावण ने ब्रह्मा और शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर कोई उसका वध न कर सके। कुंभकर्ण का आहार देख ब्रह्मा भी आतंकित हो गए, अतः सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने उसकी मति फेर दी और उसने 6 महीने की नींद और मात्र 1 दिन का जागरण मांगा।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

प्रातःकालीन सभा में शेष व सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर में यानी 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती निबात। 6:50 पर समय रहेगा लोक संगीत का। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। 7:30 10 बजे व 12 बजे समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे कुछ दिल से कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत।

9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से 9:10 और 11 बजे समय रहेगा सुगम संगीत का। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

सायंकालीन सभा में 5:05 पर आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम। 5:30 और 9:00 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार व 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 7:00 समय रहेगा किसानवाणी कार्यक्रम का।

7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम, 8:45 पर समाचार संध्या, 11:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, 10:00 समय रहेगा फिल्म संगीत का।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना चुनिंदा स्वसाथियों के स्वर में लोक संगीत। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन, और वातायन के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता, और वार्ताकार हैं डॉक्टर अर्पिता जैन।
1: पहले समय से एक आम कहावत है, भोजन को अपनी औषधि बनाओ और औषधि को अपना भोजन बनाओ। इसलिए पोषण संबंधी समस्याओं पर बात करने से पहले हम ये जान लें कि भोजन और पोषण के बीच अंतर क्या है। हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से भोजन एक है। भोजन हमें दो स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला है पेड़ पौधे, जैसे अनाज, फल, सब्जियां, दालें, दलहन, और दूसरा स्रोत है पशु, जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली। तीसरी चीज है कि आजकल हम तेल, घी, बटर, इनका प्रयोग भी ज्यादा करते हैं, इनके हम टीवी पर एडवर्टीजमेंट्स भी बहुत देखते हैं, तो ये भी हमें पेड़ पौधों से और पशुओं से ही प्राप्त होता है। व्यक्ति के खाने की आदतें कोई सी भी हो, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, भोजन से पोषण प्राप्त होता है, या सरल भाषा में कहूं कि जो भी भोजन खाया जा रहा है वो हमें पोषक तत्व देते हैं। भोजन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और रेशा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, और ये जो पोषक तत्व हैं, ये शरीर के अंदर वृद्धि और विकास का काम करते हैं। पूरे दिन के काम के बाद शरीर में जो टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत, शरीर का रख रखाव, शरीर की बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं जो आपके बस में नहीं है, जैसे दिल का धड़कना, रक्त का संचार होना, पलकें झपकना, जो हमारा दिमाग है वो सोते वक्त भी चलता है, कार्य करता है, शरीर के अंदर प्रजनन क्षमता का विकास होना, और प्रतिरक्षा, तो ये महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। इसलिए सही समय पर, आयु के अनुरूप, लिंग के अनुरूप और सही मात्रा में संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। संतुलित आहार का मतलब है कि आवश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा में आहार के माध्यम से दैनिक जीवन में लेना। तो जब कोई व्यक्ति संतुलित आहार लेता है तो उसका पूरा स्वास्थ्य बेहतर बनता है, शरीर में होने वाली सारे जो कार्य हैं, सारी प्रक्रियाएं हैं, वो बहुत सुगमता से, बहुत आसानी से चलती हैं और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इन पोषक तत्वों के अलावा पानी भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि जो पानी है वो कोई पोषक तत्व नहीं है, लेकिन शरीर का तापमान बरकरार रखने के लिए, शरीर में द्रव्य संतुलन बनाए रखने के लिए, या सरल भाषा में कहूं कि जो बीपी है, रक्तचाप, उसको बनाए रखना है,

और शरीर में जितना भी हम पोषक तत्व हमारे शरीर में जा रहा है जो हम खाना खाते हैं, तो इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है तो उसके लिए पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अभी गर्मी प्रचंड रूप ले रही है तो पानी की जो महत्वता है हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। भोजन और पोषण का महत्व किसी से नहीं छुपा है और सरकार भी इस बात पर बहुत ध्यान दे रही है। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पोषण पखवाड़ा के तहत जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं, केवी के हैं, आंगनबाड़ियां हैं, वहां पर पोषण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बच्चों को, महिलाओं को, बड़ों को पोषण संबंधी जानकारी दी जाती है ताकि वह अपने स्तर पर खान पान में परिवर्तन कर या कोई अगर आदतों में त्रुटियां हैं तो उन्हें सुधार कर अपना पोषण स्तर सुधार सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब वो स्वस्थ हैं। ये धारणा बिल्कुल गलत है। एक स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर खुश है। इन तीन स्तर पर भी व्यक्ति खुशहाल और स्वस्थ होगा तभी वह स्वस्थ कहलाएगा। अब हम बात करते हैं बांसवाड़ा जिले के निवासियों की, जहां पर खास तौर पर बच्चे और महिलाएं, इनके अंदर गंभीर पोषण संबंधी समस्याएं देखी गई हैं। सामान्य कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं उसमें बौनापन, एनीमिया, विटामिन ए की कमी और कुपोषण शामिल है। एनीमिया की उच्च दर सबसे ज्यादा बच्चों और आदिवासी महिलाओं में देखी जाती है और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जब एक महिला कुपोषित है तो जब उसकी संतान आएगी तो वो भी कुपोषित ही होगी और इसी तरह से अगर आगे जनरेशंस बढ़ती हैं तो सभी लोग कुपोषित होने की उनकी समस्याएं रहती है। अब हम एक एक पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे कि इनके कमी होने के क्या कारण है शरीर में, आप घरेलू स्तर पर किस तरीके से इनका उपचार कर सकते हैं, इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए हमारे शरीर के अंदर आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली या त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में, दांतों और हड्डियों के विकास और रख रखाव में भी विटामिन ए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा शरीर के अंदर कैरोटीनॉइड युक्त कण होते हैं जिन्हें अगर फ्री छोड़ दिया जाए या वो शरीर में किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और फ्री हैं तो वो बीमारियों की वजह बनते हैं। तो ऐसे जो कण हैं वो आगे चल के अगर लंबे समय तक शरीर में उपस्थित हैं तो मधुमेह या अन्य प्रकार की बीमारियों की वजह बनते हैं और कैंसर का भी एक प्रमुख कारण है। तो बहुत सारे कैंसर से बचाव के लिए या ये जो लाइफस्टाइल से, हमारी दैनिक जीवन शैली से जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, इनसे बचाव के लिए भी विटामिन ए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर स्पष्ट कारणों की बात करें तो विटामिन ए की कमी उन लोगों में पाई जाती है जो बहुत लंबे समय तक ऐसा आहार ले रहे हैं जो विटामिन ए में कम है, या किसी भी कारण से शरीर में विटामिन ए इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। खाते तो हैं आहार में लेकिन शरीर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता है। लिवर संबंधी अगर कोई समस्या है तो भी विटामिन ए की कमी हो जाती है। बरसों पुरानी अगर कोई स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जैसे कि दस्त लगना है बार बार, सीलिएक रोग है, फिब्रोसिस है, पैंक्रियाज है, या किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई है, उसके बाद में शरीर विटामिन ए को इस्तेमाल कर पाने में असक्षम है, तो इन कारणों की वजह से विटामिन ए की कमी हो जाती है। और जब शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो सबसे पहला लक्षण आएगा रतौंधी। ये शुरुआती लक्षण है और अगर ध्यान न दिया जाए तो नेत्रहीनता आ सकती है। इसके अलावा आंखों में सूखापन, त्वचा में सूखापन, चमड़ी का क्षतिग्रस्त होना, बार बार संक्रमण होना, ये भी विटामिन ए की कमी को दर्शाते हैं। तो बहुत आसान है।

0: विटामिन ए की कमी को पूरा करना। कई दिनों तक अगर विटामिन ए की थोड़ी ज्यादा खुराक ली जाए तो इस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। पत्तेदार जो फल सब्जियां हैं जैसे केल सलाद के रूप में खाया जाता है, पालक, ब्रोकली मतलब हरी फूल गोभी, नारंगी या पीली सब्जियां जैसे गाजर, शक्करकंद, कद्दू, अभी आम का मौसम है, या फिर टमाटर, लाल, पीली, हरी शिमला मिर्च, खरबूजा। पशु स्रोतों के बारे में बात करें तो लिवर, अंडे की जर्दी, डेयरी के उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम, ये भी बहुत अच्छे विकल्प हैं विटामिन ए के। भारत सरकार द्वारा एनीमिया के उपचार के लिए बहुत सारी सरकारी कार्यक्रम लागू किए गए हैं जो किशोर अवस्था में लड़के और लड़कियों के लिए हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए हैं। पहला कार्यक्रम है साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरण। 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को हर मंगलवार को गुलाबी रंग की आयरन की गोली दी जाती है और 6ठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नीले रंग की गोली खिलाई जाती है। इसके अलावा एनीमिया मुक्त भारत, राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन, पोषण अभियान, राष्ट्र पोषण एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्र आयरन प्लस पहल, ये कार्यक्रम हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप इन सभी कार्यक्रमों की जानकारी आंगनवाड़ी से, आशा दीदी या प्राथमिक उपचार केंद्र है या अपने डॉक्टर से ले सकते हैं। संतुलित आहार लें, सरकारी जितनी भी जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ उठाएं, मादक पदार्थों के सेवन से बचें ताकि जो भी पोषक तत्व आप आहार के माध्यम से ले रहे हैं वो शरीर बहुत आसानी से अवशोषित कर पाए, और नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूर करें। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वातायन, और वातायन के अंतर्गत आपने सुनी वार्ता, और वार्ताकार थी डॉक्टर अर्पिता जैन। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। अपेक्षा विविध भारती के कार्यक्रम।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आप सभी को नमस्कार। सविता सिंह का
1: मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। मैं तुझे प्यार करूंगा।

प्रेम कहानी फिल्म का गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे। इसे आनंद बख्शी ने लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तर्ज बनाई थी। लीजिए अब सुनिए जख्मी फिल्म का गीत। ये आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, गौहर कानपुरी की ये रचना है और बप्पी लहरी की तर्ज।

0: तुम्हें आजा कोरी चोरी चोरी
1: तो रहा नहीं जारे
0: ए आजा कोरी चोरी चोरी
1: तो रहा नहीं जारे
0: हाय रे हाय रे हाय रे।
2: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

फिर कब मिलोगी। यह फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें थी और संगीतकार थे आर डी बर्मन। लीजिए आप सुनिए लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में हाथ की सफाई फिल्म का गीत। गीत गुलशन बाबरा का है, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

हाथ की सफाई फिल्म का गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे। गीत गुलशन बाबरा का था, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश और साथियों की आवाजों में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत।

0: रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मुकेश के और साथियों की आवाजों में आपने अभी सुना। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।
1: FM बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः की 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

0: के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
2: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिविंग संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
3: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
6: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश

0: आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती

0: लेकर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू प्याज फल सब्जियों अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएम बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 8:15 में है। श्रोताओं, अब पेश है कुछ दिल से कार्यक्रम।

बचपन को कौन है भूलना चाहता, क्योंकि हर किसी को ये बहुत भाता। याद आते हैं वो खट्टे मीठे पल, जब जिया करते थे बिना अलछल। सभी कुछ दिल से कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को खुशबू जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बचपन की यादों को याद करने से हमें बीते दिनों की अनुभूति होती है। ये बचपन की यादें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए बसी रहती हैं। कुछ यादें हमें जीवन के सुखद पलों को याद दिलाती हैं, वहीं कुछ यादें हमें डरा भी देती हैं, क्योंकि बचपन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभव होते हैं। ये बचपन की यादें हमें जीवन के कठिन दिनों को खुशी और उत्साह से गुजारने में मदद करती है। ये कठिन परिस्थितियों से पार पाने और उनसे लड़ने की शक्ति देती है।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे, RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। श्रोताओं, हम सभी को अपने बचपन के दोस्त, उनसे जुड़ी रोचक घटनाएं, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और न जाने कितनी ही बातें याद रहती हैं। बचपन एक प्यारा समय होता है जिसे हर कोई याद रखता है। ये वो दौर है जिसे हर कोई संजो कर रखता है, क्योंकि यही हमारे विकास की नींव रखता है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, बचपन में हम बेफिक्र और मासूम थे। हमें ईर्ष्या का मतलब नहीं पता था और न ही दूसरों को लेकर कोई हीन भावना थी। वो समय खेलने, पढ़ाई करने और छुट्टियों का था। हम बिना किसी रोक टोक के अपना मनपसंद खाना खाते थे, भाई बहनों पर शरारतें करते थे और माता पिता के गुस्से का सामना करने पर उनका साथ देते थे। वो दिन तो कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन हम बचपन की उन यादों को संजो कर रख सकते हैं।

श्रोताओं, बचपन हर किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। बचपन की यादें हमें कई तरह के अनुभव देती हैं। बचपन हमने जो कुछ भी सीखा होता है वो लंबे समय तक याद रहता है। कुछ अनुभव आनंददायक होते हैं जबकि कुछ हमें सबक सिखाते हैं। ये सबक हमें जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहने की शक्ति देते हैं।

श्रोताओं, दादा दादी का प्यार और उनकी देखभाल हमें हमेशा प्रेरित करती है। उनके साथ बिताए हुए पल हमारे लिए अनमोल होते हैं। वे अनुभव न केवल हमारे बचपन को खुशहाल बनाते हैं, बल्कि हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। श्रोताओं, इसी के साथ इजाजत दीजिए खुशबू जोशी को कार्यक्रम समाप्त करने की।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत नेहा काले के स्वर में।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना राजस्थानी लोक संगीत नेहा काले के स्वर में, प्रातः के 9 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर। मेड़ता सिटी में राव दूदा और जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और युवाओं से कृषि से जुड़ने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने देर रात 187 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी, हालांकि सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे नागौर के मेड़ता सिटी में मेड़ता के संस्थापक राव दूदा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इनके अलावा केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर, पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। प्रतिमा अनावरण के बाद जनसभा का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय रक्षा मंत्री चार भुजानाथ मंदिर और मीरा मंदिर दर्शन के लिए भी जाएंगे। इसके बाद वे जोधपुर पहुंचेंगे। वहां श्री सिंह रातानाड़ा चौराहे पर आयोजित पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेंगे। समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और रासायनिक खाद के प्रयोग से बचने की अपील की है। उन्होंने युवा पीढ़ी से खेती और कृषि से जुड़ने के साथ स्थानीय पैदावार के अनुसार प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने को कहा है। मुख्यमंत्री कल जालौर के पंसेरी गांव में किसानों और पशुपालकों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है, ताकि राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान चलाकर प्रदेश की सभी पंचायतों के सुनियोजित विकास का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से भी संवाद किया। महिलाओं ने उनसे अपने अनुभव साझा किए। श्री शर्मा ने कहा कि राजीविका से जुड़ने के बाद राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं।
1: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह योजना राजीविका की लखपति दीदी की योजना ये चलाई है। आज इसमें 22 लाख बहनों को ट्रेनिंग इसमें राजस्थान के अंदर मिली है और लगभग 17 लाख बहन हमारी लखपति दीदी बन गई है।
0: मुख्यमंत्री ने आज सुबह पंसेरी गांव का पैदल दौरा भी किया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के

0: मौसम को देखते हुए प्रदेश में पेयजल और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पानी और बिजली आपूर्ति को लेकर आमजन को किसी तरह की परेशानी न हो, इस संबंध में शिकायतें मिलने पर संबंधित जिला कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। श्री शर्मा ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर नियमित रूप से पानी बिजली आपूर्ति को लेकर साप्ताहिक बैठकें कर मॉनिटरिंग करें और संबंधित शिकायतों का विभागीय अधिकारी प्राथमिकता के साथ तुरंत निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान आमजन को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने पेट्रोल डीजल बचत के लिए सभी अधिकारियों को वाहनों का कम से कम उपयोग करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कार पूलिंग व्यवस्था अपनाने के निर्देश दिए। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। वैश्विक नेता नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार ने देर रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 187 अधिकारियों के तबादले किए। तबादला सूची में 70 से अधिक एसडीएम और 35 एडीएम, 8 जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और 16 विकास प्राधिकरण तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। साथ ही सचिवालय और संयुक्त सचिव स्तर के 15 और विभिन्न विभागों के 20 निदेशक और अतिरिक्त निदेशक इनमें शामिल हैं। तबादला सूची में बीकानेर के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जसवंत सिंह को पंचायती राज विभाग में अतिरिक्त आयुक्त और संयुक्त शासन सचिव तृतीय के पद पर, बीकानेर के अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन गोपाल राम बिरदा को जयपुर की जवाहर कला केंद्र में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर लगाया गया है। डॉ ज्योति चौहान का राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यकारी निदेशक से चिकित्सा शिक्षा विभाग में संयुक्त शासन सचिव के पद पर तबादला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को अपनी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि किसानों के हित में लिए गए इस फैसले से उनके जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की भारत वापसी हुई है। इसका उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
1: ऐतिहासिक एंटिक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटिक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटिक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कल सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू सहित कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई। चूरू में एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि मौसम में आए इस बदलाव

0: के बावजूद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी रहा। कल 5 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। फलौदी प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान करीब 47 डिग्री और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री दर्ज हुआ। भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं आगामी 48 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं बादल गरजने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर, मेड़ता सिटी में राव दूदा और जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और युवाओं से कृषि से जुड़ने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने देर रात 187 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी। हालांकि सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 103.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी पासवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः की 9:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे मेहंदी हसन की आवाज में कुछ गजलें।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं मेहंदी हसन की आवाज में कुछ गजलें।

लेकिन तैयार रहिए इसमें आप नए पहलाओं के साथ, कोशिश करूंगा मैं जो कि कोशिश करूंगा जो अलग होंगे, जो आप लोगों की टेपों में नहीं हो शायद।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुनी मेहंदी हसन के स्वर में कुछ गजलें। प्रातः के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
0: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
0: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
0: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
0: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
0: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी। जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
0: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी
0: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
0: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
0: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
0: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या

0: ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
0: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें। उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या न करें,
0: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं
0: जी।
1: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी
0: जी।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ।
0: कमली और सोमारू चले घास ले।

0: कुछ घास, थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी, हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले, तब तो हम बरसें।

0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
1: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
2: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए।

0: टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
3: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
4: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर

0: राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
1: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
2: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
3: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
2: आजा खेलते हैं।
3: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
4: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
3: अच्छा वो क्या?
4: एक तो ये जलता हुआ स्टोव,
3: और दूसरा
4: हमारा धड़कता हुआ दिल।
2: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कडियाल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

0: तलवार भी।
1: आपके पास फौजी वर्दी है?
0: हाँ।
1: आपको अपनी वर्दी बहुत अच्छी लगती है ना?
0: बिल्कुल, मुझे अपना देश और वर्दी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। इस वर्दी को पहनकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और यही मुझे सैनिक के कर्तव्यों का एहसास कराती है।

0: लोगों का एहसास कराती है।
1: मेरे को भी ये वर्दी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं भी इसे पहनूंगा और देश की रक्षा करूंगा।
0: शाबाश पुत्र, शाबाश। देश को तुम्हारे जैसे निडर और साहसी बच्चों की ही तो जरूरत है।

बाणा सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी सर।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: देखो चुन्नी लाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी, और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे।
3: ठीक है,

0: सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
1: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
2: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
1: जी
0: अच्छा, बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।

0: नहीं रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूं।
1: ठीक है साहब। हाँ साहब, ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
3: जय हिंद कर्नल साहब।
4: जय हिंद बाना सिंह।
3: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
4: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
3: थैंक यू सर जी।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना, किन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा,

0: राजेश आहूजा, मंगतराम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा। तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार। ध्वन्यांकन दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: FM 96.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के 10 बजे हैं और आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम

मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे

0: पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया न्यूरस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
0: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: जी, वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी, खुश हुआ जी।
0: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
1: इस यात्रा का तो कोई भारत में खासतौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से ये काम हुआ और हो रहा है।
0: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
1: और यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुनकर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाजें कानों को इतनी अच्छी लगती है, फिर फिल्म म्यूजिक की तो मैं बाद में बात करूंगा, जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में सुपरस्टार हुआ करते थे, जिनकी आवाज सुना, अनाउंसर, न्यूज रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो दर्जा था, मतलब वो पॉपुलरिटी थी। तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं आपको, लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना, रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी शुरू हुआ था, तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक के रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं ये, कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूं कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस जमाने का फिल्म म्यूजिक तो अगर कहना ही क्या
0: जी,
1: तो जिनको जिस चैनल को सुन सुन के वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिन को सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
0: जी,
1: और न सिर्फ आऊंगा
0: बल्कि हेड करेंगे
1: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
0: वाह वाह वाह,
1: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ। कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक से एक टेबल में क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया भर का।
0: बात है, क्या बात है, मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युवाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युवाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताजा हो गई होंगी, मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताजा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युवाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युवाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी, पर क्या ये रेडियो

0: तक का रास्ता आसान था या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
1: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
0: बिल्कुल,
1: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज,
1: बड़े दिग्गज लोग, नंदलाल शर्मा जी, फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे,
0: गंगा प्रसाद जी,
1: हाँ हाँ, तो ये सब जो उसका मेयर था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
0: जी,
1: और
0: जी,
1: कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पर उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
0: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
1: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपने पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है, हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो सांस्कृतिक, मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए, तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला।
0: हम यहां एक पल के लिए रुकना चाहता हूं कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है इसके बारे में।
1: बिल्कुल सही है, वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरे पिताजी जो पोस्टल टेलीग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार, हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का।
0: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का, एक बुनियाद का शहर रहा है और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
1: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसजी जा चुके थे।
0: ओके,
1: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
0: जी।
1: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
0: क्या बात,
1: इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूं कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको वो काम नहीं मिला जिसके हकदार थे, वो दिलीप कुमार थे, वो
0: बिल्कुल
1: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ। तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग
0: जी,
1: ये सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे। तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप, दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक के कंसर्ट्स भी होते थे।
0: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं तो कैसा लगता है आपको?
1: ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहां से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहां पे टीम लेकर के, प्ले लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहां पे और अच्छा चल रहा है मुझे
0: जी।

0: और बातें करेंगे आपके बचपन की। हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस जिस दौर की हम बात करें उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए। हाय रे वो दिन क्यों ना आए,
1: अनुराधा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा
0: है ना, ये गाना सुन
1: रहे, पसंदीदा गाना है
0: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था? जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुना हो?
0: बिल्कुल
1: हाँ। तो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें वो राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ,
1: थे।
0: वो टूरिस्ट मैप पर था
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो राज मंदिर, जेम, पोलो विक्ट्री, ये सब उस वक्त फिल्में भी, मतलब आज कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती थी।
0: बिल्कुल
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए। तो उस वक्त वो जमाना था जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे। और फिल्मों का तो खैर दोहरिया लगता, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे ये सब भी होता था
0: जी, ये तो हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ
1: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी,
0: वाह वाह।
1: और कई फिल्में थी, और लंबी लंबी लाइनें
0: जी,
1: और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात। तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध भारती चल रहा है, फिल्म भी गा रहे हैं, कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और म्यूजिक ही था
0: जी,
1: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।

0: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था
1: ये, गाना चलता नहीं था
0: जी,
1: मैं गाता रहता
0: खुद गाते था
1: तो वो घर वाले भी बार बार तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
0: जी,
1: गुनगुनाने का शौक वो बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उस पर धुने भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वही का अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
0: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका?
1: हाँ, मेरे कहने गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी और बड़े भाई सब आज भी गायक हैं, वो सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से।
0: जी, रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
0: जी।
1: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था। हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
0: जी।
1: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे जो दोस्त है वो चला रहा है, हरि नारायण उसका नाम है। तो हम चार लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था।
0: वाह वाह।
1: और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उस वक्त मैं ज्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
0: बाबा
1: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
0: क्या बात है।
1: और एक नाटक जिसको बहुत ज्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कंपटीशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो बहुभाषी कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो।
0: हा, हा, हा,
1: हा। उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था। मतलब आज इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो, ईद हो और गणेशोत्सव हो। तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, यहाँ पे जयपुर में देख चुके हैं।
0: वाह वाह।
1: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
0: गजब।
1: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका की शाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी।
0: हा, हा।
1: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल,
0: क्या बात है,
1: इस नाम से किया। और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा।
0: वाह।
1: रविंद्र मंच पर टिकटेड हाउसफुल वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब पसंद किया और उसके बहुत शोज हुए।
0: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौरान?
1: नहीं, मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ।
0: अच्छा।
1: लेकिन उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से जा चुके थे
0: उस दौरान। हाँ, में जब आप
1: तो वो तो हमसे काफी से तो, लेकिन उनकी एमआर रोड से पांच बत्ती के पास में ही सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है
0: जी।
1: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी।
0: बिल्कुल।
1: फिर हमारे जो पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा।
0: जी जी बिल्कुल।
1: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही।
0: हाँ।
1: तो लेकिन इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे ये।
0: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे, उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे, किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
1: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, जब नाटक में तो नंबर वन हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे और उसके अलावा वहां पे जो आधा आधा घंटे के या एक एक घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपका नाम सुना होगा,
0: बिल्कुल,
1: गणपत लाल डांगी।
0: हाँ।
1: इनका हवा महल में
0: आज भी हवा महल में। हाँ। उनके नाटक ब्रॉडकास्ट होते हैं।
1: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेस लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
0: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
1: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था
0: जी,
1: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको।
0: अच्छा।
1: और आज भी शायद वही होगा कि अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहां पे कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह।
0: जी, तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
1: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था
0: जी,
1: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका,
0: बहुत ही मशहूर
1: हिंदुस्तान का, उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था
0: जी,
1: वो

0: राजस्थान में पहली बार हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा या, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था, उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था। उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहां काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है।
1: क्या बात है,
0: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई। मैंने वहां ज्वाइन किया, 1 साल वहां काम किया।
1: तो वहां तो पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे।
0: हाँ, बिल्कुल सब, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फाकीर
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से वो
1: ऐतिहासिक स्टेशन है जलंधर।
0: और वहां पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन सिंह मीशा
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पात्र, ये सब लोग वहां पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पात्र लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था एक तरह से,
1: बिल्कुल
0: पंजाब का जयपुर था वो। वहां बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था
1: जी।
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहां पे।
1: हाँ।
0: हिंदी का प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहां पे, हिंदी का पैक्स था वहां पे मैं, लेकिन एक से प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी,
1: थी जी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर में रहे?
0: 1 साल
1: जी। और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा
1: जी,
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहां पे
1: जी,
0: जो सुरजीत पात्र, वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले, मेरे सब
1: बिल्कुल
0: मिश्रा साहब को मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मेरा जयपुर में शुरू हो चुका था
1: जी,
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ। और एक गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलन में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त गीतों के राजकुमार,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनके नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे
1: सुबह तो, तक लोग सुनते हाँ, थे और सबसे तो, लास्ट में उन्हें पढ़वाया जाता
0: जी। और मेरा वो शुरुआती दौर था
1: जी,
0: तो नीरज जी थे वहां पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया, पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी।
1: अरे
0: तो ये एक आशीर्वाद था जो मुझे
1: आप बात है। क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ाई दरदर
1: जी,
0: तरन्नुम में सुना हूँ।
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।
0: जिंदगी की बस्ती में

0: और ये नवगीत का शुरू हुआ था, तो ये
1: जी
0: अंत देख, बात क्या करे कोई हाफती हवाओं
1: हाफती हवाओं से
0: से।
1: क्या

0: नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा होगा।
1: वो बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता।
0: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
1: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चला थे सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना
0: मिनिमम।
1: हमारे नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सलून में भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर संडे आता था, पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं
0: जी,
1: पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे।
0: तो आपके जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा लगा है कि नहीं, क्या चल रहा है मन में,
1: बस वो उनको सूचना जरूर हो। और हमारे संवाद माँ से होता था
0: जी,
1: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना, साहब नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ पिताजी से घर पे जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश होते थे, लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे।
0: वो दौर भी ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटिए कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी तो उन्हें कितना खुशी दी।
1: बिल्कुल, ये पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया
0: जी,
1: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं तो वो पिता के संस्कार है, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से। अगर आप देखें तो कुमार गंधर, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां,
0: बड़ा
1: कोई नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे
0: बढ़ने सामने देखा,
1: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
0: बाप रे
1: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे हैं, कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए, संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा। तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूं तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना, वो एक मिनी भारत था वो
0: जी जी,
1: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था। मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक था।
0: ये तो नया खुलासा है हमारे लिए,
1: मतलब खेलना कूदना ये तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना, किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को
0: तंग
1: करना या मस्ती करना
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
0: शिकायत आती थी,
1: शिकायत मेरे पास आती थी कि आज से ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
0: अच्छा, क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
1: हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे, मैं नंबर दो था
0: जी,
1: तो पहले नाम ऐसे ही रखे जा रहे घर में,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू
0: जी,
1: तो वो छोटू की शिकायत जो है
0: रोज आ रही है,
1: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है वो, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था, तो वो माँ थी
0: प्रोटेक्शन
1: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो तो वो मैं
0: उसका जिक्र ना ही करें तो अच्छा।
1: तो ये एक अच्छा बचपन भी था, और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि वो दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच,
0: अरे तो
1: घर में वो पारिवारिक रिश्ते के पिता नहीं थे वो,
0: हाँ, वो अपनी दुनिया उनकी,
1: वो अपनी दुनिया थी उनके, बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए, मतलब तो बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
0: क्या बात है, और क्या आपकी रचनाओं में माँ झलकती हैं?
1: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास, मतलब सरकारी कर्मचारी जो है,
0: बिल्कुल
1: उनकी कॉलोनी थी, तो हम उसी में, तो लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आपको अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, खुशहाल परिवार थे।

0: और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूं जी।
1: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं। हाँ, एक था बचपन
0: क्योंकि
1: ये जो बचपन के जो दिन है उनके नाम ये गाना है।
0: बिल्कुल जी।

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं जिन्हें मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक तो तारा प्रकाश जोशी
0: जी
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य फिल्मों में भी लिखा
0: जी जी,
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु तुम्हें एक तरह से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो हो हो, क्या अद्भुत है। हा? क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: क्या बात है,
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात
1: नहीं सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके
0: गजब ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, ये इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही है।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंची ही नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी भी, मतलब हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारे अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों को वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी,
0: उसमें
1: तो सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं
1: भी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वहीं बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे।
0: जी,
1: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीजें जो है संस्कार में। और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे, बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहां हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना, तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे, तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
0: सारी बात
1: कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर

0: गजलें कहने लगा। अब मरूर लोगों को हमारे जो साथ में थे अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजा साहब, तो ये सब लोग सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है, अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गजल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे मुझे पढ़ाते थे सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गजल में शामिल हो गया। गजल को मैंने अपनाया और शायद फिर गजल ने मुझे भी अपना लिया।
1: क्या प्यारी बात है। तो शुरुआती गजलों में से कोई एक हमें सुनाइए।
0: मेरा सौभाग्य रहा यूनुस की ये जो गजल पंकज दास साहब ने गाई और पूरे दुनिया में पहुंची,
1: जो आपकी पहचान के साथ की हुई है,
0: वो जयपुर की गजल है।
1: वाह,
0: वो शुरुआत
1: कमाल। हाँ, ये मुझे नहीं पता था। और ये मेरे लिए हैरत की बात है कि वो आपकी शुरुआती गजल है।
0: नहीं, यूनुस के लिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए वो, कि गीत से मेरी यात्रा शुरू हो चुकी थी
1: जी।
0: गजल की विधा को मैंने
1: अपने शिफ्ट किया है।
0: हाँ, गजल में शिफ्ट किया और उसको अपना लिया। मैंने कहा ना, हम उम्र लोगों के साथ उठते बैठते सुनते सुनाते, उनसे आश्वस्ति मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना चाहिए टोंक में रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे और शाम को बैठने और एक दूसरे को सुनना सुना। तो उन्होंने जब ये पहली बार सुनी गजल तो वो भी चौंक गए, मतलब क्योंकि ये ट्रेडिशनल ढंग की गजल नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल।
0: तो बोले ये, और ये जो जिसको कि गजल की जबान में या उर्दू में टेक्निकली रदीफ कहते हैं, है ना, जो गजल के भक्ति के आखिर में आती है और वो रिपीट होती है हर शेर में, से डरता है। अब ये रदीफ जो है वो अनसुनी सी थी, मतलब,
1: और कभी इससे पहले मैंने सुना नहीं है,
0: तो खुद
1: मुश्किल भी है।
0: हाँ,
1: मुश्किल भी है,
0: मुश्किल भी है, तो उसको निभा ले जाना। और उसको तो वो भी हैरान हुए कि ये यार तुम ये रदीफ ले आए और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए सब कुछ है। और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा प्यार दिया, पहचान दी। तो वो गजल मैं अगर कहे तो
1: जरूर सर, अरे स्वागत है बिल्कुल।
0: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है,
1: आपकी धुन
0: जो मैं सुनाता हूँ और जिसने मुझे शहरों में पहचान दी, वो ये गजल।
1: स्वागत।
0: यहाँ हर शख्स

0: मिट्टी का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शाम। और ये खास शेर है वो,
1: स्वागत है।

0: बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस, इसकी एक शेर और सुनाता हूँ।
1: जरूर सर,
0: ये
1: स्वागत
0: बच्चे वाला जो शेर है उससे सबसे ज्यादा प्यार मिला।
1: जी,
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है, बहुत
1: बिल्कुल
0: बहुत हो गया, अब नहीं
1: जी
0: रहा, अब नहीं, बहुत
1: जी
0: हो गया, है
1: जी
0: ना, ये
1: जी
0: आता है। फिर
1: सबके
0: करते हैं,
1: साथ, सबके साथ
0: अरे पति खरा पति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता,
1: जी।
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते हैं कि वो बस बहुत हो गया।
1: हाँ,
0: लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी
0: ये,
1: की
0: तो फिर
1: कायदे।
0: हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कैसे
1: जी,
0: जान बचाते, फिर रहे थे हम
1: बिल्कुल
0: लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है,
1: वाह
0: अमीर हो गरीब सबका। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान।

0: है और रिहा होने से डरता है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता
1: क्या बात है सर,
0: है।
1: हम बहुत खुश नसीब
0: थैंक
1: है कि विविध भारती के स्टूडियो में आप
0: यू,
1: मौजूद हैं
0: मेरा
1: और
0: आप लोगों
1: आपसे
0: का
1: ये
0: प्रेम
1: सुन
0: है
1: रहे
0: और
1: हैं।
0: मेरी खुशकिस्मती। थैंक
1: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने
0: यू।
1: पंकज जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे ये गजल सुनी है। आज ये मौका आया है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं और जलंधर में 1 साल बिताने के बाद आप कहाँ गए?
0: उसके बाद मैं अपने होम टाउन जयपुर,
1: जी,
0: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है ये कि मैं शुरू से ही होम सिक रहा।
1: बिल्कुल।
0: मतलब जलंधर मुझे कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा
1: हाँ,
0: शहर था, बहुत प्यारे लोग थे, अच्छा
1: अच्छा खान पान था।
0: खान पान था, अच्छा मौसम था,
1: जी
0: सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा
1: जी
0: था,
1: जी जी
0: केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था। लेकिन एक होम सिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापिस, है
1: जी
0: ना। तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और मैं वो सुन ली गई, मान ली गई और मैं वापिस अपने शहर में आ गया जयपुर।
1: वाह
0: तो मैं
1: वाह,
0: वहां फिर वापिस शायद 5 साल जयपुर रहा उसके।
1: तो ये बहुत ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे, युवाणी करते थे, वहां आपकी वापसी
0: बिल्कुल
1: होती
0: सही
1: है और
0: बात
1: अब आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
0: है। और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया
1: बिल्कुल
0: हूं है
1: बिल्कुल
0: ना, वही
1: बिल्कुल
0: मैं एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव तौर पे एंटर हो रहा हूं
1: जी
0: और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है।
1: जी
0: तो और क्या टीम थी वो वहां पे,
1: बिल्कुल
0: क्रीम बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और मुझे जयपुर मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ,
1: जी जी जी
0: इसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिकल्पना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब रहा। मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
1: जी
0: वो जयपुर में था।
1: जी जी जी
0: नाटक लिखना, कंपोज करना,
1: बिल्कुल
0: प्रोड्यूस करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी सब हुई, सब कुछ हुआ। एक लिमिटेड काम था, ये हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड उसमें सब कुछ था। जयपुर मेरे लिए पूरा खुला मंच था,
1: बिल्कुल। और फिर आप उस शहर में पले बड़े थे तो
0: पला
1: आप
0: बड़ा
1: सब
0: था।
1: जानते
0: और
1: थे
0: फिर
1: और
0: उसने मुझे, मैंने कहा ना कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले,
1: जी
0: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो तब था ही था। सब कुछ नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, हम म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ। अभी तो नहीं हो रहा है, उस वक्त जयपुर में और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने प्रोग्राम
1: कॉन्सर्ट्स होते
0: कर,
1: थे
0: कॉन्सर्ट होते थे,
1: जी,
0: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
1: वाह क्या बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा सा।
0: उसमें एक महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना,
1: जी,
0: उसका मैंने रेडियो नाटक रूपांतर किया
1: वाह
0: और उसका प्ले किया और बहुत पसंद किया गया लोगों के द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, एक ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी थी अंधा सूरज,
1: क्या बात है,
0: उसका किया।
1: वाह,
0: और इसके अलावा गीत गोविंद,
1: अरे गजब।
0: ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो उपलब्धि थी, उसके आश्चर्य की बात यह थी कि गीत गोविंद का आपने ड्रामेटिक नाट्य रूपांतर किया। वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, मतलब
1: बिल्कुल
0: उसका कैरेक्टर जो राधा कृष्ण सखी ये सब कुछ है, गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है,
1: बिल्कुल
0: जयदेव जी का।
1: जी
0: हाँ, उसके जो गाने हैं, उसके जो गीत हैं, वो मूल संस्कृत में, और मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किए, रिकॉर्ड किए, गाए लोगों ने
1: संस्कृत में,
0: संस्कृत में।
1: अरे बाप
0: तो
1: रे,
0: गाने संस्कृत में हैं
1: जी
0: और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको एक तरह से समझाने के लिए मैंने कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग, आम लोग समझ चुके इस गाने का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है, ये कृष्ण की पुकार
1: हाँ,
0: है ये
1: तो बहुत
0: हम
1: मुश्किल काम है।
0: बहुत मुश्किल। तो वो एक मेरे लिए वो मील का पत्थर जैसा हुआ और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया और
1: जी
0: समझे भी, मतलब
1: वाह
0: गीत
1: वाह,
0: गोविंद को ओरिजिनल, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि उससे पहले गीत गोविंद रघुनाथ पाणिक रही उड़ीसा में,
1: जी,
0: तो वो करते रहे और वो बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, सब कुछ है, लोग गायक के रूप में वो पॉपुलर है वो वहां पे। लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो

0: कमाल है, मतलब वो भी, लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का, उनके कंपोजिशंस में भी, उनके गाने में भी। तो मैंने उसको बाकायदा एक, क्योंकि फिल्म का तो फाई था, तो सुगम संगीत के तौर पर मैंने उसको कंपोज किया और गाने वाले बहुत अच्छे थे, तो उस तरह से वो एक लोगों को लगे कि ये गाना है।
1: क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है,
0: क्योंकि तो गाने के तौर पर वो हुआ और लोगों ने सुना और पसंद किया।
1: वाह वाह वाह, तो ये पूरा जयपुर का दौर था।
0: अभिज्ञान शाकुंतल
1: जी,
0: कालिदास का, तो वो मैंने रेडियो एडॉप्टेशन किया, वो किया, तो ये दो बड़ी थे।
1: क्या शानदार बातें हैं, ये तो बहुत मुश्किल वाले काम आपने वहां किए। इसके अलावा वहां विकल्प भी चलता रहा आपका? हाँ, नाट्य समूह
0: नहीं, विकल्प ये दौर मेरा पहला था, मतलब रेडियो आने से

0: नहीं, विकल्प ये दौर मेरा पहला था, मतलब रेडियो आने से पहले का था।
1: हाँ
0: विकल्प अपने ढंग से चलता रहा, वो बीच बीच हम लोग करते भी रहे, लेकिन वो सक्रियता नहीं रही।
1: जी, क्योंकि रेडियो में आप पूरी तरह से अपने आपने अपने आप को झोंक दिया था।
0: मतलब बीच बीच में हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो में आने से पहले किया।
1: जी, और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए।
0: हाँ, उसके बाद भी एक नाटक आला अफसर मुद्रा राक्षस का,
1: जी जी,
0: जो गोगोल का उन्होंने
1: इंस्पेक्टर जनरल
0: नौटंक की शैली में उन्होंने किया, तो उसका भी मैंने कंपोजिशन भी किया, डायरेक्शन भी किया और वो भी किया।
1: तो संगीत जो है वो एक तो घर से मिला था, लेकिन ये एक लगातार चलता रहा कि कंपोजिशंस भी करनी है आपको लगातार।
0: हाँ, इसमें करनी ही वाला बात नहीं था,
1: जरूरत
0: से होता था।
1: जी जी,
0: अंदर से होता था कि ये मैं करूं। मतलब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी,
1: बिल्कुल।
0: हाँ, कि कोई और भी कर सकता था, लेकिन अंदर से कहीं होता था कि
1: ये मैं करता।
0: हाँ, इसको जैसे लिखने का जो है वो अंदर से ही होता है।
1: बिल्कुल।
0: आप तो उसी तरह से वो, चाहे वो गीत गोविंद हो, जयपुर में उस वक्त 5 बड़े संगीतकार थे
1: जी,
0: जो स्टाफ में थे, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर भी एक पोस्ट होती है।
1: बिल्कुल होती
0: है ना, जानते हो। और विविध भारती में नहीं है वो, लेकिन मेन सेंटर्स पे बॉम्बे में हो या किसी भी सेंटर में कंपोजर की भी पोस्ट होती है।
1: जी जी,
0: उस वक्त 4 मौजूद थे और वो 4 लोग भी परेशान होते थे कि हम हैं और ये आदमी कंपोज कर रहा है। तो उसमें मेरे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश चतुर्वेदी
1: जी जी,
0: तो उन्होंने मुझे छूट दी
1: कि नहीं नहीं आप करो।
0: हाँ, मतलब वरना ये होता नहीं है ये।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो 4 कंपोजर हैं, आप स्टाफ में मौजूद हैं,
1: तो आप उनको,
0: और उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं।
1: जी जी,
0: तो उन्होंने छूट दी और उसकी वजह से वो एज ए कंपोजर भी रेडियो पर, मतलब फिर गाने भी हुए, सब कुछ हुआ।
1: हाँ,
0: एक बार बताऊं कि जब महादेव वर्मा का गीत, मैं नीर भरी दुख की बदली, और ये सब, मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो जैसे यहाँ मंथन शुरू हुआ था ना
1: जी,
0: हमने 10 मिनट का प्रोग्राम होता था
1: जी,
0: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता किसी के लेके उसको भी पढ़ता था, और गीत होता था कोई गाता था, तो उस तरह का एक प्रोग्राम तो वो मैं करता था। तो उसमें महादेव वर्मा का और भारती जी का, फिर बाद में गालिब की गजलें कंपोज की,
1: क्या बात है,
0: कबीर को कंपोज किया,
1: इनको
0: स्टेज किया, स्टेज शो किया। तो ये सब मेरे संगीतकार के रूप में मेरे
1: ये चीजें चलती रही लगातार। ये बहुत अद्भुत बात है, ये एक अलग पूरा एक पक्ष है। हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ फिल्मी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुनगुनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए।
0: चलिए, मैं गुनगुना देता हूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
1: वाह वाह,

0: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधन, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

0: सुनो
1: ओ?
0: जरा राइमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों, क्यों नहीं जा सकते?
1: वो मैं
0: साफ बताओ क्या करना है 3 बजे?
1: करना नहीं है, सुनना है।
0: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
1: वो मुझे सखी सहेली सुनना है।
0: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
1: सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
2: सखी सहेली।
1: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने।

0: देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन
2: FM बैंक 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी पांसवाड़ा का माही चैनल है। दिन के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे राहत फतेह अली खान के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

ये आकाशवाणी पांसवाड़ा का माही चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं राहत फतेह अली खान के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना राहत फतेह अली खान की आवाज में कुछ गैर फिल्मी गीत। दिन के 11:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आगाज करते हैं फिल्म पोस्टेज से, अजित सिंह और चिन्मय श्रीपदा की आवाज में। शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

श्रोताओं, अगली पेशकश एयरलिफ्ट फिल्म से अजित सिंह की आवाज में, बोल है तुलसी कुमार के और संगीत दिया है अमाल मलिक ने।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं हसी तो फसे फिल्म से सरंगपुरी और शिप्रा गोयल के स्वर में गीत। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीतकार हैं विशाल शेखर।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की अगली पेशकश एआर रहमान और समीर मोदित की आवाज में फिल्म मोहनजोदारो से। शब्द रचना है जावेद अख्तर की और संगीत दिया है एआर रहमान ने।

श्रोतों, लीजिए अंकित तिवारी के स्वर में तुम बिन तो फिल्म से ये गीत, जिसको लिखा है शकील आजमी ने और संगीतकार है अंकित तिवारी।

0: FM 92.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी पासवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत। दिन के 12 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: किए गए अमीर हनीफ के बोलों को यहीं पर समाप्त होता है कार्यक्रम रंग तरंग।
2: रंग तरंग
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केन्द्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉ जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉ जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
2: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए याद करते हैं राजकुमार बड़जात्या जो कि निर्माता निर्देशक रहे।

इसी लाइफ में इस फिल्म से हम सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में मनोज मुंतशिर के बोल और मीत ब्रोज अनजान के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में, जो कि है हम साथ साथ हैं फिल्म से। हरिहरन, घनश्याम वासवानी, प्रीतम राव, संतोष तिवारी की आवाज में, जिसे रविंद्र वाल ने लिखा है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज यादों की महफिल में हम याद कर रहे हैं निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या को। तो आइए सुनते हैं उनके ही द्वारा रची गई फिल्मों में से फिल्मों के गीत। अगला गीत होगा चितचोर फिल्म से, येशुदास की आवाज में रविन्द्र जैन के बोल और रविन्द्र जैन के ही संगीत के साथ।

0: सौदागर फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, रविन्द्र जैन के बोल और रविन्द्र जैन के ही संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आइए सुनते हैं बहुत सुंदर सा नगमा अगली गी फिल्म के साथ में, जिसे निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या जी के द्वारा बनाया गया है। ये है प्रेम रतन धन पायो फिल्म से अन्वेषा विनीत सिंह हर्षदीप कौर शबाब सबरी और साथियों की आवाज में। इरशाद कामिल के बोल हैं और हिमेश रेशमिया का संगीत है।

0: रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत हम आपके हैं कौन फिल्म से। लता मंगेशकर, बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाज में रविंद्र अग्रवाल के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 1, let's start the fun!

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। बड़ी खूबसूरती से हमने सजाया है इसे सुंदर गीतों के साथ में। राजकुमार बड़जात्या के द्वारा बनाई गई फिल्मों के गीतों को हम सुन रहे हैं। अगला गीत हम सुनेंगे पिया का घर फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

विवाह फिल्म का यह गीत उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाज में रविन्द्र जैन के बोल और रविन्द्र जैन के संगीत के साथ हम सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल में। और इसी कार्यक्रम में हम सुनने वाले हैं एक और बहुत खूबसूरत सा नगमा जिसे गाया है शान ने और श्रेया घोषाल ने रविन्द्र जैन के बोल और उनके ही संगीत के साथ, एक विवाह ऐसा भी इस फिल्म से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस शुरू होगा थोड़ी ही देर के बाद।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि जैन और आज की इबारत मैं आप सबके साथ पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ श्रोताओं ने इस इबारत को ना पढ़ा हो क्योंकि वो फेसबुक पर ना हो। तो चलिए चलते हैं उस इबारत की ओर कि हमने जो इबारत आपको भेजी है वो ऐसी है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कहा कि डॉन पकड़ में नहीं आता। तभी उसी ने मुस्कुराकर कहा, आपके पैर बहुत हसीन हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत में तारीफ भी एक कला होती है, लेकिन मोहब्बत की दुनिया इतनी सीधी कहाँ है। कभी तो ये चाकू सी है, हाथ कट जाता है, कभी दिल को भी चोट लगती है। कई बार लोग पूछते हैं कि कितने अपने मिले और कितने पराए, या कहूं कि जिंदगी की भीड़ में जब लोग पूछते हैं कितने आदमी थे, तब अपने हौसले गिनकर बता देती हूं। और कभी जीवन में लोग नहीं मिलते हैं और देते हैं तारीख पे तारीख, पर हम तो हर हाल में खुश हैं। मुस्कुराकर कहते हैं कि हम जहां खड़े हो जाते हैं भीड़ लग जाती है, जीतते जाते हैं पर डर लगता है मृत्यु से। तो मन कहता है, बाबू मशाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी तो रस्सी भी है। अपनों की याद में आंसू बहने नहीं देते, क्योंकि कोई ये ना कह दे कि सुनो आई हेट टीयर्स, पर जीवन की दौड़ अभी बाकी है, क्योंकि पिक्चर कहाँ खत्म हुई है अभी, तो ये जो पिक्चर है वो शुरू हो चुकी है। बहुत सारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं और कई लोग संदेश भेज रहे हैं, उसकी कतार बड़ी है, बड़ी लंबी सी कतार हमारे बीच में है। तो हमारे जो श्रोताओं ने बहुत सारे गाने भी आपने चुने हैं, और सच बताऊं तो कई गीत ऐसे हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से जो हमने बनाई है आपके लिए उससे मिल रहे हैं। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल हैं। अब ऐसे दृश्यों में जो कलाकार दिख रहे हैं उन पर गीत होंगे, या ये डायलॉग इबारत को पूरा करने के उद्देश्य से डाला गया है, या इन डायलॉग्स में जो शब्द है उनको आधार बनाकर गीतों को प्रस्तुत होगा। ये बात वो समझ नहीं पा रहे, उनका कहना है कि बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। पर हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज कुछ नए तरीके से आपने विचार व्यक्त किए हैं, फिल्म के संवाद गीतों का सफर लगता है और साथ साथ चलेगा तो क्या होता है। देखिए, सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की बहुत अच्छी बात लिखी है कि सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, पर वह तो अनुभव करना होता है, भोजन में नमक की तरह जो दिखाई नहीं देता पर होता है। कितनी बढ़िया गंभीर बात हमारे श्रोता ने लिखी है। और हमारे श्रोता ने एक बात लिखी है कि आज की इबारत केवल फिल्मी संवादों का संग्रह नहीं है, बल्कि सिनेमा के चश्मे से जीवन को देखने का एक खूबसूरत नजरिया है। यह याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान को अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए, क्योंकि जीवन की कहानी का सुखांत होना अभी बाकी है। बिल्कुल सही, हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल किया गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन फिल्मों के डायलॉग शामिल किए गए हैं उन्हीं फिल्मों के गाने शायद बच सकते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैंने जिन फिल्मों के संवादों को पहचाना उनके नाम है दो बदन, डॉन, पाकीज़ा, वक्त, शोले, दामनी, खाली अमर, प्रेम, आनंद, मेरे महबूब। हो सकता है और भी कुछ फिल्मों के डायलॉग हो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बिल्कुल सही, जितना आपने पहचाना उतना अच्छा है। कितनी बढ़िया बात है कि आप पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज की इबारत पर यह शब्द हो सकते हैं, मोहब्बत, डॉन, हसीन, पैर, तारीफ, बहुत सारे शब्दों का इन्होंने जिक्र किया है। और वो लिखते हैं कि मोहब्बत की तारीफों का अजीब असर होता है, कभी मुस्कान दे जाती है, कभी दिल भी असर होता है, कुछ जज्बात आंखों तक आकर ठहर जाते हैं और कुछ आंसू बनकर बिना बहे ही दिल में उतर जाते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, सही बात है, क्यों करते हैं पता नहीं। पर हमारे श्रोता लिखते हैं, इबारत के अनुरूप संभावित गाने हैं, मैं हूं डॉन, और उन्होंने कई सारे गानों के बारे में लिखा है। तो चलिए हम देखते हैं इनमें से क्या हो सकता है। हाँ, आपने एक बात तो बहुत अच्छी पकड़ी, हमारे एक श्रोता ने तो 15-20 गाने भेज दिए हैं चुनकर, कितनी बढ़िया बात है ना, कितनी मेहनत की होगी, उसके लिए आपको धन्यवाद है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हम जहां से खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होती है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। आज इबारत में मुझे फिल्म डॉन फिल्म नजर आ रही है। अच्छा, आपकी पसंद भी आपने हमको बता दी, बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक और

0: लिखते हैं कि यह भी एक खूबसूरत इत्तेफाक है कि हमसे हमारे इश्क का अंदाज पूछ रहे हैं और हमने भी हंसकर कह दिया रिश्तों में तुम्हारे बाप लगते हैं। तभी पलट कर उन्होंने सादगी से कहा, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। उस पल समझ में आया मोहब्बत में तकरार भी एक अलग सुकून देती है, मगर इस दिल की दहलीज का कदम रखना इतना आसान नहीं है। यहां कभी जज्बात कांच की तरह चुभते हैं, कभी खामोशी भी जान ले लेती है। क्या खूबसूरत बातें आपने लिखी हैं। और जब इतना अच्छा लिखा है तो हम चलते हैं हमारे उसी इबारत की तरफ। और हमने सबसे पहले लिखा है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कह दिया डॉन को पकड़ में नहीं आता। और इसी इबारत से अगर हम समझ लें तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये गीत यहां पर होने वाला है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूं। ये तो मैं मेरी पसंद से आपको एक गीत सुनवा दूंगी और हो सकता है यही मांग आपकी भी हो, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो फिल्मों के डायलॉग्स होते हैं इनमें से ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसे बहुतायत में आप प्रयोग किया करते हैं? जल्दी से मुझे संदेश भेजिएगा, ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसका उपयोग आप बहुत बार करते हैं और लोग उस बात पर आपके उस अंदाज पर खुश भी हो जाते हैं। तो जल्दी से ये बात हमें बताएं। और हमारे श्रोताओं ने इस बारे में लिखा है, एक एक अलग अलग बातें लिखी हुई हैं डायलॉग्स के बारे में लिखा है। तो चलिए हम ये गीत बढ़िया सा सुनते हैं और अगर आपकी पसंद का है तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आपकी और हमारी पसंद मिलती है।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है।
2: बताए दे।
1: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

0: कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे कभी इधर भागे।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने मुंह ही जल गया है।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक फिर लो पान चबा आहा। अरे ऐसे

कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल छोरा गंगा।

करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पहन बनाओ रत वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला, ओ खई के

0: छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: ये गीत जो हम सुन रहे थे वो था डॉन फिल्म से। इसके पहले भी हमने डॉन फिल्म की एक झलक सुनी। ऐसे कई गीत आए पान बनारस के ऊपर, जिनमें से सबसे बेहतरीन हम सबका पसंदीदा गीत है किशोर कुमार का गाया हुआ अनजान फिल्म अनजान के बड़े प्यारे से बोल हैं। कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीतबद्ध किया है। और हम बात कर रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में बड़े सुंदर से गीतों के बारे में और बड़े सुंदर से डायलॉग्स के बारे में। तो आपने हमें बहुत सारे डायलॉग्स भेजे हैं, कौन कौन से आपको पसंद हैं या क्या आप सुनना पसंद करते हैं तो या कहना पसंद करते हैं और कहते कहते लोगों को रिझा लेते हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उन दिनों की याद आती है जब टेप रिकॉर्डर में मनपसंद फिल्मों के डायलॉग सुना करते थे और दोहराते थे। और हमारे श्रोता ने हमें बड़ी अच्छी सलाह लिखी है कि आपके पांव बहुत हसीन है, अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूं डॉन, जीवन जीने का भी बहुत हसीन बनाया जा सकता है, बस आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और हम सफर का साथ हमेशा बहुत मायने रखता है। हमारे श्रोता लिखते हैं आई हेट टियर पुष्पा, आई हेट टियर पुष्पा, इन्हें यह लिखना था। और पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त अपने फ्रेंड से मिलते थे, कुछ बात हो जाती थी तो हम बोलते थे पिक्चर अभी बाकी है, और हमारी फ्रेंड हम हमारा दिल दिखाई देते थे एंड कहते थे आई हेट टीयर्स, मतलब मैं जी हम स्कूल में जो थे वो सारे डायलॉग्स बोला करते थे, मर जावा गुड़ खा के। हाँ ये डायलॉग सभी लोग बोला करते हैं ना, मर जावा गुड़ खा के, गुड़ खा के कैसे मर सकते हैं, गुड़ खा के तो खुशियां होती हैं, ये बात भी ये डायलॉग भी हमारे श्रोता बोला करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म शक्ति का संवाद, इनकी बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते पर मत चले जाना जहां से चाहो तो भी वापस ना आ सको, यह संवाद दिलीप कुमार ने अमिताभ को समझाकर कहा था। ये भी बात सही है। और हमारे एक और श्रोता ने पसंदीदा डायलॉग लिखा है, जिनके मकान शीशे के होते हैं दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ऐसे कितने सारे डायलॉग्स हैं ना जो हमें पसंद हैं। अभी इन डायलॉग्स के बारे में हम और चर्चा करेंगे, पर सुनते हैं ये संदेश।
2: सुनिए
3: कहिए
4: सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना,
4: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
5: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर। और सुरीले सफर में हम चल रहे हैं डायलॉग्स के साथ, वो डायलॉग्स जो कहीं ना कहीं आपके जेहन में, मेरे जेहन में कहीं ना कहीं बस गए हैं और बस ऐसे गए हैं कि चाहे जब चाहे में ही निकल आते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि हम बहुत अच्छा सफर इसमें चल रहे हैं और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि आज की इबारत महज शब्दों का समूह नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुनहरे दौर और हिंदी फिल्मों के कालजयी संवादों के माध्यम से बुनी गई जीवन के प्रति एक दार्शनिक और बेबाक अभिव्यक्ति है। यह इबारत एक ऐसी शख्सियत को बयां कर रही है जो मजबूत है पर भावुक भी, निडर है पर संवेदनशील भी, और जो जीवन की हर परिस्थिति में एक सिनेमैटिक अंदाज में जीती है। यह हार न मानने की एक खूबसूरत दास्तान रचती है। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है। और हमारे श्रोता इसी बात में एक और बात लिखते हैं कि आप हमारे एक मेडिकल स्टोर की शॉप है, जब भी कोई हमारे बहुत पुराने ग्राहक शॉप पर आते हैं तो हम उन्हें शोले फिल्म का डायलॉग आओ ठाकुर ऐसा बोल देते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। कितनी अच्छी बात है ना, हमारे शब्दों से ही अगर किसी के जीवन में खुशियां आ जाए तो क्या कहना है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, कई पुरानी फिल्मों के डायलॉग हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर है, जैसे हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। कितने आदमी थे, बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा, ऐसी सारी बातें हमारे श्रोताओं ने बताया है। और हमारे श्रोता ने लिखा है, कभी कभी यह डायलॉग हम उपयोग में लाते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते और जेब में फूटी कौड़ी नहीं और चला महलों के ख्वाब देखने, ये सारी बातें हैं और बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संवादों के लिए लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं कुछ फिल्मी संवाद को अपने जीवन में इस्तेमाल किया है, जिनमें एक संवाद है, तुमने सपने देखे हैं सपनों को टूटते नहीं देखा, दूसरा है जिनके घर शीशे के हों वो पत्थर नहीं फेंका करते, और तीसरा है मैं फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, जरा सी परेशानी आती है तो हम कहते हैं साला ये तो काहे को खत्म नहीं होता। मतलब अगर हर बार भोजन यानी खाना पकाते हुए भी एलपीजी खत्म हो जाए तो भी यह डायलॉग दे ही देते हैं। क्या बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और शायद कुछ संदेश मैं पढ़ पाऊं या ना पढ़ पाऊं मुझे क्षमा कीजिएगा, पर ये जो अगला गीत है ना, इसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि मोहब्बत में तारीफ नमक के माफिक होनी चाहिए, जरूरी भी है और जरूरत से ज्यादा भी नहीं। तारीफ पार्टनर को उसकी खूबसूरती अहमियत का एहसास दिलाती है। हम अक्सर अपनी खूबियों को नहीं देख पाते पर जब कोई चाहने वाला तारीफ करता है तो हम उसकी नजर से देखने लग जाते हैं, जिससे स्वयं आत्ममूल्य बढ़ता है और रिश्ते में सुकून आ जाता है। अगर तारीफ झूठी हो तो प्रेम नहीं बल्कि सौदाबाजी बन जाती है। सच्ची तारीफ भरोसा और अपनेपन को गहरा करती है। अक्सर प्रेम में पुरुष स्त्री की आंखों की और स्त्री पुरुष के मन की तारीफ करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन वही पुरुष स्त्री की आंखों को और स्त्री पुरुष के मन को पढ़ने की कोशिश करे, ये पढ़ ले तो मोहब्बत किसी बाहरी सुंदरता की तारीफ की मोहताज नहीं रह सकती बल्कि मोहब्बत की ही तारीफ हो जाती है। और एक बहुत खूबसूरत सा डायलॉग है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, राजकुमार का बेहतरीन संवाद है कि आपके पैर बहुत हसीन है। ये राजकुमार जी का जरा बताइएगा, आपके पैर बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत रखिए मैले हो जाएंगे। ये डायलॉग पाकीज़ा फिल्म का है और उसका ही ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हो सकता है ये आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों का मिला

हो रहा हो, बताइएगा। अगर आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों की पसंद मिल गई है तो जरूर हमें सूचना दीजिएगा, और इतना सा बस बता दीजिएगा कि इस गीत के गीतकार कौन है, और साथ में ये बताइएगा जो प्रश्न में चल रहा है उसको तो चलने ही दीजिए कि आपका पसंदीदा डायलॉग कौन सा है, और उसके साथ ये बताइएगा कि कभी कोई डायलॉग किसी मित्र ने, किसी शिक्षक ने, कभी माँ ने आपको ऐसे ही अनजाने में सुना दिया हो और आप हंस हंस के लोटपोट हो गए हो जहां पर आपकी पिटाई हो रही थी या डांट पड़ रही थी, जरूर बताइएगा। सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा, बताइएगा इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे पाकीज़ा फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में गुलाम मोहम्मद के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन है, तो हमारे श्रोताओं से कहां क्या छुपा है। बहुत अच्छे से उन्होंने उत्तर दिया कि कैफी आजमी ने इस गीत को बोल दिए हैं। और गुलाम मोहम्मद ने कितना खूबसूरत संगीत दिया है ना। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रेलगाड़ी की सीटी आकर्षण का केंद्र है, गाने के अंत में सुनाई देती है। हाँ, हमने भी सुनी इन्हीं हेडफोन्स के जरिए विविध भारती के स्टूडियो से। आपने भी सुनी होगी अपने अपने रेडियो हैंडसेट पर। और हमारे श्रोताओं को बड़ा पसंद आ रहा है ये गीत, तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, गीत रूह को छू लेने वाला एक एहसास है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो जब हमारे पसंद के गीत हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं, शबे आखिरी शबे इंतजार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलती जलती। क्या बढ़िया शेर उठाया है आपने गीत से। हमारे श्रोता लिखती हैं, हमने पूछा था आपसे कि आपको कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपके घर वाले आपको देते हैं तो आप मार खाते खाते या डांट खाते खाते हंसने लगते हैं। तो हमारी श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी हमेशा मुझे डांटती है, कभी कभी जब मारने लगती है तो मैं कह देती हूँ डॉन को ना कभी दर्द नहीं होता, तो मम्मी हंसती है, फिर क्या ना एक और डायलॉग बोल देती हूँ, हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिर हम और वो और उनकी माँ दोनों बहुत हंसते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपकी माँ आपके साथ आपको बहुत पिटाई करती हैं और बहुत सारा प्यार भी करती हैं। इन दोनों को संभाल कर रखिएगा। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे लिखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के इस सुरीले सफर में डायलॉग की बात हो रही है, तो उन्हें जो डायलॉग पसंद है उन्होंने लिखे हैं, चल धनो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, तुम्हारा क्या नाम है बसंती, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, आओ महारथी आओ, ये सारे डायलॉग ये बहुत प्यार से बोलते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बोला कि आज का मेरा खुद का डायलॉग है कि अपुन सफर के साथ सफर यानी डबल सफर करता है, हम विविध भारती मुंबई के सुरीला सफर के साथ साथ ट्रेन के सफर का भी आनंद ले रहे हैं, आपकी यात्रा शुभ हो, हम ये बात आपसे कहते हैं। और हमारे श्रोता लिखती हैं कि हमारी आदत है शांति तुम नहीं जानती ये बोलने की। हाँ, ये बड़े प्यारे से डायलॉग थे ना, मीठे मीठे सुरीले सुरीले। और हमारे श्रोताओं ने जब बहुत सारे डायलॉग्स के बारे में लिखा, तो हमारे एक श्रोता ने तो ढेर सारे डायलॉग्स ही पहचान करके लिख दिए, और उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन सारे डायलॉग अभी हम नहीं बोल सकते। हमारे श्रोता लिखते हैं, जंजीर फिल्म का एक संवाद है, जब तक बोला ना जाए चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और हमारे श्रोता कहते हैं, अक्सर मेरे मित्र पूछते हैं कि आपके स्वस्थ और खुश रहने का राज क्या है, उनसे मेरा यही कहना है, मैं विविध भारती सुनता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, सुनते रहिए, ये डायलॉग बड़े काम का है। हमारे श्रोता ने लिखा, हमने कल रात को ही प्रोमो देखा फिल्मों के डायलॉग के गीत पर, सभी को नमस्कार, लेकिन आज उन्हें गोधरी सिल के भेजनी है तो गाने सुनेंगी, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में जब हम घर पर बच्चे शैतानी करते थे, माँ हम सब की शिकायत पापा से करती थी, तो हमारे पिताजी पूछते थे कितने आदमी थे, और अब तो हंसी आती है ये सोचकर। हाँ, लेकिन उस समय तो हम सबकी हालत पिटाई और डांट के डर से देखने वाली होती थी। ऐसे ही खुश रहिए, क्योंकि ये डायलॉग जो है ना बड़े प्यारे प्यारे हैं। और हमारे अगला जो डायलॉग है वो

बहुत खूबसूरत सी हीरोइन का डायलॉग है, तो ये गाना आप सुनिए और उस डायलॉग का जिक्र कीजिए और उसके साथ ही एक जिक्र और कर दीजिएगा कि वो अभिनेत्री कौन है, उनका वो डायलॉग कौन सा है और ये फिल्म कौन सी है। ये तीन प्रश्न मैं आपके पास रख रही हूँ, अभिनेत्री, वो डायलॉग और साथ में फिल्म का नाम। सुनिए।

हम सुन रहे थे ये गीत अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और बता दीजिएगा जल्दी से, और यह भी बता दीजिए कि इसके साथ में डायलॉग कौन सा है। तो हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया है कि जानी ये चाकू है, लग जाता है तो खून निकल आता है, श्रीदेवी, और फिल्म का नाम भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, चालबाज। हमारे श्रोता लिखते हैं, चुलबुली अभिनेत्री श्रीदेवी का असामयिक निधन हुआ, वो अफसोस की बात है, हम सभी उन्हें सच में याद करते हैं। और बड़ा खूबसूरत सा ये जो डायलॉग का सफर चल रहा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब भी स्कूल के दिन अपने दोस्तों के साथ छुट्टी लेते थे या घर जाते थे तो लिखते थे कि अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी, जब तुम कहोगी, ये डायलॉग इनके बीच में चलता था। और हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने कई सारे डायलॉग्स के बारे में बड़े प्यार से बताया है, और श्रोता अपनी बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां भी लिख देते हैं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि घर बच्चे छोटे थे, जब भी घर पर मैगी बनाते थे तो बच्चे कहते थे माम हो गए, वो खुश हुआ, और इस बात से हमारे श्रोता भी खुश हो जाते थे डायलॉग सुनकर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख काजोल का वो डायलॉग है पलट पलट, वो भी उन्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल सही बात है, ये कई लोग ट्राई करते हैं इस डायलॉग को। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमें ये डायलॉग अच्छा लगता है, आपकी इबारत में भी है कि बाबू मशाई जिंदगी पड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और सही भी है। और शोले फिल्म का डायलॉग, बसंती का डायलॉग, हाँ जी कहां जाओगे, बेलापुर फतेहपुर, ये डायलॉग भी उन्हें बहुत पसंद है। पर ये डायलॉग पूरा याद करना बड़ा मुश्किल है, कैसे है? उस अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उसे याद किया होगा। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, तो एक फिल्म धमाल का एक डायलॉग है, प्रेम चोपड़ा साहब डब्ल्यू वाली बात पर बताते हैं तो जावेद जाफरी कहते हैं कि हम कोई उसके बाप के नौकर हैं जो उसका काम कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मुगले आजम का डायलॉग बड़ा पसंद है, मेरा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं है जिस पर आप राज कर सकें। क्या बढ़िया बात है, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का ये डायलॉग। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और अब हम आपको अगला जो प्यारा सा गीत है वो सुनवा रहे हैं। और इस फिल्म के जितनी ज्यादा से ज्यादा डायलॉग आप लिखकर भेज सकते हैं, जरूर भेजिएगा, और बस इतना ही बता दीजिएगा, वैसे आपको गाना सुनते ही पसंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा इसके गायक कलाकार कौन है और फिल्म कौन सी है और किस सन में आई थी, ये बताएंगे।

हम सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, शोले 1975 की फिल्म है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उस समय वह 8वीं कक्षा में थे, यानी आपने अपनी 8वीं कक्षा में ही शोले देख ली थी, कितने सौभाग्यशाली हैं। चलिए हम हमारे श्रोताओं से हमने कुछ प्रश्न पूछे थे, उन सबके उत्तर हमारे पास आ रहे हैं। आज का सुरीला सफर में जुड़कर मुगैम्बो खुश हुआ क्यों मिस्टर इंडिया, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। और हमने पूछा था आपसे कि इस फिल्म के कई सारे डायलॉग शायद आपको पसंद होंगे, तो जरूर भेजिएगा। मौसी जी, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझू? ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि असरानी का डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं क्या? आप सही बात है, शंभू का दिमाग दोधारी तलवार है। प्रेम चोपड़ा का ये डायलॉग उन्हें बड़ा पसंद है, एक हाथ का पंजा कटा हुआ है तो उसके ऊपर धातु का ग्लव यानी कवच पहना हुआ है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, यूं तो हमें बोलने की आदत तो है नहीं, चल बसंती आज धनों की इज्जत का सवाल है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं ही। और हमारे श्रोता ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ठाकुर ये हाथ हमको दे दे, नहीं ये डायलॉग थोड़ा अलग है, ठाकुर हमका ये हाथ दे दे, क्या था सही डायलॉग आप जरा भेजिएगा। हमारे श्रोता

लिखते हैं कि मरते दम तक साथ चलना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये गीत के साथ बोल आपने लिखा है। पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे, ये मेरा फेवरेट है। कितना बढ़िया डायलॉग है ना। तुम क्या लाए हो धोलिया, ये मुट्ठी भर ज्वार, बाकी क्या अपनी लड़की के बरातियों के लिए रख छोड़ा है। और श्रोता लिखते हैं कि उन्हें पुष्पा 8 years मुगे में खुश हुआ बड़ा पसंद है। हमारे एक और श्रोता ने बड़ा अच्छा डायलॉग दिया है, मेरा नाम सुरमा भूपाली ऐसे ही नहीं है। अरे वो सांभा कितने आदमी थे, हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर, हमारी इतनी बदलियों के बाद जब हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे। ठाकुर साहब गब्बर सिंह क्या कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़ा और पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है, और आपने लिखा है कैसे हो सुरमा भोपाली। ये डायलॉग भी बड़ा अच्छा है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये सही डायलॉग है और ये डायलॉग हम कई बार याद भी करते हैं। हमारे एक श्रोता ने बसंत टीम के सामने नहीं नाचना ये भी लिखा है, इतनी खामोशी क्यों है भाई, ये डायलॉग भी यहाँ पर आया है। और इसके साथ ही बहुत सारे डायलॉग्स के साथ में हमारे श्रोता ने लिखा है कितना इनाम रखे हैं सरकार ने, ये बात भी कितने आदमी थे, ये सारे डायलॉग आपके रिपीट हो रहे हैं, कई सारे लोगों ने भेजे हैं और इसके साथ बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग हमारे बीच में आ रहे हैं। और इसमें हमारे श्रोता ने लिखा है, जानते हो संसार का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। ये बड़ा बड़ा खूबसूरत सा है और बड़ा दिल को कुछ कलेजे में कुछ करने वाला ये डायलॉग है। शोले फिल्म पुराने जमाने के जेलर मूवी जितनी बार देखी उन्हें अच्छी लगी, हेमा मालिनी का सीन बहुत अच्छा है, जब कहते हैं प्रभु आप बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं क्या कन्या यूके यूके, वो सारी बात जो चलती है उनमें बड़ा मजा आता है। तो कालिया कहता है कि दो हैं कहां रे फौजी नंबर दो, ये कई सारे डायलॉग जो हैं लोगों को पसंद आते हैं। तो चलिए ऐसे ही सुंदर गीत आप सुनते रहिए और अगला जो गीत है वो हम आपको सौंप रहे हैं, बस यही करना है कि उस गीत के गायक को पहचान लेना है और जरा सा पहचानिए कि ये डायलॉग कौन सा हो सकता है। डायलॉग के साथ में आप पहचान लीजिए जल्दी से वो डायलॉग कौन सा होगा और ये फिल्म कौन सी होगी।

जी जल्दी से तो आपने हमें बता दिया कि दामिनी फिल्म से है और बहुत अच्छे से बताया कि ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है, और उसके साथ तारीख पे तारीख शायद इसी फिल्म का डायलॉग है। बिल्कुल सही। चलिए, ये सारे डायलॉग तो आपने बताया, आपने लिखा कि तारीख पे तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला। माई लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। बिल्कुल सही। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं, और खाली आ कितने आदमी थे ये डायलॉग भी हमारे श्रोता ने दिया है, और इसके साथ में आपको अलग अलग गीतों की कई सारी बातें बनाऊंगी। तो एक डायलॉग मैंने लिया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, उसके वह गीत है इस फिल्म ओम शांति ओम से, और उसके साथ ही हम एक और बड़ा प्यारा सा

आंखों में अदाएं भी हैं और एक और बात आ जाती है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये डायलॉग भी इस फिल्म का है जो कि है फिल्म कालिया। तो सुनते हैं ये थोड़ा सा नगमा।

और अब हम चल रहे हैं आज के कार्यक्रम की अंतिम डायलॉग के साथ में, और वो डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा है। अगर आप बताएंगे कि वो डायलॉग कौन सा बचा है तो जरूर बता दीजिएगा। बाकी हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि बाबू शाह जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये फिल्म कितनी खूबसूरत थी ना, किस किस ने देखी, कब कब देखी जरूर बताइएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले ही इस फिल्म को देखा है, हर रोज मैं इस फिल्म को देख सकती हूँ, जीने की एक ताकत देती है। सुनते हैं यह खूबसूरत सा नगमा, और आपको जो थोड़े थोड़े गीत सुनवाए हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कभी और किसी और रोज वो जो गीत रह गए उन्हें पूरा सुनाऊंगी।

0: कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गीत हम सभी सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी, उन्होंने वह पूरी कविता लिख डाली। मौत तो एक कविता है, मुझाए मुझसे एक कविता का वादा है, वो पूरी कविता पढ़ने का समय तो नहीं है। जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में किसकी डोर कट जाए ये बात है। और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी है और लिखा है कि आनंद फिल्म उन्होंने दूरदर्शन पर देखी थी और कई सारे और डायलॉग्स हम तक आए हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा डायलॉग दिया है और उसके साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में कार्यक्रम सुरीला सफर में आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार मित्रों, आज की त्रिवेणी आधारित है रंग पर। साथियों, इस संसार में जो कुछ भी भौतिक रूप से उपस्थित है वो स्वाभाविक रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है। हम जिस भी चीज को देख रहे हैं वो उसका अपना रंग नहीं है, हम बस परावर्तित प्रकाश के रंग को देख रहे हैं। हम कहते हैं कि घास हरी है, लेकिन घास हरी नहीं है, ये हरे रंग के प्रकाश को लौटा रही है, परावर्तित कर रही है, इसलिए हमें हरी घास नजर आती है। आकाश नीला है? नहीं, आकाश नीला नहीं है। हमें ये पता है कि अंतरिक्ष तो नीरा अंधेरा है, वहाँ नीला जैसा कुछ भी नहीं है। आकाश अगर नीला नजर आता है तो उसकी वजह बिल्कुल अलग है। नीले रंग का अपवर्तन गुण बाकी रंगों से बिल्कुल अलग है, इसी वजह से आकाश नीला है।

संसार में किसी भी चीज में रंग नहीं है। पानी, हवा, अंतरिक्ष, पूरा संसार रंगहीन है। यहाँ तक कि जिन चीजों को भी हम देखते हैं वो सभी रंगहीन है। रंग तो केवल प्रकाश में होता है, रोशनी में होता है। रंग वो नहीं है जो वो दिखता है, बल्कि वो है जो वो त्यागता है। जो भी रंग बिखेरते हैं वही हमारा रंग हो जाता है। हम जो अपने पास रख लेंगे वो हमारा रंग नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जीवन में जो कुछ भी हम देते हैं वही हमारा गुण हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व हो जाता है।

जो रंगों से परे है वो रंगहीन नहीं है, वो पारदर्शी है, वैराग्य है, जिसका मतलब है कि हम ना तो कुछ रखते हैं और ना ही कुछ परावर्तित करते हैं, यानी हम पारदर्शी हो गए हैं। अगर हम पारदर्शी हो गए हैं तो हमारे पीछे की कोई चीज अगर लाल है तो हम भी लाल हो जाते हैं, अगर हमारे पीछे मौजूद कोई चीज नीली है तो हम भी नीले हो जाते हैं, हम जहां भी होते हैं उसी का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन किसी भी चीज में फंसते बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम पारदर्शी हैं और वो रंग एक पल के लिए भी हमसे चिपकता नहीं है। हम शांत, संतुष्ट, उत्साही और जिज्ञासु रहते हैं।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता बीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण।

0: विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव

0: को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स

0: या AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज शी जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में यह 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में यह वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत 12 o'clock फिल्म से मोहम्मद रफी गीता दत्त की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं 3 विचार स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली पहनी।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला गीत डिटेक्टिव फिल्म से गीता दत्त हेमंत कुमार की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और मुकुल रॉय के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत आखिरी दाव फिल्म से आशा भोसले की आवाज में मजरूर सुल्तानपुरी के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा जो कि है फिल्म अनाड़ी से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

गीत, और इस गीत के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप सबका कल्याण हो ये प्रार्थना करती हूँ। और सुनिए ये गीत मालिक फिल्म से, सुरैया शमशाद बेगम और साथियों की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं और गुलाम मोहम्मद का है संगीत।

हम सुन रहे थे मधुमति फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अंतिम।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को, सभी सखियों को, प्यारे प्यारे जितने साथी बैठे हैं सभी को नमस्कार। और आज मेरे साथ इस मंच पर हैं दीपा। आपको भी दीपा प्यार भरा नमस्कार।
2: चंचल, आप

0: और साथ में हमारी सारी सखियों, सहेलियों और हमारे श्रोता भाइयों को हमारा हेल्दी नमस्कार।
1: तो आपने पिछली बार भी हेल्दी नमस्कार किया, उसकी वजह बताई थी, और आज भी हेल्दी नमस्कार है, ये तो आज भी वजह बताइए
0: भाई। एक बार जब भी आते ना तो अपने श्रोताओं को याद दिला दो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो ना।
1: हाँ,
0: सेहत का ख्याल है या नहीं।
1: इसीलिए भाई दीपा जी जब भी आएंगी ना, वो स्वास्थ्य से भरा नमस्कार करेंगी,
0: और आपको ये बताना है कि आपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा है या नहीं।
1: हाँ, तो भाई हमारे कौन से साथी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, हमारी सहेलियां अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: वो हमसे साझा कर सकती हैं, लेकिन विषय जिन पर हम बात करेंगे वो हम साझा कर लेते हैं।
0: स्वास्थ्य का ख्याल रखना देखो ना इसलिए भी बहुत जरूरी है, इन दिनों बहुत गर्मी हो रही है, तो ये एक जायज सी बात है कि पसीना आता है, लेकिन कई लोगों के पसीने से दुर्गंध आती है।
1: हाँ,
0: है ना।
1: कुछ लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब हम किसी के पास बैठे हों तो दूर से भी उसे नाक भौं सिकोड़ने की जरूरत ना पड़े, या उसे भी अच्छा महसूस हो, तो अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ हाइजीन के ऊपर ध्यान रखते हुए वो जो रखते हैं, तो इस बात का सभी ख्याल रखें। और इसमें क्या उपयोगी टिप्स हो सकते हैं, थोड़ी हम मदद करेंगे, थोड़ी हमारे जो सुनने वाले हैं वो उपयोगी टिप्स लगकर बताएंगे।
0: जी बिल्कुल। और फिर मुझे तो देखो आज उसके बाद ना खरीदारी करने भी जाना है प्रोग्राम के बाद।
1: तो क्या खरीदने वाली हो और कैसे खरीदना है तुम्हें ये बताओ।
0: देखो मैं सोच रही हूँ एक बहुत अच्छा सा ना फोन आया, स्मार्टफोन, और किश्तों पर भी मिल रहा है, तो सोचा कि चलो आज जाकर के देखते हैं कितना किस्त है, क्या है, हम भर सकते हैं या नहीं, तो बड़ा मन है कि फोन खरीद लें।
1: देखो
0: फोन वो स्मार्ट वॉच वाला, साधारण नहीं।
1: क्या होता है ना, आसानी से वो चीज हमारे हाथ में आ जाती है जब हम किश्तों पर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई जो चीज 15,000, 20,000, 50,000 तक की भी हो सकती है, उसे हम कुछ 2,000, 4,000, 5,000, 8,000 देकर भी उसे अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी कि बहुत कम रकम में आसानी से वो चीज आ सकती है। लेकिन हर चीज के कुछ अगर फायदे हैं तो नुकसान भी।
0: बिल्कुल। तो हमारी सखियां कहीं इस तरह से ये फोन लेना या स्मार्ट वॉच लेना या कोई और चीज के लिए किश्तों के उस जो सुंदर से दुनिया है उसमें कितना जा चुकी है, या उनको लगता है कि हाँ कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए,
1: और क्या इसके साथ जुड़े उनके अनुभव भी होंगे कि उन्होंने जब किश्तों पर कोई चीज ली तो उनके साथ में अच्छा क्या हुआ या उसका खामियाजा क्या उन्हें भुगतना पड़ा, तो अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और अनुभव तो बहुत सारे तरीके के होते हैं ना, देखो दोस्ती में भी कितने अनुभव मिलते हैं, कहीं अच्छे दोस्त मिलते हैं, कहीं ऐसी दोस्ती होती है जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, कहीं बहुत लंबी दोस्ती होती है, और जो बचपन की दोस्ती भी रहती है, जहां पर हम KG1 KG2 के जो पढ़ते थे बिल्कुल छोटे, और आज तक दोस्ती, तो क्या ऐसी वाली दोस्ती भी आपके साथ है, या कहीं कुछ ऐसा आपका अनुभव रहा है कि कोई बहुत प्यारा दोस्त है और अभी उससे कहीं दूरी बन गई है, तो कुछ अगर आप बता सके तो कारण बताइएगा, तो कहीं हम शायद आपकी मदद कर सके दिल को हल्का करने में या अपने उस दोस्त के पास जाने में।
1: एक और दोस्त, यानी कि रेडियो को भी कई लोग अपना दोस्त बना लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, तो वो लोग दोस्त बनाते हैं, कोई मोबाइल को अपना दोस्त बना लेता है, कोई किताबों को अपना दोस्त बना लेता है, कोई रेडियो को अपना दोस्त बना लेता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चित्रकारी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, बस अपने शौक में वो इस तरह डूब जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर रंगों से प्यार है, चित्रों से प्यार है, तो चित्रकारी जैसे अगर और भी कला आपके भीतर है, चाहे वो गायन की हो, किसी वादन की हो, तो रंगों की जब मैंने बात की तो मुझे याद है कि आज जिस पद्मश्री महिला की हम बात कर रहे हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं, वो रंगों की दुनिया से ही तो जुड़ी हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनका सफर अगर हम उनके बारे में जानेंगे ना, जानना है या हमें क्या करना है, बहुत कुछ जानकारी तो
1: भाई जानकारी बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई दोस्त जब हम रेडियो को बनाते हैं, गीत संगीत को बनाते हैं, तो पहले गाना सुनवाना बनता है।
0: अरे ये तो नियम भूल ही गई थी।

0: बहुत सुंदर गीत था और जिस तरह से इस गीत में खनक थी ना, वैसी ही कुछ खनक रंगों में होती है और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं जो चित्रकार हैं, जो अपने रंगों का जादू ना जब वो चलाती है ना रंगों की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और भूरीबाई, ये उनका सफर हमें यही बताता है चंचल कि कला छुपाए नहीं छुपती है, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हमारी सखी खासतौर पर, वो क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रोकिएगा नहीं, कभी दबाइएगा नहीं।
0: और ये जो अवसर है जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं, ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा इन चीजों से।
1: और बच्चों के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है, और अगर आपको मान लीजिए कि 40 पार या 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लासिक हूं, लेकिन मन में एक पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहां, तो ये ख्याल आने भी मत दीजिएगा। जरूर अपने पास की किसी कोई क्लास कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो तो जाकर एक बार देखिएगा जरूर कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
0: और 40-50 के पार तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है। उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारियों से काफी हद तक मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं या कहीं और किसी अन्य शहर में चले गए हैं या अपने ही शहर में

0: व्यवस्थित शादी ब्याह करके या नौकरी करके सेटल हो चुके होते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: तो आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है तो बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने उस शौक को पूरी तरह से जी लीजिए।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बात कर रहे हैं चित्रकार भूरीबाई के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गांव है पिटौल, वहां पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे और मेहनत मजदूरी का काम वो किया करते थे। पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई ज्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू, जो आमतौर पर हम देखते ना कि घरों में गेरू से कुछ रंगोलियां अल्पना बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें भी खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथी कभी घोड़ा और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती थी उन्हें लाकर वो चित्रकारी का अपना शौक है उसे पूरा किया करती थी।
1: जी, अब क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी तो पड़ोस के ही गांव में उनका ब्याह हो गया। पति पत्नी दोनों आसपास के गांव शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से। और भूरीबाई भील आदिवासी समुदाय की भित्ति चित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी वो करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 की बात थी, भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था चंचल, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहां के निर्माण में मदद लिया जा रहा था उस वक्त। तो भूरीबाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया तो उनके साथ वो भी भोपाल चली आई।
0: और बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से गेरू से खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो कि बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे
1: जी, उनके पति चले आए।
0: हाँ,
1: पति के साथ
0: वो चली आई और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहां शुरू किया। और यहां उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन, उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी वहां के जो देवी देवता थे उनको समझने के लिए भूरीबाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी दौरान उन्हें यह भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरीबाई से देवी देवताओं के चित्र कागज पर बनाने को कहा, यानी कि दीवारों पर तो बनते ही थे लेकिन ये चित्र उन्होंने कागज पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा।
1: तो वे तो उंगलियों से बनाती थी, अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी कि जीवन में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था, थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु के जे स्वामीनाथन के पास। भूरीबाई ने 5 दिनों में यह काम करके दिखाया जिसके लिए उन्हें उस वक्त 50 रूपये मिले। यहां जी
0: भाई, उस समय की जब आप बात कर रही हैं तो 50 रूपये मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। और यहीं से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू हो गई और ये ऐसी शुरू हुई कि फिर आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है। और भूरीबाई भी अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है, जंगल है, पशु पक्षी है और त्योहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है तो वो उनका अंदाज था।
1: भूरीबाई कहती है कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन लगाइए।
0: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में, लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए, तो अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।
1: बिल्कुल, वे कहती हैं कि अपने समुदाय में वो पहली महिला हैं जिन्होंने कागज और कैनवास का इस्तेमाल किया है और पेंटिंग करने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हैं। एक मजदूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय के पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली वे पहली महिला बनी जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
0: और भूरी भाई का ये मानना है कि आप चाहे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं।

0: किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को और अपने सभी साथियों को कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी भी चीज में आड़े मत आने दीजिए। आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। और अब एक गाना सुन लें।
1: चलिए।

0: पानी पता कैसा होता है कि जिस रंग में मिल जाए वैसा ही बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और दोस्ती भी ऐसी थी, अगर आपको दोस्त कोई बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपके रंग में वो रंग जाए, तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी आपके पास है ना, तो वो 100,000 दोस्त के बराबर है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, यही एक संदेश हमारी एक सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ होगा। हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं, सोचो अगर सखी सहेली न होती तो हमारी दोपहर कितनी सुनी होती। भाई, सखी सहेली के रहते आपकी दोपहर कभी सुनी नहीं होगी।
0: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, जिनमें से अधिकतर या तो हम कहें सभी रिश्ते जन्म से संबंधित होते हैं। और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, इन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो होता है दोस्ती का। और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनते हैं और खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: और जीवन के हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं। और मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, वही सच्चा दोस्त होता है।
1: लेकिन चंचल, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग के जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है। तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
0: ऐसा तो नहीं हो सकता।
1: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं। आज जहां ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से दोस्ती हुआ करती थी,
0: दिल से जुड़ जाते थे।
1: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए।
0: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं। वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है। दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं। खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना जिंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करें और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाएं, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते, बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ, अहम, इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं
1: होती। बिल्कुल सही कहा। और एक हमारी सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण, सुदामा और कर्ण, दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त एक दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं। और दोस्ती यही मांगती भी है, अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा, लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो, हिचकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
0: तो चलिए, अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं। अच्छा सा,
1: चलिए।
2: बाकी रह गए दोस्ती यारी रद्द हो गई, प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है, छी छी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान जब दोस्ती होती है तो।

जब तक जोड़ सलामत साथ सलामत छोटी और बड़ी है तो क्या पांचों है तो हाथ सलामत एक एक के है पांच मुकद्दर तकलीफों से घबराना मत साझे जोड़ जवानी बचपन पांच से पांच मिले।

बिल्कुल सही बात है कि दोस्ती में सिर्फ दोस्ती ही होती है, कोई एहसान नहीं होता। लेकिन इस वक्त समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा महेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती की। देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं। तभी तो ये लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं, हर रोज एक घंटा हमें मिलता है। सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब। सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है, जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहां बिना किसी स्वार्थ के

0: दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयां जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहां इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहां कोई बंधन नहीं होते।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया हमारे, ये तो श्रोता भाई हैं, ये कहते हैं, जैसे मेरी जिंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सुना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपनी हमें हमारी भावना को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं, सच कहूं तो जैसे दोस्ती बिना जग सुना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
0: और भी बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है, तो आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो अगला संदेश पढ़ते हैं। इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में डारस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरा सुनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल
1: सकते हैं। और एक हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथी रहा है। एक बार के लिए खाना भूल जाते थे पर सखी सहेली सुनना नहीं भूल पाते थे, पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं, तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखियों और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं, आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
0: बिल्कुल, अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
1: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
0: हाँ, तो भाई चलिए सूनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहाँ हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते हैं।
1: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
0: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप जरूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर, जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है, क्योंकि किश्तों पर खरीदारी करना इनकी कितना आसान ईएमआई पर किसी चीज को ले लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
2: बिल्कुल सही कहा। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, ना किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है, अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदारी कितनी सही है। भाई आजकल ईएमआई और यूपीआई का जमाना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पर जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है किश्त देनी है, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज इसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीजें फिर जा रही हैं।
2: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया कार है या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते हैं, कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीजों को लेना।

0: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किस्त बनानी होगी ना। आपने कहा घर लेना है, तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज होती है, जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा घर लेना है। अपनी जरूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है, इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए। और फिर जो किश्त बनानी है वो भी इतनी बनाइए। मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के घर में रहते हैं, तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की क्योंकि आपको बरसों से आदत है, तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे। लेकिन उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।
1: ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई जरूरी चीज है, जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है। हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है, अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए, एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है, तो किस्त में तो हम ले ही पाते हैं ना।
0: मैं फिर वही कहूंगी कि किश्त अगर आपको लेनी है, तो बहुत सारी किश्तें जब आपके समय समय पर जाती है ना, तो आप या तो उन्हें कहीं लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किश्तों के बारे में लिखना। अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किश्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किश्त अगर आप भूल गए, तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है, वसूली करने वाली कंपनियों का, वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है। और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज हमारी वापस से मांगी जा रही है, या इसके पीछे जो हमें जो भुगतान करना पड़ता है, जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है, उन चीजों से अगर बचना है तो या तो समय पर किश्त देनी है, उतनी आमदनी आपको रखनी, या तो फिर किश्तों से ही बचना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, लगता क्या है, अरे सिर्फ 2000 या 3000 की किश्त है, तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2000 या 3000 दिख रहा है ना महीने का, सिर्फ उतना ही दिखता है, इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना, जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लग जाती है, या इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट, कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है। बाद हमें समझ में आता है कि नहीं भाई ये 2 या 3 हजार की नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हजार तक पे चली
0: और वो जो 20 हजार की चीज आपको खरीदनी थी, वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30 हजार या 35 हजार तक की वो पड़ जाए।
1: बिल्कुल,
0: तो इसीलिए आप किश्तों में खरीदने का जो एक कहते ना कि वो लुभावना, जो एक प्रलोभन होता है, उससे बचने का प्रयास कीजिए। और इसके बारे में हमारे साथी लिखते हैं कि किश्तों में खरीदारी अच्छी है, चूंकि आपने आपके पास ज्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है, तो अक्सर लोग अब किश्तों में खरीदने को अच्छा महसूस करते हैं। हालांकि ये नकद खरीदने से महंगा पड़ता है, लेकिन इस चलन के लिए सबके पास फ्लैट, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं। मासिक भुगतान का ये आइडिया ज्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने ईएमआई दे सकते हैं, तो वही चीजें आप खरीदें, क्योंकि 2 या 3 किश्तों की लेट लतीफी फिर ब्याज बढ़ने की महंगी पड़ जाती है, और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं। किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं, और पैसा भी डूब जाता है।
1: बिल्कुल, ये सही कहा। देखिए, इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फायदे क्या है, नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई किश्तों से खरीदारी के कई नुकसान है। जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी हो सकती है, जीएसटी कहां लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते, क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किश्त तो हमें जानी ही है। फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे ईएमआई चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार कि किश्त बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है।
0: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किश्तों पर खरीदारी करना सही है, जब आपको बहुत ज्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। इसलिए किश्तों पर खरीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी हो, या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, और मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है।
1: अच्छा, एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप ईएमआई के पक्ष में है तो 10% का नियम अपनाना चाहिए। वो क्या है कि आप सभी ईएमआई का कुल योग आपकी मासिक इनकम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

0: मतलब जितना आपका है इनकम आपकी, उसका 10% ही सिर्फ ईएमआई में जाना चाहिए। सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं, तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम बेफिजूल की चीजों से खरीदने से बच सकते हैं।
1: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे। सुनवा
0: चलिए
1: दें?
0: बिल्कुल सुनवाइए।

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं गर्मी बहुत है।
1: सही
0: और
1: बात है,
0: ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहां उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है लेकिन
0: जी
1: बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है। आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं, और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं। और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है, हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है।

0: और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना उसे खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं।

0: क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज्यादा सेवन अगर आप करते हैं या मांसाहार का सेवन अगर ज्यादा करते हैं तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज्यादा जमा ना होने दीजिए और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहने, शरीर के जो अंतरंग हिस्से हैं उनकी साफ सफाई अच्छे तरह से रखिए, कॉफी या चाय इनका सेवन थोड़ा कम करिए, धूम्रपान का सेवन कम करिए क्योंकि ये भी शरीर की गंध को बढ़ाता है, और बिना धुले हुए कपड़े कभी ना पहने।
1: बिल्कुल, और यही सारी बातें हमारे एक श्रोता ने भी इसी तरह की बातें लिखी कि लिनन या सूती ढीले कपड़े पहने ताकि त्वचा में हवा आती जाती रहे, नायलॉन या पॉलिस्टर जैसे कपड़े पसीने को सोख नहीं पाते इसलिए बदबू बढ़ाते हैं, और एक बार कपड़े जैसे अभी आपने बताया कि एक बार कपड़े जो पहन लिए वो बगैर धोए उसे दोबारा ना पहने, और सारी बातें उन्होंने यही बताई है कि प्यास से युक्त भोजन का इस्तेमाल कम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिक बाहर जाते हैं, शरीर ठंडा रहता है।
0: इसके अलावा अगर हम आसान घरेलू उपायों की बात करें तो सफेद सिरका है या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें, सफेद जिस सिरके के रस को आपको अपने जहां जो प्रभावी हिस्सा है जहां दुर्गंध ज्यादा आती है पसीने में वहां रगड़कर धो लेना है, टमाटर है। इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है, नीम के पत्ते हैं उनसे आप स्नान कर सकते हैं, नीम के पत्तों को उबालकर नींबू का रस निचोड़कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचलकर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे, आप अंडर आर्म्स में, ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
0: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
1: चलिए।

0: सखी सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आपके चहेते फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ हाजिर हूँ मैं शिफाली कपूर। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ हमारे दिल के लिए हों, और उन्हीं खूबसूरत पलों को सजाने के लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जहां फोन के जरिए आपसे होगी बातचीत और साथ होंगे आपके पसंदीदा गाने। साथियों, कुछ गीत मुस्कान बन जाते हैं, कुछ धुनें यादों का कारवां ले आती हैं, और कुछ फरमाइशें दिल से सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला। लेते हैं पहला कॉल। सुन रहे हैं ना, फोन की घंटी बज रही है, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं? हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला।
0: आहा, क्या बात है, अपना नाम तो बताएं।
1: प्यार का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: मेरा नाम ये है मोहब्बत प्यार प्रेम।
0: वैसे कहते हैं ना कि प्यार बांटते चलो, प्यार जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है, है ना?
1: जी। तो मेरे आगे दो शब्द लगे हैं, तो प्रेम, दूसरा गौतम, और गौतम बुद्ध, दोनों ने ही प्रेम का संदेश दिया।
0: क्या बात है। तो आज आप क्या संदेश दे रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, जरा ये भी बता दें।
1: मैं झांसी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी।
1: पूर्व लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल।
1: और गर्व करते हैं।
0: बिल्कुल गर्व है।
1: आपको भी गर्व होगा।
0: बिल्कुल गर्व है जी, बिल्कुल गर्व है। अपने बारे में भी कुछ बताएं प्रेम जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं शब्दों की साधना करता हूँ, मैं राइटर हूँ, लिखता हूँ।
0: क्या बात है।
1: कविता से मेरे आत्मिक जुड़ाव है, मैं मूल रूप से कविता का विद्यार्थी हूँ।
0: अच्छा, कैसी कविताएं लिखते हैं आप?
1: छंद में तो मैंने बहुत कम लिखा, लेकिन हम मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं। हम मानवतावादी कविताएं हैं जो मुक्त छंद की हैं, हम मुक्त लिखते हैं।
0: अच्छा, तो चार लाइनें आप क्या हमारे

0: श्रोताओं के लिए यहाँ पर सुना सकते हैं?
1: जी जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है 2 मिनट का मौन है। आओ मित्र 2 मिनट का मौन रखें, आओ मित्र 2 मिनट का मौन रखें। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, आओ मित्र 2 मिनट का मौन रखें।
0: क्या बात है, क्या बात है भाई आपकी, तो इस कविता ने निशब्द कर दिया, तारीफ में क्या बोलूं मैं। और बहुत खूब आपकी कलम यूं ही चलती रहे और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें। प्रेम जी तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत आपकी पसंद का सुनवा दिया जाए?
1: एक बहुत फिलोसफी का गीत है, तीसरी कसम का, और बहुत भोले भाले राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश ने गाया, शैलेन ने लिखा। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, आप इजाजत दे तो मैं गुनगुनाऊं।
0: चलिए गुनगुना दीजिए जरा।
1: सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम तो बताएं।
1: जी मैं तकिया मड़िया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।

0: जमील भाई नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार मैम, नमस्कार। और मैम क्या हालचाल है?
0: बस सब मेहरबानी है ऊपर वाले की, और आप सभी की शुभकामनाएं हैं, वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
1: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिफाली कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
0: जमील भाई खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें। जी
1: 2019 में मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है मैम।
0: अरे वाह, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अरसा 2019 से आज है 2026, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा, तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं हुए ना?
1: निराशा हुआ है मैम, बहुत अच्छा। दिल से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है मैम।
0: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस कर सकती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती है। तो बताएं जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
1: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त 37 डिग्री हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर है मैम।
0: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
1: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
0: आ जाइए गाने पे, बिल्कुल अपनी पसंद बताएं।
1: टीम का नाम है महबूब की मेहदी और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैम थोड़ा सा गुनगुना देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल गुनगुनाइए।
1: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली हो, कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी। ये जो चिलमन है

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में किसने फोन किया, कहाँ से फोन किया?
1: जी नमस्कार मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ बताइए।
1: मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए रेडियो कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
1: हेलो फरमाइश, छाया गीत और बहुत ही प्रोग्राम आपका है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आपने?
1: नहीं नहीं, ट्रांजिस्टर रखा हुआ है तो ट्रांजिस्टर में बहुत अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ। मेरा घर के आसपास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: मेरा माँ है, पापा है तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, तो थोड़ा सा देखभाल करती है तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बाड़ी में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
0: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
1: हाँ, तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो हमारा इधर एक मंदिर है, विख्यात तो मंदिर है, माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर।
0: अच्छा।
1: तो यह से बहुत ही लोग आती है वो तो घूमने के लिए, बाहर से डिगी है और डिगी के आसपास बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है वो डिगी के बारे में।
0: तो वहाँ पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या बारह महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?
1: किसी भी समय में आते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
0: अच्छा, ये बताएं कि आज आपने हेलो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है तो कोई गाना भी तो चुना होगा अपनी पसंद का?
1: जी जी, मेरे को गाना सुना दीजिए, साजन चले ससुराल मूवी से, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है, बंगाली भाषा
0: जी,
1: तो बंगाली लोग रहती है तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा, लोग जानती है हिंदी भाषा सीख जाती है
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
0: और विश्वजीत जी, आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा। और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं, हिंदी में कार्यक्रम आते हैं, उसके माध्यम से आप हिंदी सीख लेते हैं, तो ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और पूरी करते हैं आपकी पसंद, सुनिए ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूं। बहन जी
0: बताएं जरा अपने बारे में।
1: एकदम अच्छे हैं और हम खेती करते हैं और साथ में फूल वाला काम डेकोरेशन का।
0: अच्छा, और वैसे खेत में आजकल क्या लगा हुआ है?
1: इस समय खेत में कुछ नहीं है, खेत तो खाली है। इस समय बस जुताई हो चुकी है, अब बारिश हो जाए और उसके बाद फिर मूंगफली की बुवाई होगी।
0: अरे वाह, अभी तो चटक गर्मी होगी।
1: जी जी,
0: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
1: जी जाते हैं, अभी क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं।
0: अच्छा,
1: तो जाते रहते हैं, उसमें फल भी लगे हुए हैं।
0: कौन से फल लगाए हैं?
1: अभी आम है और कटहल है।
0: आम कौन सा है, आम की कौन सी जाति?
1: दशहरी है, दशहरी।
0: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
1: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
0: और बताएं आपके जो शहर है वहाँ के क्या हालचाल हैं और क्या चीज प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
1: हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है, जैसे झांसी हमारे पास है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है और महोबा भी किला बने हुए हैं राजाओं के, और हमारे बुंदेलखंड में जो चरखारी है वहाँ पे कई तालाब है और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है।
0: अच्छा,
1: वो भी बहुत जी देखने लायक है।
0: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार महोबा आना ही पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल आना पड़ेगा आपको।
0: हाँ, लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम मिले।
1: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद लीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और इस तो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये बता दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं?
1: जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत के बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: अरे

0: हेलो फरमाइश
1: शेफाली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपसे मुखातिब हूँ मैम।
0: भाई बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
1: और मैं 2003 से रेडियो भी भारती का सुनने वाला हूँ। मैं घाट कोपर में रहता था तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: तो ये बताएं कि मुंबई के घाट कोपर से बनारस कैसे पहुँच गए?
1: जी मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम, उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट हो गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, अस्सी घाट के बगल में, वहीं मैं रहता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं?
1: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, अपना सैलून है परवेज भाई का वाराणसी में?
1: जी जी 20 साल से ऊपर हो गया होगा, मेरी फोन आज लगी है।
0: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है हेलो फरमाइश।
1: रेडियो सुन सुन के मैं जो कि इतना जो कि बचपन से सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है आप लोग की आवाज।
0: जो इस समय आपकी आवाज है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय विविध भारती के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
1: जी जी मैम, फेमस है उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस है वो रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे इतनी अच्छी खुशबू आती है, हींग की खुशबू आती है, घी या देसी घी की खुशबू आती है कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी है। यहाँ तक विदेशी पर्यटक भी वो स्वाद चखते हैं मैम। और एक नया घाट बना है हमारे यहाँ नमो घाट मैम, वो बहुत फेमस घाट हुआ है।
0: गंगा आरती तो बहुत ही बढ़िया होता है।
1: गंगा आरती मैम आप दशा समेव घाट पे देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
0: जी जी, और उसका जो अक्स गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चलें परवेज भाई, आपकी इस खुशी को हम दुगना कर देते हैं। अब बताएं आप कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: जी मैम, फिल्म रहेगी लव इज शिमला मैम, गाने का बोल है अलिफ जोहर आल, अलिफ जोहर आल, अलिफ जोहर ए, अलिफ तो सो, ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
0: अच्छा, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार शिफाली दीदी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बात कर रहा है हमसे?
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: ओ साहिल भाई, क्या हालचाल हैं?
1: ठीक हो? आप सुनाइए दीदी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक हैं। आप सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं। और अपने बारे में बताएं साहिल भाई।
1: जी मैं पश्मीना, जो कश्मीर आर्ट है ना, उसी के साथ करता हूँ दीदी।
0: शॉल वगैरह बनाते हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम होता होगा, हाथ से ही करते होंगे आप?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी अपनी शॉप है या आप कहीं जाते हैं या घर से करते हैं ये काम, कैसे करते हैं?
1: मैं घर से ही करता हूँ दीदी, ये काम बनाते हैं तो फिर उसको खुद ही बेचते हैं।
0: अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम?
1: जी बिल्कुल, लगभग 2012 से।
0: तो काफी लंबे समय से जुड़े होंगे आप विविध भारती के साथ भी?
1: जी विविध भारती के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने 2 मई से प्रोग्राम शुरू किया है मन चाहे गीत।
0: जी जी जी जी।
1: और आपने कुछ प्रोग्रामों में चेंजेस भी लाए, तो बहुत अच्छी लग रही है हमें वो आपकी चेंजेस।
0: अच्छा, तो आपको ये जो बदलाव हुए हैं ये पसंद आ रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: और वैसे क्या आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं या कुछ खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं?
1: प्रोग्राम तो मैं सभी सुनता हूँ दीदी, आज के फनकार आता है, सुरीला सफर आता है, और छाया गीत, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपके हमें मिलते हैं पिटारा, वो हमें सभी सुनने को मिलते हैं।
0: विविध भारती से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है?
1: प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं।
0: और अब ये बताएं जरा कि आप श्रीनगर के इस समय हाल कैसे हैं, मौसम कैसा है?
1: तो इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है, गर्मियां शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल जो दिनों पहले यहाँ का जो तापमान था वो 31 भी हो गया।
0: अच्छा, तो आज साहिल भाई कौन सा गाना सुनवा दिया जाए आपको?
1: फिल्म का नाम है डोली, उसी का एक नगमा है आशा जी की आवाज़ में, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर।
0: भाई साहिल भाई, ये तो आपने मेरी पसंद चुरा ली। तो चलिए अपनी इस प्यारी सी बातचीत को यहीं रोक देते हैं और अब सुनते हैं आपकी पसंद का, और हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये गाना पसंद होगा, तो हम सब सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताएं तो।
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम भाई क्या हाल चाल है।
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं सबसे बड़ा फैन आकाशवाणी विविध भारती का हूँ और उसमें से सबसे अच्छे मुझे आपके कार्यक्रम लगते हैं। हेलो सहेली में आप आते हो, सखी सहेली में आप आते हो, हेलो फरमाइश में आप आते हो, तो चार चांद लग जाते हैं।
0: चलिए भाई, आपको विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप विविध भारती से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो यूँ समझिए कि मेरी धड़कन एकदम से तेज हो चुकी है।
0: भाई ऐसा क्यों?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती पे कॉल लगना है ना, ऐसा होता है कि आपको मतलब सारी खुशियाँ मिल गई एक साथ में।
0: हम तो अपने सभी श्रोताओं के लिए हमेशा यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें। तो अब अपने बारे में बताएं प्रेम भाई, क्या करते हैं वहाँ पे?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोबाइल ऐप से आकाशवाणी विविध भारती और जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना उनको सुनता हूँ मोबाइल ऐप से। और अगर हम कहीं बाहर भी जाएं ना फिर भी हमें मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम आसानी से सुनने को मिल जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, विविध भारती के जो कार्यक्रम आते हैं ना उसमें से मुझे हेलो फरमाइश और हेलो सहेली, इसके अलावा पिटारा के तहत में जो आता है तेले सेहतनामा आता था, अभी सेलुलाइट के सितारे शुरू किए हैं, और इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। और जब रात में हवा मेल आता है ना 8 बजे, उसका तो हम सबसे बड़े फ्रेंड हैं।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो सभी कार्यक्रमों के नाम ले दिए क्योंकि सभी कार्यक्रम आपको पसंद हैं, यानी आप तो सुबह से शाम सुनते ही सुनते हैं विविध भारती। जरा ये बताइए कि इस समय जो आप हमें कॉल कर रहे हैं खेत से कर रहे हैं क्या?
1: इस समय तो हम घर पे ही हैं, अभी गर्मी का टाइम है ना तो खेत में अभी काम कुछ भी नहीं बचा है, बस फसल निकाल के घर ले आए हैं। खेत को कुछ समय के लिए खाली कर छोड़ दिया है, तब बरसात होगी ना तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई में।
0: अच्छा तो जरा ये बताएंगे आज कौन सा गाना सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है अर्पण और गाने के बोले लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना काफी अच्छा लगता है।
0: जी गाना है ही अच्छा, इसका गीत संगीत दोनों बहुत अच्छा है। सुनिए अब अपनी पसंद का ये गाना।

0: हॅलो फरमाइश.
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र से हिम्मत राज श्रृंगारे बात कर रहा दीदी, आपका पुराना श्रोता.
0: हिम्मत भाई नमस्कार.
1: नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं. अब आप अपने बताएं, क्या हालचाल है आपके?
1: मैं अच्छा हूँ दीदी.
0: क्या चल रहा है आजकल?
1: आजकल कुछ नहीं दीदी, काम पर था, काम पर से अभी फोन लगाया मैंने.
0: अच्छा, तो आप बताएं वहाँ पर क्या काम करते हैं अमरावती में?
1: मैं मजदूरी का काम करता हूँ दीदी.
0: अच्छा, तो इस समय छुट्टी लेकर आए हैं फोन लगाने के लिए?
1: हाँ दीदी.
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी ली. तो वो छुट्टी जो है हो गया कि आपका काम बन गया उस छुट्टी में?
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शिपान दीदी हमारे आमने सामने बैठी है रेडियो के.
0: देखिए रेडियो ऐसा माध्यम है हिम्मत भाई कि ऐसा लगता है कि हम सब आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं. और बताएं अमरावती के क्या हालचाल है? खूब गर्मी पड़ रही है
1: अमरावती विदर्भ में? बहुत गर्मी दीदी, इधर पारा बहुत गर्म है दीदी, 70 डिग्री सेल्सियस है, किसी 47 है.
0: तो ये बताइए कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं?
1: मैं तो दीदी छतरी लेके जाता हूँ साइड पर, कान को बांधता हूँ कपड़े और ठंडा पानी पीता हूँ और समय पर भोजन करता हूँ दीदी और शाम में 5 बजे घर पे आता हूँ.
0: आप जरा बताएं आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: उड़ी जब जब जुल्फे तेरी और आशा भोसले यानी मोहम्मद रफी साहब के आज में गाना है दीदी.
0: तो चलिए अब पहुंच रहा है अमरावती में आपकी पसंद का ये गाना.

0: हेलो फरमाइश।
1: आंखों में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते, आप तो हमारी रूह में बसे हैं, इसलिए मुलाकात की फरियाद नहीं करते।
0: अरे वाह भाई वाह, ये कौन शायर आए हैं भाई, जरा बताएं अपना नाम तो बताएं।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिलीप पाहुजा जी ने उदयपुर से झीलों की नगरी से हमें फोन किया है। गर्मी के क्या हाल चाल है उदयपुर में?
1: गर्मी तो 40-42 के आसपास चल रही है।
0: ऐसे में आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: अभी थोड़ा ठंडा है।
0: गर्मी के मौसम में कामकाज बहुत इफेक्ट करता होगा, क्योंकि इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपका किस चीज का काम है?
1: टेलरिंग व्यवसाय है, मतलब सिलाई का।
0: अपनी शॉप है?
1: जमा कोट वगैरह। अभी भैया की शॉप है।
0: अरे वाह क्या बात है। आप जेंट्स टेलर हैं और या लेडीज टेलर हैं या दोनों, लेडीज जेंट्स?
1: जेंट्स।
0: अच्छा,
1: जेंट्स ओनली।
0: तो गर्मी का मौसम है तो कामकाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका? आपको जल्दी जल्दी देना पड़ता होगा, तो उसके लिए कारीगर ज्यादा लगाने पड़ते होंगे।
1: कारीगर तो ज्यादा ही है मैडम, मालिक की कृपा से, और उनको टाइम पे भी मिल जाते हैं कपड़े।
0: क्या बात
1: लेकिन
0: है।
1: इस बार थोड़ी सी शादियां कम है।
0: अच्छा,
1: इस हिसाब से थोड़ा फर्क है।
0: अच्छा,
1: पर्यटकों की तो भारी धूम मची हुई है स्थान के अंदर।
0: हम इसी पॉइंट पर आने वाले थे, वही बात आपने छेड़ दी कि भाई उदयपुर और राजस्थान में पर्यटकों के क्या हालचाल हैं, भाई इतनी गर्मी में भी पर्यटक हैं या नहीं है?
1: जी बिल्कुल है मैडम, 12 ही महीने उदयपुर के अंदर पर्यटक मिलेंगे ही मिलेंगे।
0: जी जी जी,
1: चाहे गर्मी कितनी भी हो।
0: तो ये बताएं कि उदयपुर में और चीजें ऐसी क्या हैं जो देखी जा सकती हैं झीलों के अलावा?
1: झीलों के अलावा तो एक मानसून पैलेस है, और वो भी अच्छा है। थोड़ा सा ही आगे कुंभलगढ़ है, और 40-45 किलोमीटर की दूरी पर नासिक द्वारा श्रीनाथ जी का बहुत ही शानदार मंदिर है।
0: जी जी,
1: उसके बीच में एकलिंगपुरा जी का, एकलिंगपुर मतलब एकलिंगगढ़ के नाम से महादेव जी का मंदिर है, और अभी पिछले 3-4 वर्षों में नया एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है, उदयपुर में ही हमारे सिंधी समाज के द्वारा ही बनाया गया है, निर्मित किया गया है।
0: अच्छा,
1: सेम टू सेम जैसा वैष्णो देवी में बना हुआ है, ज्योत भी वहीं वैष्णो देवी माता जी से ही आई थी, और लंगर 12 ही महीने चालू रहता है।
0: अच्छा, अब ये बताएं कि हमें इंतजार है इस बात का कि आप बताएं अपने पसंद का फिल्मी गाना आज के कार्यक्रम के लिए।
1: रफी साहब का गाना याद

0: हेलो फरमाइश।
1: शेफाली बहन को नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और
1: आज हमारे मन में इच्छा थी कि शेफाली बहन से बात करेंगे, तो आज पूरी हो गई।
0: क्या बात है, तो हम जाने कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी मैं आपका बड़ा भाई उदयलाल टेलर उदयपुर से बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, जरा हालचाल तो बताएं अपने।
1: हालचाल हमारा मस्त है, गर्मी 44 डिग्री चल रही है और राजस्थान में गर्मी बहुत ही होती है।
0: जी राजस्थान की गर्मी तो फेमस है। उदय भाई वहाँ पर क्या काम काज है?
1: हमारा टेलरिंग का काम है, जेंट्स कपड़ों की सिलाई करते हैं।
0: क्या बात है भाई।
1: मैं 55 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और अभी मेरी उम्र है 74 साल।
0: क्या बात है, 55 साल से आप विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: आपने इन 55 सालों में बहुत बदलाव देखे हैं विविध भारती में।
1: मैंने सबसे पहले तो वाल वाले रेडियो सुने थे, उसके बाद में चार चार सेल वाले ट्रांजिस्टर आए थे, फिर दो सेल वाले आए थे
0: जी,
1: और अभी तो मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं।
0: सबसे
1: परिवर्तन हुआ है।
0: अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ सुनने में, कैसे सुनने में आया? मोबाइल पर अब आप ज्यादा अपने को सहज महसूस कर पाते हैं या पहले जमाने में जैसे आप सुनते थे उसमें अपने को सहज महसूस करते थे?
1: नहीं, रेडियो पर जो आनंद आता था वो मोबाइल में नहीं आता है।
0: ये बात बिल्कुल आपने सही कही है।
1: समय होता

0: उसके 5 मिनट पहले से हम वो ट्यून लगाते और कोशिश करते।
1: सही कह रहे हैं आप,
0: ट्यून बड़ी अच्छी लगती थी।
1: जी जी जी, तो अभी भी रेडियो अपने पास रखा है या नहीं रखा है?
0: नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बंद है।
1: हाँ, तो ये पुरानी यादें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं।
0: जी जी।
1: तो अब ये बताएं, दिल खुश करने वाला वो कौन सा गाना है जो आपने हेलो फरमाइश के लिए आज पसंद किया है?
0: फिल्म वो कौन थी का काल जी गाना है, लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब के शब्द है
1: जी,
0: और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
1: जी,
0: लग जा गले
1: जी,
0: हसी रात फिर हो न हो,
1: कालजयी गाना है, इसकी तो कोई बराबरी ही नहीं। अद्भुत गायकी, अद्भुत संगीत और कमाल के बोल हैं इसके। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: पसंद किया है।
1: फिल्म वो कौन थी का काल देव गाना है लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब के शब्द है
0: जी,
1: और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
0: जी,
1: लग जा गले
0: जी,
1: हसी रात फिर हो न हो,
0: कालजयी गाना है, इसके तो कोई बराबरी ही नहीं, अद्भुत गायकी, अद्भुत संगीत और कमाल के बोल हैं इसके। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

हाँ तो साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा कि आज के लिए बस इतना ही। आपकी बातचीत और आपकी फरमाइशें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम सिर्फ गाने नहीं सुन रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। साथियों, जिंदगी चाहे जितनी तेज क्यों न हो जाए, एक अच्छा गीत हमें हमेशा कुछ पल ठहरना सिखा देता है। बहरहाल, आपको बता दें कि फोन पर हमारी अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 11 बजे से विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से। हम रिकॉर्ड करेंगे फोन पर आपसे की गई बातचीत। तो हमारे टेलीफोन नंबर्स फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 400-24662, नंबर एक बार फिर से 400-24662, मुंबई का STD कोड है 022022। चलिए अब हमारा दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 28670288 28670288। और हाँ, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, वे कृपया 2 माह के बाद ही हमें कॉल करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी उनके इस पसंदीदा कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। चलते चलते आपको ये भी बता दें, आज के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का, विविध भारती की ओर से इस

0: सुंदर सजीले कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। साथियों, रिश्ते सिर्फ मुलाकातों से नहीं एहसासों से भी बनते हैं। तो हम फिर मिलेंगे इसी स्नेह और अपनेपन के साथ। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: हेलो फरमाइश।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम मैंडिक 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे है। पेश है कार्यक्रम विवरण।

अब आपको जानकारी दे दें, हमारी आज की सभा में शेष रहे और कल की पहली सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा की। पहले आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रम। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 पर और दोबारा रात 9 बजे से। हमारे केंद्र से कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय होगा अब से कुछ ही पलों में, यानी शाम 5:05 पर, जिसके अंतर्गत सुनिएगा आज की बात पर चर्चा। विषय रहेंगे जंक फूड के सेवन से बचे, जीवन का आधार पानी, ऊर्जा की बचत एवं युवा। साथ ही सुनाएंगे फिल्म संगीत।

आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रमों का समय रहेगा शाम 7:30 से। हमारे केंद्र से कार्यक्रम किसान वाणी प्रस्तुत करेंगे शाम 7:00। इसके प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, जिसके अंतर्गत सुनिएगा कामकाज की बातें, बातचीत, लोक भजन, बाजार भाव और मौसम की जानकारी। और हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का मजा आप ले पाएंगे रात 10:00 से।

अब एक नजर हमारी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों पर। हमारी प्रातःकालीन सभा की शुरुआत होगी रोजाना की तरह सुबह 5:53 पर। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 पर, सुबह 10 बजे और एक बार फिर से दोपहर 12 बजे से लेकर शाम

5 बजे तक। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित चिंतन सुनिएगा सुबह 6:05 पर और यहीं से 6:10 पर होगी वंदना। हमारे केंद्र से रामचरितमानस गान का अंग प्रसारित किया जाएगा सुबह 6:30 पर। कार्यक्रम खेती निवाद सुनिएगा 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत का आनंद लीजिएगा 6:50 पर और वातायन का समय रहेगा सुबह 7:20 पर।

दिल के जज्बातों से लबरेज फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ दिल से लेकर हाजिर होंगे सुबह 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत प्रसारित करेंगे 8:45 पर। सुगम संगीत आपके लिए पेश करेंगे सुबह 9:10 पर और दोबारा सुबह 11:00। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा सुबह 9:30 पर और हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का मजा आप ले पाएंगे सुबह 11:30 पर।

अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी सुन रहे सभी युवा दोस्तों को आपकी दोस्त शबाना खान का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपसे रूबरू हूं आपका अपना कार्यक्रम लेकर, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे अलग अलग विषयों पर, साथ में सुनवाएंगे आपको फिल्मी नगमे। तो आज जिन चीजों पर हम आपसे चर्चा करेंगे उनमें शामिल हैं जंक फूड के सेवन से बचें, जीवन का आधार पानी, ऊर्जा की बचत एवं युवा विषय। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जंक फूड के सेवन की। आज हम देखें दोस्तों तो जंक फूड जिनमें कि पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट बंद स्नैक्स वगैरह का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो रहा है। और ये लत, यानी कि ये आदत अगर हम कहें, तो बच्चों में ये आदत बहुत ज्यादा तेजी से फैलती जा रही है। और इनसे दोस्तों मोटापा, फैटी लीवर, कब्ज, पाचन विकार, मधुमेह और हृदय रोगों का ये मुख्य कारण बनता जा रहा है। और दोस्तों, इससे बचने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम इन चीजों के नुकसान से बचें, तो हमें करना ये होगा कि हमें घर का बना ताजा सादा खाना खाना चाहिए। और अगर नहीं खाते हैं तो हमें आज से ही अपने घर के बने खाने की आदत डाल लेनी चाहिए, जिनमें कि फल, सब्जियां और सलाद वगैरह अपने खाने में शामिल करें। दोस्तों, ये जंक फूड बहुत ही हानिकारक है। कभी कभी हाँ, हम चाहें तो मनपसंद चीजें खाने के हिसाब से इस जंक फूड को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसे अपनी आदत न बनाए। दोस्तों, संतुलित खानपान और स्वस्थ जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। जंक फूड को अपनी दिनचर्या से हटाकर इसे कभी कभार ही खाएं, इसे अपना शौक न बनाएं।

जिनसे हमें इन खाद्य पदार्थों का और भी अधिक आनंद मिलेगा। हमें ये अच्छे लगेंगे, लेकिन इसे अपनी आदत न बनाएं। और इसके लिए ये हमारे शरीर का आभार मानेंगे कि हमने अपने शरीर को बुरे खानपान से बचाया।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो दोस्तों, जंक फूड के सेवन से बचें, क्योंकि ये तमाम चीजें हमारी एक बुरी आदत की तरह हमारी लत बन सकती हैं, जो कि हमारी सेहत पर बुरा असर डालती हैं। और आइए दोस्तों, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए करते हैं बात पानी की। दोस्तों, पानी हमारी जिंदगी का आधार है। पानी, जिसे हम जल भी कहते हैं, पृथ्वी पर हमारी जिंदगी का आधार है। यह एक ऐसा अनमोल संसाधन है जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी हमारे रोजमर्रा के हर पहलू में बहुत ही जरूरी भूमिका निभाता है। सबसे पहले पानी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। दोस्तों, हमारा शरीर लगभग 60% पानी से बना होता है। वह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने, हमारी पाचन शक्ति में मदद करने और हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक से काम करने के लिए जरूरी है। दोस्तों, पर्याप्त पानी न पीने से डिहाइड्रेशन हो सकता है, जो एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। तो दोस्तों, हम भी आपसे अपील करना चाहते हैं कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो अपने शरीर का खास ध्यान रखें, धूप से बचें, खुद को बचाएं और पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, यानी पानी पीने की आदत डालें और पानी के साथ साथ ठंडे पेय पदार्थों का भी उपयोग करें, जैसे कि नींबू पानी, घर के बने पेय पदार्थ आदि का अपने जिंदगी में इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि ये गर्मी बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। दूसरा पहलू देखें दोस्तों, तो पानी हमारी कृषि कार्य में भी मदद करता है, यानी कि फसलों को बढ़ने और पनपने के लिए पानी की जरूरत होती है। सिंचाई के माध्यम से किसानों को अपनी फसलों को पानी देना होता है, जिससे हमें भोजन की पूर्ति होती है। और तीसरे रूप में पानी उद्योगों के लिए भी बहुत ही जरूरी है। कई उद्योगों को अपने उत्पादों के निर्माण के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो बिजली पैदा करने में, स्टील बनाने में और कपड़ा उद्योग भी पानी पर निर्भर करता है। और दोस्तों, पानी पर्यावरण के लिए भी बहुत ही जरूरी है। और पानी का स्रोत जैसे कि नदियां, झीलें, महासागर, ये सभी हमारी पानी की पूर्ति को पूरा करते हैं और जलवायु को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। तो दोस्तों, पानी को भी हमें अपव्यय से बचाना है। जरूरत न होने पर पानी का नल या हैंडपंप बंद रखें, बेकार फिजूल में पानी न बहाएं, क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर हमें अपनी पीढ़ियों को मीठे पानी को मुहैया करवाना है, तो आज हमें इस पानी की बचत को जरूरी तौर पर अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

और दोस्तों आइए अब बात करते हैं ऊर्जा की बचत एवं युवा विषय पर। जी हाँ दोस्तों, ये आप और हम युवाओं की ही जिम्मेदारी है कि पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा हमारे हाथों में है, क्योंकि आज हमने अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा प्रदूषित कर दिया है और इसे सुधारने में भी सबसे बड़ा योगदान हमारा ही होना चाहिए। तो आज इस संदर्भ में ऊर्जा की बचत पर बात करते हुए हम आपसे यही सब बातें शेयर करना चाहते हैं और अपील करना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हमें ऊर्जा की जरूरत को पूरा करना है तो हमें उसकी बचत आज करनी होगी, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा और पैसों की बचत के लिए ये बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों इसके लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे कि लाइट, पंखे और एसी जरूरत के हिसाब से ही चलाएं और जरूरत न होने पर उनका स्विच बंद कर दें। साथ ही एलईडी बल्बों का भी प्रयोग करें और पुराने उपकरणों को ऊर्जा कुशल स्टार रेटेड उपकरण से बदल दें। दोस्तों कमरे से बाहर निकलते समय हमें ये आदत बना लेनी चाहिए कि फिजूल में पंखे, लाइटें, कंप्यूटर वगैरह चलते न रह जाएं। बाहर निकलने से पहले हमें उन्हें बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ बल्बों की तुलना में एलईडी बल्ब जो कि 25-35% कम ऊर्जा की खपत करते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। साथ ही स्टार रेटेड उपकरण जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एसी और वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों को खरीदते समय हमें 5-स्टार रेटेड ऊर्जा कुशल मॉडल ही चुनना चाहिए। दिन में दोस्तों खिड़कियां खोलनी चाहिए ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके और हमें लाइटों का उपयोग न करना पड़े। दोस्तों टीवी, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को स्टैंड बॉय पर न छोड़ें, उन्हें पूरी तरह से ऑफ कर दें। साथ ही साथ एयर कंडीशनर का तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखना चाहिए और एयर फिल्टर को हमें समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। साथ ही वाटर हीटर का तापमान जरूरत के हिसाब से ही रखना चाहिए। और दोस्तों सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों का हमें अपनी जीवन शैली में उपयोग बढ़ाना होगा ताकि हम आने वाले भविष्य के लिए ऊर्जा की बचत कर पाएं।

तो दोस्तों खुश रहें, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें अपने साथ, अपने अपनों के साथ। इसी उम्मीद और फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए इजाजत प्रोग्राम युवाणी को खत्म करने की। अपनी दोस्त शबाना खान को नमस्कार।

अभी युववाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं। इंतजार कीजिए हमारे अगले प्रसारण का।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: सभी विविध भारती सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने में। नमस्कार, गुड इवनिंग श्रोताओं, मैं हूं आज आपके साथ पूजा नरानिया। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आज जन्मदिन है उस फिल्मकार का जिन्होंने भारतीय सिनेमा को परिवार, रिश्तों और संगीत की खूबसूरत सौगात दी। राजकुमार बड़जात्या जी की फिल्मों की गर्माहट आज भी हर दिल को अपनेपन का एहसास कराती है और आज तराने नए पुराने कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं उनकी फिल्मों के वही सदाबहार गीत। हम साथ साथ हैं इस फिल्म से ये गीत। इस गीत को लिखा है आर किरण ने। अलका याग्निक, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और हरिहरन की आवाजें।

मारे हिवड़ा में नाचे मोर, ये गीत अभी आप सुन रहे थे हरिहरन, उदित नारायण, अनुराधा पोडवाल, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम हम साथ साथ हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म गौरी से। रवि के संगीत से सजा गीत आर कृष्णा ने इस गीत के

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत प्रेम रतन धन पायो फिल्म से पलक मुश्चाल और साथियों के स्वरों में। इरशाद कामिल ने इस गीत की रचना की है और धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म से। अभी आपने ये गीत सुना, लीजिए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अगला गीत, प्रेम कहानी फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: उलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली डलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजें, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन, और फिल्म का नाम है विवाह।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार।
1: ये हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।
2: तुम्हें याद कर दिल कर के
3: छाया गीत
2: लग जा गले।
3: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
4: मेरे सपने अब
3: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ जाएं।
4: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
3: याद रहे। ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
5: अभी आपने गीत सुना विवाह।

फिल्म से। इस गीत के बाद अब वक्त है समाचारों का। इस कार्यक्रम के शेष गीत आपको समाचारों के बाद सुनवाए जाएंगे। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरूआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में

0: दो दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। और इस वक्त कार्यक्रम है तराने नए पुराने।
2: तराने नए पुराने।
1: आप सभी का इस कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूं, मैं पूजा नारानिया। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वरों में ये गीत। आनंद बख्शी की वो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म का नाम मिलन।

मिलन फिल्म से लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वरों में अभी आपने गीत सुना। अब आपको सुनवा रहे हैं बप्पी लहरी की आवाज में, शब्बीर अहमद का लिखा, नितिन शंकर का संगीतबद्ध किया गीत, बॉम्बे टू गोवा फिल्म से।

बॉम्बे टू गोवा फिल्म से ये गीत बप्पी लहरी की आवाज में आपने अभी सुना और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत पिया का घर फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: पिया का घर इस फिल्म से अभी आप गीत सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे

0: मिलता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। और अब ये गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, मनोज मुंतशिर की रचना है, मीट ब्रदर्स अनजान का संगीत, कुणाल गांजावाला, श्रेया घोषाल और डोमिनिक सेरेजो की आवाजें हैं। फिल्म का नाम इसी लाइफ में।

इसी लाइफ में इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की आखिरी पेशकश दिल एक मंदिर फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर की है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: दिल एक मंदिर, इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, आज निर्माता निर्देशक राजकुमार बरजात्या जी का जन्मदिन का अवसर था, तो उन्हें याद हमने आज इस कार्यक्रम के दौरान किया और उन्हीं की चुनिंदा फिल्मों के गानों को आज कार्यक्रम तरानी नई पुरानी में शामिल किया। इसी गीत के साथ अब ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम इंडेक्स 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। यहीं

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को लेकर भारत का रुख एकदम कड़ा और स्पष्ट। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ईंधन बचाने के लिए निजी वाहनों का उपयोग कम करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की और प्रदेश में अगले 2 दिन में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में मामूली गिरावट की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रुख आतंकवाद के खिलाफ कड़ा और स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वे आज नागौर के मेड़ता में राव दूदा प्रतिमा अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद का साथ देने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। श्री सिंह ने कहा कि देश अब रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। उन्होंने राजस्थान की धरती को वीर भूमि बताते हुए कहा कि देश की रक्षा में यहां के सपूतों का बड़ा योगदान है।
1: राजस्थान के युवाओं को तो वैसे भी सेनाओं से बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी मैं कहीं जाता हूं सेवाओं के ऊपर, कोई न कोई राजस्थान का ऐसा बहादुर नौजवान अथवा अधिकारी कोई हमको मिल जाता है। यहां के घर घर से फौजी निकलते हैं। आज भी हमारी सेनाओं में शामिल होकर नागौर के युवा पूरी निष्ठा के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। सरकार भी योजनाओं के मामले में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव किया।
0: समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार महापुरुषों की याद में पैनोरमा बनवाकर नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवा, महिला, गरीब और किसानों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है।
2: कहते हैं कि हमारे 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रदेश के हजारों किसान और पशुपालक उसमें भाग लेंगे। कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, तकनीकी जानकार, कृषि पंजीकरण उद्योगपति सभी उसमें आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हर किसान का भला हो, हमारी माता बहनें भी आगे बढ़े। इसके लिए लगातार हमारी सरकार नवाचार करते हुए हम काम कर रहे हैं। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उनका आपको लाभ लेना है, क्योंकि बहुत सारी योजना हमारी केंद्र और राज्य सरकार की है, उनका लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम काम करते हैं।
0: इसके बाद रक्षा मंत्री ने जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण किया। रातानाड़ा सर्किल पर हुए इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने पूर्व उपराष्ट्रपति श्री शेखावत को भारतीय लोकतंत्र का चलता फिरता विश्वविद्यालय बताते हुए कहा कि उनका जीवन जनसेवा और सादगी का अद्वितीय उदाहरण है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ईंधन बचाने की कवायद करते हुए अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या घटाने का फैसला किया है। राज्यपाल ने आज इस पर अमल करते हुए जयपुर में एयरपोर्ट जाते समय पायलट कार, एम्बुलेंस और दमकल जैसे वाहनों का उपयोग नहीं किया। श्री बागड़े ने आम जनता से भी अपील की है कि वे निजी वाहनों का कम उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण की अपील के बाद राज्य में ईंधन बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कल अलवर जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी

0: वैष्णव वर्चुअली जुड़ेंगे। वे भिवाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ करेंगे। साथ ही सरे खुर्द पाइपलाइन और टपूकड़ा के सरकारी स्कूल में नए शैक्षणिक ब्लॉक का भी उद्घाटन किया जाएगा। उधर प्रशासन स्तर पर भी ईंधन बचाने को लेकर व्यापक जागरूकता देखी जा रही है। इसी कड़ी में पाली में जिला कलेक्टर रविन्द्र गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन आज पैदल चलकर कार्यालय पहुंचे। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज गुजरात के सासन गिर में लायन स्पीशीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह आयोजन अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत किया गया। श्री यादव ने बताया कि आगामी 1 और 2 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पहला IBCA सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें 95 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुए, चीता और जैगुआर जैसी 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज बीकानेर के सुजान देसर में 40 सरकारी विद्यालयों को स्मार्ट बोर्ड और फर्नीचर वितरित किए। हुडको की ओर से 25 करोड़ रुपए की लागत से उपलब्ध कराए गए इन संसाधनों से 15,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। श्री मेघवाल ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित नए कमरों और लाइब्रेरी का भी लोकार्पण किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। श्री चौधरी ने आज भीलवाड़ा के मांडल में विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए व्यापक स्तर पर काम किए जा रहे हैं। श्री चौधरी ने अधिकारियों को भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकरों से नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। ये मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका पूरा उद्देश्य पूरे देश में अपडेटेड और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। प्रदेश भर में जनगणना 2027 के तहत डिजिटल स्वगणना का काम तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में पाली जिले का तीखी गांव शत प्रतिशत स्वगणना पूरा करने वाला पहला गांव बन गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ बजरंग सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने मोबाइल के माध्यम से स्वयं अपना पंजीकरण कर इस प्रक्रिया को पूरा किया है। इस गांव की ये उपलब्धि अन्य गांवों के लिए मिसाल बन रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने पिछले 2 दशक में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने आज गाजियाबाद में NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में आपदा के समय लोग NDRF की मौजूदगी से सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना गर्व की बात है।
1: NDRF को राष्ट्रपति इंसान का सम्मान दिया गया वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: और अब मौसम। प्रदेश में अगले 2 दिन में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान आज और कल बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के साथ साथ शेखावाटी अंचल में तेज हवाएं चलने और कहीं

हल्की बरसात की संभावना है। 17 मई से एक बार फिर पश्चिमी राजस्थान में तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में भी अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इस बीच 24 घंटों में प्रदेश में मौसम के कई रंग देखने को मिले, जहां राज्य के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन और आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं अधिकांश स्थानों पर तेज गर्मी और लू का दौर चला। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक तापमान फलौदी में रहा, जहां पारा 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य के ज्यादातर स्थानों पर दिन का पारा 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर में आज करीब 50 बच्चे दूषित भोजन खाने से बीमार हो गए। निजी स्कूल के ये बच्चे पिकनिक मनाने वाटर पार्क गए थे, जहां खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुखपाल बराड़ ने बताया कि बच्चों का इलाज जारी है और स्थिति नियंत्रण में है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईई 1 जून से 12 जून तक आयोजित किया जाएगा। राज्य के 11 शहरों के 32 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा के प्रवेश पत्र कल से आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस दौरान अग्निवीर, सिपाही, फार्मा और धार्मिक शिक्षक सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थी भर्ती से जुड़ी सभी जानकारियां विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए नजदीकी सेना भर्ती कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। भरतपुर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से आज किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी दी गई। अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉ विजय सिंह वीर ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए किसान अपने खेत की मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और जैविक कार्बन जैसे तत्वों की सही स्थिति जान सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को लेकर भारत का रुख एकदम कड़ा और स्पष्ट है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ईंधन बचाने के लिए निजी वाहनों का उपयोग कम करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के तीसरे चरण की घोषणा की और प्रदेश में अगले 2 दिन में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में मामूली गिरावट की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बाड़मेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं जसवंत सिंह डूडी। बाड़मेर देश और दुनिया में थार नगरी के नाम से विख्यात है। सरहदी जिले बाड़मेर में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। जबरदस्त उछाल के साथ जिले में दिन का पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। इस सीजन में 48.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बाड़मेर देश में सबसे गर्म स्थान रहा। जिले में प्रचंड गर्मी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के कारण लोग बेहाल हैं। दिन के अलावा रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। पंखे और कूलर बेअसर साबित हो रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण भारी परेशानी हो रही है। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने सहित कई जतन कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जा रहे हैं। भीषण गर्मी के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों के समय में बदलाव किया गया है। स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी केंद्रों के विद्यार्थियों के लिए समय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिले के प्रभारी सचिव डॉ रोहित गुप्ता बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में पीने के पानी, बिजली, एलपीजी आपूर्ति, हीटवेव से बचाव और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए आमजन को राहत पहुंचे।

0: लगाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सरकारी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, दवा वितरण व्यवस्था और मरीजों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। प्रभारी सचिव ने ग्राम पंचायत रामसर का कुआं में विकास कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे कामों का जायजा लिया। श्री गुप्ता ने लाभार्थियों से संवाद करते हुए ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने पिछले दिनों बाड़मेर की नई जिला कलेक्टर के रूप में पदभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर बाड़मेर में जसदीर तालाब स्थित शिव शक्ति धाम में जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आयोजित मुख्य समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण किया गया। इस बीच विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से देशभक्ति, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई, चौहटन विधायक आदुराम मेघवाल और जिला कलेक्टर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बीते दिनों रेल मंत्रालय की ओर से बाड़मेर को विशेष रेल सेवा की सौगात दी गई। ये रेल सेवा बाड़मेर और हरिद्वार के बीच शुरू की गई है। इसके संचालन से हरिद्वार की धार्मिक यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को सुगम और सुविधाजनक यात्रा का फायदा मिलेगा। ये रेल सप्ताह में दो दिन बाड़मेर से प्रत्येक सोमवार और गुरुवार और हरिद्वार से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को संचालित होगी। रेल सेवा की सौगात मिलने पर स्थानीय सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल ने लोगों को बधाई दी। जिले में इन दिनों ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अलग अलग ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित एलईडी ग्राम रथों के साथ कला जत्थे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोकगीतों, नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आमजन को सरल तरीके से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जिले में पिछले दिनों हाली अमावस परंपरागत रूप से मनाई गई। इस पर्व को लेकर किसानों में खासा उत्साह देखने को मिला। हर साल वैशाख महीने की अमावस्या हाली अमावस के रूप में मनाई जाती है। ये किसानों का मुख्य पर्व है। इस अवसर पर किसानों द्वारा सांकेतिक रूप से खेतों की जुताई करते हुए सुकाल की कामना की गई। इस मौके पर हर घर में बाजरे का खींच और गुड़ की गलगुनी बनाई गई। इस बीच पारंपरिक खेल औंधल घेटों की धूम रही। इसके साथ ही बाड़मेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो आतंकवाद रा बारा माय भारत रो रुख एकदम साफ और करडो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ईंधन बचावन सारू जनताओं खुदरी गाड़ियां काम ले उनो कम कर और सार्वजनिक परिवहन न बढ़ावो देवन बाबत कहो। चुनाव आयोग वोटर लिस्टा रा पुनरीक्षण रा काम एसआईआर रा तीजा दौर रो ऐलान कीनो। और प्रदेश माय आवता दिना पारो थोड़ो उतरण रा आसार। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत रो रुख एकदम साफ है। वे आज नागौर जिला रा मेड़ता माए राव दूदारी मूरत रा अनावरण जलसा माए बोल रहा है। रक्षा मंत्री कहो कि भारत आतंकवाद रा सगान मुंह तोड़ जवाब देवन रो बूतो रखे है। वे कहो कि देश अब सरहद री हिफाजत तू जुड़िया साजो सामान रा मामला माए खुद रपाण उबो फेरियो है। रक्षा मंत्री राजस्थान री जमीन वीर भूमि बताता था का कहो कि देश री हिफाजत रा काम माए अठेरा सपूतों रो मोटो योगदान है।
2: राजस्थान के युवाओं को तो वैसे भी सेनाओं से बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ सेवाओं के ऊपर

0: न कोई राजस्थान का ऐसा बहादुर नौजवान अथवा अधिकारी कोई हमको मिल जाता है। यहां के घर घर से फौजी निकलते हैं। आज भी हमारी इस सेनाओं में शामिल होकर नागौर के युवा पूरी निष्ठा के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। सरकार भी योजनाओं के मामले में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव।
1: राजनाथ सिंह महिला वारा मान समाज री तरक्की सारू जरूरी बतायो और मेड़ता माय मीरा महोत्सव सारू केंद्र सरकार री ओर 5 करोड़ रूपया देवन रॉयलान की नो जलसा माय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि राज्य सरकार महापुरुषां री याद माय पेनोरमा बनार नवी पीढ़ी ने इतिहास हूँ जोड़ रही है। वे कहो कि सरकार नौजवाना महिलावां गरीबां और किसानों रा भला सारू लगातार काम कर रही है।
2: कहते हैं कि हमारे 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रदेश के हजारों किसान और पशुपालक उसमें भाग लेंगे। कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, तकनीकी जानकार, कृषि पंजीकरण उद्योगपति सभी उसमें आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हर किसान का भला हो, हमारी माता बहनें भी आगे बढ़े। इसके लिए लगातार हमारी सरकार नवाचार करते हुए हम काम कर रहे हैं। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उनका आपको लाभ लेना है, क्योंकि बहुत सारी योजना हमारी केंद्र और राज्य सरकार की है, उनका लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम काम करते हैं।
1: इपाचे रक्षा मंत्री जोधपुर माय पहली वाला उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत री मूर्त रो अनावरण कीनो रातानाड़ा सर्किल मथे राखी ज्या जलसा माय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही मौजूद रहा। ई मौके श्री सिंह भैरव सिंह शेखावत ने भारत रा लोकतंत्र रो चाल तो फिर तो विश्वविद्यालय बताता था का कहो कि वारी जिंदगी जन सेवा और सादगी री बेहतरीन मिसाल है। ई मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि भैरव सिंह शेखावत सियासत ने सेवा रो जरियो बनायो। लाडला दिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानून करीची अपील पाछे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ईंधन बचावन रा मकसद वारा आधिकारिक काफिला माय गाड़ियां री तादाद कम करन रा हुकम दीना है। राज्यपाल आज जयपुर हवाई अड्डा उड़ी जाती बगत आगे चालन वाली गाड़ी, एम्बुलेंस और दमकल काम नी लीनी। श्री बागड़े जनता हुई खुद री गाड़ियां कम काम लेवन सागे सार्वजनिक परिवहन ने बधावो देवन री अरज कीनी। काल अलवर जिला माय न्यारी न्यारी विकास योजनावां जनता ने सौंपण रे मौके राख्या जावण वाला कार्यक्रम माय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही वर्चुअल तरीका जुड़ेला। इस दौरान भिवाड़ी माय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट री शुरुआत करी जावेला। इस आगे सरे खुर्द पाइपलाइन और टपूकड़ा री सरकारी स्कूल माय नुआ शैक्षणिक ब्लॉक रोई उद्घाटन करियो जावेला। ईंधन बचावन रे बारा माय जाग जगावन सारू पाली माय जिला कलेक्टर रविन्द्र गोस्वामी और SP मोनिका सेन आज पैदल चाल और दफ्तर पुग्या। जिला कलेक्टर सप्ताह माय एक दिन पैदल या साइकिल दफ्तर जावन रो फैसलो कीनो है। नई दिल्ली माय 1 और 2 जून ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत माय पहलो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA सम्मेलन रखो जावेला। इनरी तैयारियां रा सिलसिला माय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज गुजरात रा शासन गीर माय लायन स्पीशीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम रो उद्घाटन कीनो। ई मौके यादव कहो कि IBCA रो मकसद बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा सरीखा बिल्ली प्रजाति रा मोटा जनावरा ने बचावन माथे विचार करनो है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर जिला रासुजान देसर री 40 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड और फर्नीचर दीना। हुडकोरी ओर करीब 1.25 करोड़ रूपया रा खर्च मुहैया कराई जा आ साधनाओं करीब 15,000 विद्यार्थियों ने फायदो फैला। श्री मेघवाल स्कूल माय पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नियम बनवाई जा नुआ कमरा और लाइब्रेरी रोई उद्घाटन कीनो। राज्य माय पड़ रही जोरदार गर्मी बीच जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी अहलकारा ने पानी री परेशानी वाला हल्का माय टैंकरा ने जरिए लगातार पानी री पूर्ति तय करावन रा हुक्म दीना है। वे आज भीलवाड़ा कने मंडल विधानसभा हल्का माय पीवन रा पानी जुड़ी करोड़ा रुपया

खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावां रा काम री नींव रखी अर पूरा भया काम जनता ने सौंपया। ई मौके वे कहो के प्रदेश में पानी की व्यवस्था ने चोखी बनावण सारू सगला जरूरी जतन कर्या जा रहा है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। निर्वाचन आयोग आज वोटर लिस्ट

0: निर्वाचन आयोग आज वोटर लिस्टा का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR राती जा दौर रो ऐलान कर दिनो। 16 राज्य और केंद्र राज वाला 3 प्रदेश माए वो अभियान चलायो जावेला। प्रदेश माए जनगणना 2027 रा तहत डिजिटल स्वगणना रो काम चल रियो है। पाली जिला माए देसुरी ब्लॉक रो तिखी गांव स्वगणना पूरी करण वालो पहलो गांव बन गयो है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह आ जानकारी दीनी। वो बतायो के गांव वाला शिक्षक उमेश कुमार मेवाड़ा का न्यू तकनीकी जानकारी हासिल कर मोबाइल जरिए खुद पंजीकरण कीना। गृह मंत्री अमित शाह कहु है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF 20 साल रा कम वगत माई जनता रो भरोसो जीत लिनो है। वह आज गाजियाबाद माए NDRF रा राष्ट्रपति ध्वज समारोह माए बोल रहा है। गृहमंत्री कहो कि देश माए कणी ठौड़ आपदारी सूरत माए NDRF री मौजूदगी लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वह कहो कि कणी सशस्त्र बल ने राष्ट्रपति ध्वज नवाजनो वांसारू मथो ऊंचो करण री बात हुए है।
1: NDRF को राष्ट्रपति इंसान का सम्मान दिया गया तो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा साहस शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: अरे मौसम प्रदेश में पारो थोड़ो उतरन रा आसार है। आज और कल बीकानेर जयपुर और भरतपुर संभाग और शेखावाटी हल्का माए जोरदार बायरो बाजन सागे कठे कठे हल्की बरसात री संभावना है। ई पाछे 17 मई रजरा आतुई हल्का माए पारो ओजू चढ़बारा आसार है। प्रदेश लंकाऊ उगनी हल्का माए तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस रे आरसार रेवन री संभावना है। ई बीचे लाडला 24 घंटा माए राज्य माए कठे कठे बादलों री गाज और आंधी सागर बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब लाडला 24 घंटा माए सब बत्तो तापमान फलौदी माए 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी चियो। फौज माए भर्ती सारू ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE 1-12 जून ताई फैला। प्रदेश का 11 शहर रा 32 केंद्र मात्र वेवन वाली ई परीक्षा रा एडमिट कार्ड कालू आधिकारिक वेबसाइट डाउनलोड कराया जा सकेला। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि अजमेर अलवर बीकानेर जयपुर और जोधपुर समेत प्रदेश रा न्यारा न्यारा केंद्र माथे अग्निवीर सिपाही फार्मा और धार्मिक शिक्षक सरीखा न्यारा न्यारा ओहदा सारू आ परीक्षा ली जावेला। भरतपुर रा केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र री ओर सिखावन शिविर लगार किसानों ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड रे बारे में जानकारी दी जी। अनुसंधान निदेशालय रा निदेशक डॉक्टर विजय वीर सिंह बतायो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड रे जरिए किसान खेत री मिट्टी माए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश और जैविक कार्बन सरीखे चीजा री ठाक कर सके है। शिविर माए किसानों ने सरसों री उन्नत किस्म मिट्टी री जांच जैविक खेती और बागवानी प्रबंधन रे बारे माए विगतवार जानकारी दी जी। बुनकराओं जुड़ियो जयपुर ग्रामीण दफ्तर हथकरघा बुनकरा ने जिला स्तर रो नकद इनाम देवन सारू अर्जियां मांगी है। लाडला 3 साल हथकरघा बुनाई रो काम करन वाला बुनकर इनाम सारू अर्जी दे सके है। अर्जियां काल ताई जिला उद्योग केंद्र में जमा कराई जा सके है। आखिर में खास समाचार एक फिर सुन ले रहो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो आतंकवाद रा बारा माए भारत रो एकदम साफ और करड़ो रुख। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ईंधन बचावन सारू जनताओं खुदरी गाड़ियां काम ले उनो कम कर और सार्वजनिक परिवहन ने बधावो देवन बाबत कहो। चुनाव आयोग वोटर लिस्टाना पुनरीक्षण रा काम SIR रा तीजा दौर रो ऐलान कीनो। और प्रदेश माए आवता दिना पारो थोड़ो उतरन रा आसार। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला।

एफएमएन 101.9 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस वक्त शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसान वाणी कार्यक्रम हमारा वारो सब भाइयों ने बहनों ने सौराठी की रीता बहनों राम राम राम राम भाइयों ने बहनों भीषण गर्मी पड़ी रही है ने अना गर्मी टाइम में भी अपने कामकाज करी रहा सोरा ऊपर भी आवी रहा तो आज अपने सोरा ने कार्यक्रम में बात करा कि आने इस गर्मी ऋतु में एक तो हमारो खान पान केव रो जुए इन्हें चर्चा करूंगा हाथे अपने बात करूंगा कि अपने कृषि हाथे हाथी घना व्यवसाय करा घना बीजा धंधा भी करा एम अपने मुर्गी पालन भी करा गर्मी में मुर्गी पालन करव खूब बड़ो चुनौती नो कार्य है तो एना ऊपर भी अपने चर्चा करूंगा हाथे हाथी अवड़े पर्यावरण संरक्षण की खूब आवश्यकता है वृक्षारोपण की भी आवश्यकता है इन्हें भी चर्चा करूंगा इन हाथी अवड़े अपने नवा बगीचा लगाड़ा टेम है अवड़े नवा फलदार वृक्ष अपने लगाड़ा तो एना बारा में अपने हाथिया सोरा उपर मौन भाई ही एना थी बातचीत करूंगा हाथिया संदेश हामरंगा बढ़िया सुख भजन हामरंगा तो आज आप कार्यक्रम की शुरुआत करो ग्रीष्म ऋतु में अपने खान पान बारा में अपने जाणो कि आटली तेज गर्मी पड़ी रही है आना गर्मी मौसम में निकलवो भी दुभर है कि आने में अपने शरीर नो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करवा खूब जरूरी है तो गर्मी ने मौसम में अपने खान पान पर एक विशेष ध्यान देव जो है गर्मी में अपने ताजा फल सब्जी खावी जो बासी चीजें नहीं खावी जो बीजू अपने सब्जी ने भी देखवा तो आना मौसम में अपने शरीर ने हाइड्रेट राखी एवं सब्जी है एवं फलों चयन करो जो है अपने शरीर ने हाइड्रेट राखवा वाली सब्जियों में खीरा है ककड़ी है टमाटर है इन उपयोग करव जो है इन हाथे हाथे अपने भींडी ना उपयोग कर सक आना समय आ लौकी ना उपयोग कर सको तुरई ना उपयोग कर सको तो आवी जी सब्जी इन उपयोग करो जेमें अपने पोषक पदार्थ भी भरपूर मात्रा में हो इने अलावा फाइबर भी मिले जिनकी की सुपाच्य भी रही ने हाथे हाथे अपने लू थी की बचाव करे भी सब्जी है जिनकी टमाटर है या फिर प्याज है इनो भी अपने भरपूर मात्रा में उपयोग करवो जो है प्याज खाओ तो आने समय में खूब जरूरी है कि लू थी की विशेष इनकी की बचाव था इन हाथी आना समय में अपने कच्ची केरी नु सेवन करव जो है कच्ची केरी ना अपने सेवन घनी तरह थी कर सको जेम के चटनी बनावी उपयोग कर सको अपने दाल या सब्जी में तो न खसो खटाई रूप में पर अगर चटनी बनावी अपने खाओ या फिर इन सब्जी भी बनाई सको जेने अपने आम भाषा में अपने रोंची कहो ये भी सब घरों में आजकल बने से ई बनावी खाई सको इन हाथी कच्ची केरी नो जो पणो है इन अपने सीसुड़ो इनो भी अपने उपयोग कर सको तो ये कई भी तरह थी कि आप कच्ची केरी उपयोग करो तो इन थी लूटी के बचाव था बीजू अपने आना मौसम में अच्छा फल सब्जी तो उपयोग करव जो हाथे हाथे फल भी वो चयन करव जो जेमें पानी की भरपूर मात्रा हो ने अपने शरीर ने हाइड्रेट राखी क्योंकि आना गर्मी ने मौसम में एक तो शरीर में पानी की कमी थी जा तो अपने शरीर में पानी की भरपाई करे भी सब्जियों फलन चयन करव जो है इन हाथी सुपाच्य जो रही अच्छी तरह थी कि शरीर में पाचन थी जा एवं पदार्थों अपने सेवन करव जो है तो आना मौसम में अपने ककड़ी है तरबूज है खरबूज है एवं फलों रसदार फलों अपने उपयोग करव जो है जिनकी कि अपने शरीर में पानी आपूर्ति बनी ले रहे हाथ ये भी ध्यान रखो कि जे भी सब्जी है या फलों अपने सेवन कर रहा हो इन्हें अच्छी तरह से उपयोग करव जो है क्योंकि गर्मी में सब्जी है खराब भी जल्दी था कीड़ा भी जल्दी तरह लागे तो अच्छी तरह थी कि साफ सफाई कर उपयोग करो इन अलावा ये भी ध्यान रखो है कि बासी सब्जी या फलन सेवन नहीं करो बासी अपने घना दड़ा ने जेम लावी उपयोग कर मिली राखूंगा कि खाट लगा अपने लई आवा मार्केट थी कि फ्रीज में भरी राखा तो भी इनमें खराब भी थाय

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी किसानवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। रात 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और रात 9 बजे का समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रमों का। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: वाला सगला श्रोताओं ने आशा धाबाई का घना घना राम राम और अनीता जी आपने भी हमारा घना घना राम राम सा।
1: आशा जी आपने भी घना घना राम राम और खेती बाड़ी सुनबा वाला सभी किसान भाई ने अनीता की घनी घनी राम राम सा।
0: और देखो सा आज बुधवार और गुरुवार के दिन खेती बाड़ी कार्यक्रम में हुए छे फोन इन कार्यक्रम जी का मायने अपना जी का भाई लोग काश्तकार भाया वे खेती बाड़ी से जुड़े वहां की जो भी समस्या छे उनको समाधान स्टूडियो में अपना जो विशेषज्ञ पधारे छे वहां से स्वयं बात कर आपकी समस्याओं को समाधान भी पा सके छे। आपको कोई सवाल छे खेती बाड़ी से जुड़े हो तो उनमें भी पूछ सके छे। और स्टूडियो की जो चार लाइना छे वे आप वहां के लिए खोल रखे छा 2200600 2200700 2200800 और 2366477। तो ये चार फोन लाइन आ चाहे जी पर आप फोन कर सको छो और बात कर सको छो। फोन जब भी आप करो तो जयपुर जो एसटीडी कोड छे 0141 उन्हें जरूर सुनवा लो। थोड़ी तो आप यो भी ध्यान रखो कि जब भी आप फोन लगाओ काश्तकार भाया तो एक तो रेडियो सेट से थोड़ी सी दूरी बनाकर बात करो
1: जी।
0: और स्पीकर पर फोन न रखकर बात ना करो क्योंकि स्पीकर पर जब आप बात करो जो तो ठीक प्रकार से सुनाई कौन देवे और विशेषज्ञ ने न समझ में आवे ना आपने संतुष्ट आप जवाब से हो पाओ।
1: और देखो सब बालक टाबरा से भी फोन न करवावे क्योंकि सही तरीका से समस्या समझ में भी कौन आवे और उनको समाधान भी कौन हो पावे। और दूसरी बात यह कि खेती बाड़ी से जुड़ेगा ही सवाल आप विशेषज्ञ से पूछो तो बेहतर रहे लो। और विशेषज्ञ आपका स्टूडियो में बैठा चाहे आपकी जो भी खेती बाड़ी से संबंधित समस्या चाहे आप उनको सीधो समाधान यहाँ से पा सको छो।
0: और एक बात को और भी ध्यान रखो कि कार्यक्रम ना पूरा ना ध्यान से सुनो ताकि प्रश्न को दोहराव ना हो जी। ताकि बत्तू से बत्तू अपना जी का कार्यकाल हुआ है वहाँ का फोन भी ले सका वहाँ की जो भी समस्या चाहे वहाँ को समाधान हो सके। स्टूडियो में आपकी समस्या को समाधान करवा के लिए विषय विशेषज्ञ पधार चुके हैं श्री मनोज कुमार शर्मा। आप कृषि सलाहकार छे दुर्गापुरा जयपुर में पदस्थापित छे। तो सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत छे। राम राम साहब।
2: राम राम साहब।
0: अब देखो सर जब तक अपना काश्तकार भाई जुड़े छे फोन करे छे आपसे यही पूछबो छोला कि खरीफ की जो फसल छे वाने जमीन में लगाबक जो कीट लाग जावे छे वह कौन कौन सा छे और किया उनको बचाव माका जी का काश्तकार भाई छे वे कर सके छे बताओ सर।
2: राम राम साहब जी। अभी मई जून के महीने में अपन जो खेत में लगते हैं दीमक और सफेद लटका प्रकोप सबसे ज्यादा होता है तो किसान भाई से मेरा निवेदन है कि उससे बचाव कैसे किया जाए ताकि आगामी जो खरीफ की फसल की बुआई की जाएगी उससे इन कीटों का उपाय नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप खेत की गहरी जुताई करें और मानसून प्री मानसून की जो बारिश होगी उससे पहले आप जो आसपास आपके जो जो खेजड़ी है नीम है इन पे आप विशेष कर ध्यान रखें क्योंकि जो मानसून की पहली बारिश होती है उसके साथ जो सफेद लट होती है उसके जो छोटे छोटे अंडे से जो जनरेट होती है इंसेक्ट मतलब जो कीड़े वो क्या है रात को भोजन करने के लिए पेड़ पर चढ़कर जो फूल पत्तियां वगैरह है उनको खाते हैं। तो उससे बचाव के लिए आप मई जून के माह में नीम ऑयल का छिड़काव करवा सकते हैं ताकि उससे क्या होगा कि दीमक और सफेद लट का नियंत्रण किया जा सकता है। और
0: जी हेलो
3: नमस्कार जी।
0: नमस्कार खेती बाड़ी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत छे।
3: हाँ आशा जी अनीता जी दोनों को और श्रोताओं को भी नमस्कार।
0: नमस्कार कौन साहब बोल रहे छो किसी जगह से बात कर रहे छो बताओ सर।
3: मास्टर धर्मेश बोल रहा हूँ बोतवा शहीद
0: जी
3: जिला रेवाड़ी हरियाणा से।
0: जी पूछो सा काई पूछना चाह रहे छो आज।
3: हमने बीटी कपास बोई 11 अप्रैल को बोई थी आज वो बहने से ऊपर की हो गई
0: जी।
3: उसमें दो है जी
0: काई समस्या आ रही थी आपने।
3: हाँ मैं समस्या बता रहा हूँ दो समस्या है
0: जी।
3: एक तो मैं सुबह खेत में गया तो मैंने देखा कि उसकी पत्तियां कटी हुई मिली मुझे और दूसरा पत्ते मुरेडिया जैसे रोग होता है वो गोल गोल से थे कुछ कुछ पे पौधों में था सारों में नहीं। हाँ तो दो रोग है ये एक वो काटने का एक वो मुरेडिया वाला
0: जी।
3: तो उसके बारे में है मैं समाधान चाहता हूँ आपसे।
0: बिल्कुल सर विशेषज्ञ आपने बता रहे थे।

0: प्रत्येक शुक्रवार सुबह 9:15 पर सुनिए टर्कम हेल्थ इश्यूज। प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
1: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुन

0: जी साहब, राम राम साहब।
1: राम राम जी,
0: जी जो आप पत्ते कटे हुए मिलते हैं तो कोई दीमक वगैरह या कुछ सफेद लटका प्रकोप वगैरह देखा क्या आपने?
1: नहीं, दीमक तो नहीं काटते, ऊपर से कटे हैं पत्ते।
0: ऊपर से कितनी ऊंचाई के हो गए पौधे?
1: पौधे तो मेरे एक एक फुट के हो गए हैं, एक महीने से ऊपर हो गए पौधे हुए।
0: एक महीने से ऊपर हो गए। तो आपने इसमें कोई स्प्रे वगैरह करवाया था क्या अभी?
1: कुछ भी नहीं करवाया जी।
0: कुछ भी नहीं करवाया। और पत्ते मुड़ भी रहे क्या?
1: हाँ जी हाँ जी, मुड़िया रोग है कुछ कुछ पौधों में,
0: मुड़िया रोग है। तो आप एक काम करो, जो अपने क्यूनाल पोस्ट पाउडर आएगा
1: जी,
0: क्यूनाल पोस्ट पाउडर आएगा 25% WP में आएगा, जस्ट में आता है, तो इसका आप बुरकाव करवा सकते हैं। जो चूल्हे की राख आती है ना, चूल्हे की राख में मिलाकर एक हेक्टर में 25 किलो की समथिंग मात्रा आएगी, उसको चूल्हे की राख में मिक्स करके और आप बुरकाव करवा देना शाम को टाइम। और एक मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप एक काम करो, एक बार उसकी हल्की खुदाई करवाओ पौधे के चारों तरफ, या तो उसमें कोई दीमक होगी, सफेद लट होगी, या कोई मिट्टी जैसा कीड़ा होता है एक, जो वो रात को क्या होता है कि पत्तों को खा जाता है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काट रखा हो।
1: हाँ बिल्कुल।
0: हाँ, तो एक बार आप अच्छे से उसको देख के और आपके आसपास जो कृषि जैसे सुपरवाइजर वगैरह उनको आप संज्ञान में लो और वो उसका उपचार करवाएंगे। बाकी मैंने जो सोल्यूशन बताया इससे भी आपका कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा।
1: हाँ तो उसको तो मैं हलवा दूंगा, हल है मेरे पास, तो उसमें कोई बात नहीं है।
0: हाँ तो आप मैंने जो दवाई बताई ना आपको
2: जी,
0: ये दवाई बताओ।
2: खूब खूब धन्यवाद सर, फोन कर बताई। राम राम साहब।
1: राम राम साहब भाई सर।
2: जी साहब, कौन बोल रहे छो?
1: ये जिले गुड़ामालन से दुर्गा राम बोल रहा हूँ
2: जी। दुर्गा राम जी, घनो घनो राम राम, काई समस्या है आपके?
1: हमारे बात करके पूछ रहे ये
2: जी,
1: वो खेत डूबी हुई है, दीवार भी साथ में से जल जल के आ रही है।
2: अच्छा,
0: राम राम साहब, कितने दिन की फसल?
1: राम राम,
0: कितने दिन की फसल हो गई?
1: मैंने भाई कोई थी, मतलब जैसे अप्रैल में, मार्च में हुई थी,
0: मार्च में लगाई थी, तो
1: वो क्या है उस अभी है जो पकली है सब वह
0: जी। तो आप मेरी बात आराम से सुनो, उसके नीचे से जड़े काली पड़ रही है क्या? आपने जड़ चेक की उसकी?
1: हाँ की है।
0: जड़ काली नहीं है उसकी, जड़े सूख रही है क्या?
1: हाँ जी सूख रही है।
0: ऊपर से नीचे की तरफ पौधा सूख रहा है क्या?
1: हाँ, पीली पड़ के
0: जा रहा है। तो कोई दीमक वगैरह देखी आपने?
1: दीमक नहीं है खराब, नहीं कभी नहीं है, जीरा भी।
0: कोई बात नहीं, तो पौधा ऊपर से नीचे की तरफ सूख रहा है क्या?
1: पहले पत्तियां जलती है।
0: हाँ,
1: उसके बाद तो दो लक्षण।
0: अच्छा, कितने दिन की फसल हो गई?
1: फसल हुई थी
0: मार्च से
1: एंड में
0: जी,
1: तीसरे सप्ताह में
0: जी। और आप सिंचाई वगैरह कितने दिन में करवा रहे हो?
1: सिंचाई पहले तो मैंने की थी 20 दिन के बाद, उस किस्म के बाद हर एक दिन छोड़ के एक दिन कर दे।
0: अभी कब से आ रही है समस्या?
1: ये समस्या 10 दिन से आ रही है।
0: तो देखो सर, ये एक तो तापमान का हो सकता है प्रभाव, क्योंकि अभी तापमान पिछले 8-10 दिनों में थोड़ा बहुत अधिक था, तो उस कारण भी एक समस्या हो सकती है।
1: और 40 डिग्री जा रहा है तापमान,
0: तापमान का भी मैं बता रहा हूँ। तो आप एक तो सिंचाई जो नियमित अंतराल है उस पर सिंचाई करो, ठीक है? और एक काम करना, आप एक पत्ते पूरे पीले पड़ रहे हैं ना, जो नए पुराने सब पीले पड़ रहे हैं ना,
1: हाँ
0: तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व आएंगे, उनका आप 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करवाओ, ठीक है?
2: दुर्गा राम जी, खूब खूब धन्यवाद फोन कर बताई। राम राम सा।
3: हेलो, नमस्ते मैम।
2: नमस्कार, खेतीबाड़ी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है। कौन बोल रहे हो, नाम बताओ आप?
3: हाँ, मैं दूनू जिले से बोल रही हूँ, शालू वर्मा
2: जी। शालू जी बताओ सा, काई पूछना चाह रहे हो आज?
3: हमारी खेती में है ना, वो ऐसे जैसे बड़े बड़े कीड़े लगे हुए हैं, उस कीड़े से पौधे भी जल रहे हैं।
2: काई का पौधा जल रहा है जी?
3: ये सभी जो खेत में लगा रखे है ना, वो सभी जल रहे हैं। एक एक करके
2: काई लगा रखे तो दे बार
3: तीनू आम अमरूद और भी।
2: अच्छा, जो बगीचा लगा रखा है वहाँ की पत्तियाँ जल रही है?
3: नहीं, पत्तियाँ नहीं, पूरा पौधा ही जल रहा है।
2: अच्छा।

0: और उसमें खोदने पर बहुत सारे वो लंबे लंबे कीड़े निकल रहे हैं।
1: अच्छा,
0: केस ये टाइप के।
1: अच्छा जी,
2: राम राम साहब, इसमें जो आप बता रहे हो सफेद लट है क्या, जिसका काला मुंह होता है आगे से और पीछे से सफेद होती है?
0: नहीं, सफेद नहीं है, केचुए होते हैं ना।
2: तो केचुए तो मैडम इसमें फायदा करती है, जो जमीन होती है ना उसको उर्वरक बनाती है, उपजाऊ बनाती है, वो नुकसान नहीं करते है केचुए?
0: वैसे ही है, पता नहीं, वो पौधे में लगे थे, खोद के देखे तो वो पौधा ही जला हुआ था।
2: नहीं, वो पौधा और कारण से जल रहा होगा, जो केचुए होते हैं वो तो जो जमीन होती है ना अपने उसको उपजाऊ बनाते हैं वो
1: ये,
2: तो
1: ये क्या बोल रहे थे मनोज जी की वो टाइप का छे, लेकिन यहाँ को पेड़ हाँ। जल रहे थे तो काई कारण हो?
2: तो आप एक काम करो, अगर आपको जड़ कटी हुई मिलेगी उसकी?
0: हाँ, उसकी ऐसी हुई, जड़ थी नहीं, वो सभी गली हुई थी।
2: जड़ गली हुई थी, कटी हुई थी,
0: कटी हुई भी थी, गली
2: भी कटी हुई। तो एक काम करो आप, मैं एक दवा बताता हूँ आपको, क्यूनाल पोस्ट नाम से दवा आएगी 25% इसी में।
0: अच्छा,
2: उसका आपको 2 ml मात्रा पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाना है,
0: ठीक
2: है? उसके बाद जो आपने पौधे के चारों तरफ थाला बना रखा होगा ना,
0: हाँ,
2: तो उसमें थाले में पानी भरना, पानी में फिर उसको, कितने साल के पौधे हैं?
0: 5-10 साल के होंगे।
2: हाँ, तो आप एक काम करना, 10 साल के है ना, तो
0: हाँ,
2: लगभग आप 3-4 ml मात्रा ले लेना और उसको आप जग के सहायते से उसमें डाल देना, ताकि उसमें अगर दीमक वगैरह होगी या जो आप जो भी कीड़े बता रहे हो वो खत्म हो जाएंगे।
0: अच्छा, वो दोबारा कितने दिन में डालें?
2: दोबारा नहीं डालना है, एक बार में हो जाएगा। जी,
0: और
1: शालू जी फोन करवाता है, घनो घनो धन्यवाद। शायद आपको फोन कट को और भी शायद कुछ पूछ पूछा रहा था, कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास में जरूर आपको पूरा जवाब दिया जावा।
3: राम राम सा।
4: राम राम जी।
3: जी सा, खेती बाड़ी में स्वागत है, कौन बोल रहे छो?
4: मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ जी।
3: जी राजेंद्र जी, कोड़ो से बोल रहे छो आप?
4: मैं जुम्मन जिले से बोल रहा हूँ, रायपुर से।
3: अच्छा सा, काई समस्या चाह?
4: समस्या ये है जी, मेरे 3 साल के पेड़ हो गए जी नींबू के।
3: अच्छा,
4: तो उसमें फाल नहीं आ रहा,
1: बताओ सा।
2: जी, 3 साल के पौधे हुए नींबू के, फाल वगैरह नहीं आ, तो उसमें जो नीचे जो जड़ों में जाला वगैरह बनता है उसको आप सफाई वगैरह करवाते हो नहीं करवाते हो?
4: नहीं, जाला जी मैंने निकाल लिया एक बार, तो सबका निकाल लिया।
2: निकाल लिया, और ये आप कटिंग वाला लाए थे या देसी पौधा कौन सा है?
4: पौधे का तो जी पता नहीं कौन से, लेकिन वो हो गए 10-10, 12-12 फुट के हो गए जी।
2: फूल वगैरह आते हैं क्या उसमें?
4: एक बार फूल आए थे कुछ, फिर कईयों को तो आए ही नहीं जी।
2: फूल आके जड़ जाते हैं क्या?
4: हाँ, जड़ जाते हैं।
2: फूल आके जड़ जाते हैं तो एक काम करना, जब भी फ्लावरिंग स्टेज हो उस समय आप फूल वगैरह आए, तो उस समय आप पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं देना है आपको पौधों को।
4: पानी नहीं देना?
2: हाँ, बिल्कुल भी पानी नहीं देना है।
4: अच्छा जी।
2: जी, दूसरी बात यह है, उसकी तरफ जब भी आप मई जून का महीना होता है ना, अब जो मई जून आ रही है, तो उससे पहले आप बारिश प्री मानसून से पहले आप उसकी चारों तरफ खुदाई करवाए, खुदाई करवा के उसमें गोबर की खाद वगैरह और जो सूक्ष्म पोषक तत्व वगैरह वो डलवाए। जी, और अगर फिर भी फ्लावरिंग स्टेज पे अगर फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो आप एक प्लानोफिक्स नाम से दवा आती है,
4: प्लानोफिक्स
2: NAA आता है, उसमें नेप्थिलिक एसिटिक एसिड आता है।
4: अच्छा,
2: तो उसका आप 1 ml मात्रा 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करवा सकते हैं, तो उससे आप नियंत्रण हो जाएगा।
4: ठीक है, धन्यवाद।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी, फोन कर बताए आपको, खूब खूब धन्यवाद। काश्तकार भैया श्री मनोज कुमार, कृषि सलाहकार दुर्गापुरा, आज आपने साथ स्टूडियो में और 4 फोन लाइन में आपके लिए खोल रखा था, 2200-600-2200-700-2300-6674-77, ये 4 लाइन है जहाँ आप फोन कर सको छो और आपकी समस्याओं को समाधान ले सको छो। हेलो,
5: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, थोड़ो सो आप रेडियो सेट से दूर और बात करो सा, नाम बताओ आपको, जगह को नाम बताओ।
5: जी, जिला सागर तहसील मंडा, मध्य प्रदेश बोल रहे हैं, चरण सिंह।
1: कहीं पूछना चाह रहे जो?
5: वो बेल का पेड़ा है तो वो 5-6 साल हो गई तो वो फल नहीं ना आ रहा।
1: बेल का पौधा में 5-6 साल से फल को ना रहा? हेलो जी।
2: हेलो,
1: बेल का पौधा में फल कुन हो रहा है 5-6 साल से, वहां को फोन कट गो, आप जवाब बताओ सर ताकि।

0: नारियल का जो पौधा है अगर 5-6 साल हो गए फल नहीं लग रहा है उसमें, तो उसमें आप एक काम करो, उसके चारों तरफ खुदाई करवा के उसमें गोबर की खाद वगैरह डलवाओ।
1: जी देखो सर, आपने किसान भाई जब भी खेती बाड़ी कर रहे थे तो खरपतवार भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ रहे, तो खरपतवार का नियंत्रण के लिए खेत में कहीं तैयार करा है जिससे कि जो खरपतवार की समस्या है वह आवे ही नहीं।
0: जी अभी जो अपन खरीफ की फसल लगाएंगे आने वाले मई जून जुलाई में, तो उससे पहले जो दलहनी फसलें हैं, जो बाजरा है, इनमें अपन खरपतवार की समस्या को बहुत देखते हैं, तो इसका आप अच्छे से उपाय कैसे नियंत्रण कैसे करें, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप मई जून के महीने में खेत की गहरी जुताई करें, ताकि जो खेत का सोलराइजेशन है, जो मतलब सूर्य की जो किरणें खेत जमीन पे पड़ेगी, तो उससे क्या होगा कि उसमें जो खरपतवार वगैरह है उनकी रूट जड़ वगैरह सूख जाएगी। तीसरी बात यह है कि आप अभी जो खरपतवार नियंत्रण के लिए दवा का प्रयोग नहीं करना है, आपको केवल जैविक उपचार करना है।
1: राम राम सर।
2: राम राम जी। राम राम जी, मैं कोटपुतली बैर रोड से बोल रहे हूँ साहब। रामेश्वर
1: जी। रामेश्वर जी, कहीं समस्या है खेत में?
2: अरे खेत में यह समस्या थे, एक लेसवा का पेड़ है अचार का, उसमें कीड़े बेथर गुट्टे में कीड़े गए।
1: अच्छा जी,
2: क्या करना चाहिए?
0: राम राम साहब।
2: राम राम जी। राम राम जी।
0: जो फल लग रहा है उसमें है कि कीड़े?
2: हाँ जी, फल में है कीड़े, बागू बेर के मान मान लेसवा आ रहे हैं, उसमें अंदर गुट्टी में कीड़े हैं,
0: अंदर सफेद कलर का कीड़ा निकल रहा होगा उसमें।
2: हाँ जी
0: जी। तो देखो साहब, अभी तो अब उसका नियंत्रण नहीं हो पाएगा। आप जब भी फल से फूल से फल बनता है ना, जो कोपल अच्छा। बनती है, तो उस समय क्या होता है कि इसमें जो कीड़ा होता है वो अंडे दे देता है, तो वो क्या होता है फल के अंदर अपनी जो जीवन चक्र है उसको स्टार्ट करता है, तो अपने को जब तक पता नहीं लगता जब तक ये फल तैयार नहीं हो जाता। फिर उसमें जैसे मान लो फल अगर काना होता है तब पता लगता है, अपन फोड़ते हैं ना तो उसमें से कीड़ा निकलता है।
2: जी हाँ।
0: तो आप एक काम करो, आप जब भी फूल से फल बने उस समय आप नीम ऑयल का स्प्रे करवा सकते हो, या जो कीटनाशक दवाई है उसका प्रयोग कर सकते हो।
2: वो दवाई का नाम बताओ सर।
0: एक तो नीम ऑयल आता है 1000 ppm में आता है, उसका आप 3 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से फूल आते समय डाल सकते हो, तो उससे क्या होगा कि जो कीड़ा है वो जो पत्ती है फूल है उस पर नहीं बैठेगा और अपना जीवन चक्र स्टार्ट नहीं करेगा।
2: एक साहब धन्यवाद
0: जी।
1: जी आपको भी घणो घणो धन्यवाद फोन कर बताए। मनोज जी, मई जून का महीना में टमाटर मिर्च का पौधा ने क्या तैयार करवा अपना जो किसान भाई टमाटर मिर्च की खेती लिए बचाव है, तो वह क्या का पौधा तैयार कर सके?
0: जून जुलाई में जो अपन टमाटर मिर्ची की जो खेत बुआई करते हैं, तो उसके लिए आप 20 मई से लेकर और 15 जून तक आप पौधे की नर्सरी तैयार करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे सावधानी बरतनी है कि एक तो अभी गर्मी का मौसम है तो नर्सरी आपको छायादार स्थान पर लगानी है, और दूसरी बात यह है कि जमीन से उठी भी लगानी है, ताकि अगर बारिश हो जाए तो उसमें बारिश का पानी रुक नहीं सके, बारिश का पानी ठहर नहीं सके। तीसरी बात यह है कि आपको अभी कीट मच्छर से बचाव के लिए 40 मेज की एक जाली आती है, तो उससे ढक के रखना है, तो ताकि जो अपने जो नर्सरी स्टेज पे है जो कीड़ वगैरह कीट वगैरह लगते हैं, तो उससे काफी हद तक आप बचाव कर सकते हैं, ताकि जो आप पौधों को ट्रांसप्लांट करोगे, रोपण करोगे, तो उससे जो रोग है तो बाद में नहीं पहुंचेगा और आप काफी हद तक इसका फायदा ले सकते हो।
1: जी तो मनोज जी, अब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि खरपतवार नियंत्रण का आप उपाय भी बता रहे थे, तो आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि खरपतवार नियंत्रण के लिए गर्मी की जो गहरी जुताई है उनको कितना महत्व है?
0: उसका बहुत महत्व है, क्योंकि अगर गहरी जुताई करोगे तो उससे 3 समस्या का समाधान हो जाएगा। एक तो खरपतवार का हो जाएगा, एक आपके जमीन संबंधी जो बीमारियां हैं, जो जड़ से संबंधी आती है, जो फफूंदनाशक जो बीमारियां हैं उसका उपचार हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि खरपतवार का आपको अगर आपने प्रसन्न क्रिया ढंग से कर ली, जो गहरी जुताई कर ली, तो खरपतवार जो अपने जो लगते हैं खरपतवार उनका नियंत्रण हो जाएगा, तो आपको हो सकता है कि दवाई डालने का दवाई डालने दवाई डाल

0: पड़े, मतलब दवाई का उपयोग ना करने पड़े, ताकि उससे अपने जो आर्थिक लाभ है वो आर्थिक जो नुकसान है उससे भी बचा हो सकता है।
1: जी हेलो।
2: हेलो
1: नमस्कार, खेतीबाड़ी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है। राम राम सा
2: बहन जी, आपको नमस्कार और दूसरी बहन जी को भी और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: जी प्रकाश जी बताओ सा, काई पूछना चाह रहे हो आज?
2: बहन जी बहुत दिनों बाद आवाज सुनने को मिली है
1: जी। कोई कब देखो कर, जद ये तो डिपार्टमेंट से जद जिन्हें अवसर मिल जाओ वही अवसर को।
2: आप जो प्रोग्राम में आती है या मधु हो क्या नाम है भावना बहन आती है तो प्रोग्राम में अलग ही चार चांद लग जाते हैं।
1: कोई बात को ना सबको
2: डॉक्टर साहब से
1: जी
2: डॉक्टर है ना, वैसे मैं तो किसान नहीं हूँ, मैं तो जयपुर से बोल रहा हूँ, बाकी हमारे गांव से रिलेशन है तो गांव से फोन आ रहा था तो चारे के लिए वो डालना चाहते हैं अपने ज्वार और बाजरा, तो इसमें थोड़ी सी किस्म बता दें कौन सी अच्छी रहेगी और इस टाइम सही रहेगा ना?
0: बाजरा ज्वार लगा सकते हो, वैसे तो आप लेट हो चुके हो, इसका जो उपयुक्त समय होता है 15 फरवरी से 15 मार्च होता है।
2: नहीं वो तो डाल रखी है सर अभी, और दूसरे अब वो खत्म हो जाएगी उसके बाद ये चल जाएगी ना?
0: तो चल तो जाएगी साहब, लेकिन अभी थोड़ा तापमान ज्यादा है तो दिक्कत आ सकती है, तो आप एक काम करो इसको आप अगर मतलब उसी खेत में लगाना चाहते हो कि अलग खेत में लगाना चाहते हो?
2: नहीं दूसरे में, और सर अभी वहाँ कोटपुली बैरोड में ना परसों बारिश हुई है।
0: जी जी, तो आप एक काम करो बाजरे की जो मैं वेराइटी बता देता हूँ आपको।
2: जी
0: जी, एक तो राजको के नाम से आती है,
2: राजको
0: L72 आती है,
2: L72
0: और एक ज्वाइंट बाजरा के नाम से आती है, इनमें से आप कोई सी भी लगा सकते हो।
2: जी
0: जी,
2: और ज्वार?
0: ज्वार में CSC1 आती है, MP Cherry 1 आती है, MP Cherry 2 आती है, इनमें से कोई सी लगा सकते हो आप।
2: सुडान फ्रूट आती है, कैसी आती है
0: ये? अभी नहीं लगेगी, इसके क्या है सेट्स लगते हैं सर, जो कटिंग होती है ना
2: जी, जी
0: वो लगते हैं, तो ये तो अभी आप बारिश में लगाओ तो बेस्ट रहेगा।
2: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी,
2: थैंक यू सर।
0: ओके सर
1: धन्यवाद सर, फोन पर बताइए, आपको भी खूब खूब धन्यवाद। मनोज जी, मई जून का महीना में अगर आपने किसान भाई हरी खाद लगावो चाहे तो कसी फसल लगा सके छे उनके लिए?
0: हरी खाद के लिए अगर आप लगाना चाहते हो तो एक तो गुआर लगा सकते हो, एक जो गुआर लगा सकते हो, लोबिया लगा सकते हो, ये दो फसलें हैं जो अभी 45 दिन में तैयार हो जाएगी और जो आने वाली खरीफ की फसल है उसके लिए हरी खाद का काम करेगी, क्योंकि आप जैसे 45 दिन होते हैं फ्लावरिंग स्टेज पे आप उसको जुताई के साथ उसको खेत में दबा सकते हो तो वो खाद के रूप में काम करेगी।
1: अच्छा। जी, और देखो सर जो कपास की फसल हो जाए वह भी एक नकदी फसल का रूप में काश्तकार भाइयों के लिए छे, तो आबाड़ो जो टाइम छे उनको मायने जो अपनी कपास की फसल छे उनसे बेहतर उत्पादन लेबा के लिए काश्तकार भाइयों ने कुन कुन सी छोटी छोटी बातें छे चाको अगर ध्यान रखला तो मोटो मोटो फायदा ले सकला?
0: जी, एक तो अभी क्या है जो लू वगैरह चल रही है, गर्म हवा चल रही है, तो उससे आप फसल को बचा कर रखे, हल्की नमी बनाए रखे फसल में, नियमित अंतराल पर सिंचाई करे, और लू से क्या होता है कि जो गर्म लू चलती है ना तो उससे क्या पत्ते जल जाते हैं गर्म, क्योंकि उससे क्या जो उसके साथ जो कंकड़ पत्थर उड़ के आते हैं तो उससे पत्ते बर्न हो जाते हैं जल जाते हैं, तो उसके लिए आप नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। और इस समय क्या होता है कि एक जमीन के बराबर से सफेद लट और दीमक की समस्या आती है, तो उससे किसान भाई से मेरा निवेदन है कि क्यूनाल पोस पाउडर आता है या मेलाथियन पाउडर आता है उसका आप शाम को टाइम बुरकाव करवाएं 25 किलो मात्रा प्रति हेक्टर की दर से, ताकि उससे क्या होगा दीमक वगैरह का सफेद लट का नियंत्रण नहीं होगा। अगर इस सफेद लट से आप नियंत्रण पा लेते हो किसान भाई तो 50% से ज्यादा फसल आप बचा सकते हो। और फिर उसके बाद आती है आपके टिंक बोल वर्म जो उससे समस्या आती है, तो अपने अगस्त सितंबर में आती है उसकी समस्या, तो उसके लिए आप जो भी जैसे क्लोरेंटीपिरोल है उसका आप स्प्रे करवा सकते हो, इमामेक्टिन बेंजोइट है उससे आप स्प्रे करवा सकते हो, तो जैसे समय समय पर आप आपसे बात होती रहती है तो आप जैसे अवसर मिलेगा तो आपको जानकारी दे देंगे सर।
1: जी सर, तो सर जी अपना किसान भाई खरीफ की फसल लेबो चाहो अब तो उनकी खेत की फसल के लिए मतलब जी खेत की तैयारी के लिए जो अपना किसान भाई अबार काई काई प्रयास कर सके जिससे कि वहाँ जो खरीफ की फसल ले वह चौकी हो?
0: जी, खरीफ की फसल के लिए तो सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करवा के खेत को खुला छोड़ना है जुताई के 15 से 20 दिन पहले, और आप 15 से 20 दिन पहले

0: एनटीपिरोल है उसका आप स्प्रे करवा सकते हो, इमामेक्टिन बेंजोइट है उससे आप स्प्रे करवा सकते हो। तो जैसे समय समय पर आप आपसे बात होती रहती है तो आप जैसे अवसर मिलेगा तो आपको जानकारी दे देंगे सर।
1: जी सर। तो सर जी अपना किसान भाई खरीफ की फसल ले बोचावा अब तो उनकी खेत की फसल के लिए मतलब जी खेत की तैयारी के लिए जो अपना किसान भाई अबार काई काई प्रयास कर सके थे जिससे कि वहाँ की जो खरीफ की फसल ले वह चौकी हो।
0: जी खरीफ की फसल के लिए तो सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करवा के खेत को खुला छोड़ना है जुताई के 15 से 20 दिन पहले, और आप 15 से 20 दिन पहले बुआई के 15 सॉरी मई जून के नए महीने तो आपको गहरी जुताई करनी है।
1: देखो साहब फोन आयो छे एक किसान भाई से जुड़ना चाहपा। राम राम साहब।
0: राम राम साहब।
2: ओ राम राम भाई जी।
1: जी राम राम साहब कौन बोल रहे छो?
2: मैं सूरजवान पारिक बोलूं कोटपुर से।
1: जी सूरज जी काई समस्या छे?
2: अभी समस्या तो जय दिलाए तो जब घुनायन कटवा दे तो फिर वापिस खड़ा हो जाएंगे।
1: अच्छा सर।
2: यदि जड़ तो निकाला तो मेरे बहुत ज्यादा होगा, एक तो मतलब सार्वजनिक भी हो रहा है और पर्सनल भी हो रहा है अपना खेता।
0: जी राम राम साहब।
2: पास में बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो ऐसी दवाई बताओ ना जो आदमी मतलब डाल दी।
0: राम राम साहब।
2: राम राम डॉक्टर जी।
0: जी राम राम जी। कितने साल के हैं ये विलायती बबूल के पौधे?
2: अभी वो पौधे तो बेच दिए जैसे मान लो काट के।
0: कितने साल के?
2: 3 महीने में काम ले लिया है ना, फिर दोबारा वापिस हो गए तो 3 महीने में वापिस छूटा है।
0: देखो इनका तो कोई नियंत्रण नहीं है वैसे तो, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि दवाई डल। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है सर, इनका सबसे बढ़िया नियंत्रण ये है आप इनको जैसे खेत के आसपास लगा रखे, कहाँ पे लगा रखे हैं आपने?
2: खेत जो है ना अपने मकान के पास में खाली छोड़ रखा है, वैसे टेंट वेंट लगाने के लिए, ऐसे मान लो पशु सुबह के लिए भी हो रहा है अपना खेत।
0: जी राम राम साहब।
2: पास में बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो ऐसी दवाई बताओ ना जो आदमी मतलब डाल दी।
0: राम राम साहब।
2: राम राम डॉक्टर जी। राम
0: जी। राम राम जी। कितने साल के हैं ये विलायती बबूल के पौधे?
2: अभी वो पौधे तो बेच दिए जैसे मान लो काट के।
0: कितने साल के?
2: 3 महीने में काम ले लिया है ना, फिर दोबारा वापिस हो गए तो 3 महीने में वापिस छूटा है।
0: देखो इनका तो कोई नियंत्रण नहीं है वैसे तो, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि दवाई डल। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है सर, इनका सबसे बढ़िया नियंत्रण ये है आप इनको जैसे खेत के आसपास लगा रखे, कहाँ पे लगा रखे हैं आपने?
2: खेत जो है ना अपने मकान के पास में खाली छोड़ रखा है, वैसे टेंट वेंट लगाने के लिए, ऐसे मान लो पशु सुबह के लिए।
0: भी आपने लगाए थे वो ऑटोमेटिक लग गए थे?
2: तो वैसे लग जाते हैं वो तो पशुओं के उसमें आके गोबर में आके उग गए।
0: तो एक काम करो आप उसको पानी वगैरह देते होगे पौधे को?
2: यहाँ कभी भी नहीं डाला है तो बरसात से सेव रहते।
0: हाँ तो उसको एक काम करो उसके चारों तरफ हल्की हल्की खुदाई करवा दो।
2: अच्छा
0: जी। जैसे वो पौधा सूखता है ना, क्योंकि पौधा एक बार तो सूखेगा मई जून के महीने में या फिर अपने जो जाड़े का महीना होता है, जाड़े का जो मौसम होता है उस समय सूखता है। तो उस समय जब भी ये पौधा सूखे तो इसको आप जड़ सहित निकाल के उसके ऊपर एक काम करना, जो मिट्टी का तेल होता है ना।
2: अच्छा, मिट्टी वाला तेल मिलता नहीं है?
0: मिट्टी का तेल नहीं मिलता है तो आप एक काम करना उस पे जो यूरिया होता है ना अपना,
2: यूरिया खाद।
0: हाँ यूरिया खाद तो डाल देना,
2: इससे जल जाएगा?
0: बिल्कुल जल जाएगा इससे,
2: और फिर दोबारा फूटेगा नहीं?
0: नहीं नहीं फूटेगा पर, लेकिन उसको आप
2: भी ज्यादा हो जाता है वो
0: नहीं फूटेगा, लेकिन उसको जहाँ तक उसकी जड़ जा रही है वहाँ तक खुदाई करना है, ऐसे नहीं कि आप ऊपर ऊपर से खुदाई करवा दे उसकी।
2: फिर निकाल दें उसको, मतलब खुदाई करके क्या तो उसमें यूरिया डाल।

0: और अनिता जी अब स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि आज कुछ को कार्यक्रम से खेती बाड़ी को टाइम पूरा होते जा रहे थे तो श्रोताओं दिराव आ गया आशा ने
1: और अनिता ने
0: चालार करा राम राम सा
2: राम राम सा।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम इंडेक्स 1.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत का आगाज हम श्रोताओं कर रहे हैं मिस्टर आशिक फिल्म से। स्वर कुमार शानू का है, गीत के बोल इंदिवर के और संगीत जतिन ललित का।

श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जान फिल्म से स्वर, मनहर उदास और अलका याग्निक का है गीत की बोल, आनंद बख्शी की और संगीत आनंद मिलिंद का।

ये खूबसूरत नगमा अभी आपने सुना मिस्टर बेचारा फिल्म से, सर कुमार सानू का था, गीत के बोल समीर के और संगीत आनंद मिलिंद का। और श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दामिनी फिल्म से, सर कुमार सानू और अलका याग्निक का है, गीत के बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये सफर यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सौमित्र बोस। सौमित्र जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग।
0: आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और सात्विक चिराग की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीते। एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक हासिल किया। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। चर्चा की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चर्चा करते हैं इस पर, लेकिन पहले सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट।
2: पीवी सिंधु और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने आज दूसरी जीत के साथ शानदार प्रदर्शन जारी रखा। सिंधु ने डेनमार्क की अमाली शुल्च को सिर्फ 28 मिनट में 21-13, 21-15 से हराया। इससे पहले सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को हराया था। सिंधु अब क्वार्टर फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से भिड़ेंगी। दूसरी ओर सात्विक और चिराग ने ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हाइकल को सीधे गेम में 21-12 और 21-19 से हराया। अब वे जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जोड़ी से भिड़ेंगे। भारतीय जोड़ी ने पहले मुकाबले में इंडोनेशिया के मुंह पुत्रा एरवियन स्या और बगास मौलाना पर जीत दर्ज की थी। वहीं ओपनिंग राउंड में श्रीकांत ने सिंगापुर के लोह किन यू को हराया था। देविका ने जापान की एन निदाइरा को, जबकि बंसोड़ ने झांग वेन यू के खिलाफ जीत दर्ज की थी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: इस टूर्नामेंट में पीवी सिंधु बेहतरीन लय में नजर आ रही है। दो गेम में ही लगातार मुकाबले जीत रही है और बीच में जो एक गैप सा हो गया था 1.5 साल का, जिसमें उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, गेम से बाहर भी रही थी, अब वही पुरानी पीवी सिंधु जो 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट थी वो हमें दिखाई नजर आ रही है खेलते हुए।
1: देखिए, अभी टूर्नामेंट अभी जो बोल रहे हैं कि अभी कॉम्पिटिशन और मजबूत और टफ होने हो रहा है
0: जी।
1: नेक्स्ट राउंड का मैच जो है क्वार्टर फाइनल में अकाने यामागुची के साथ, वो काफी टक्कर का मैच रहेगा, क्योंकि हालांकि सिंधु का पुराना फॉर्म जो आपने बोला 2 बार मेडल जीत चुकी है, उसका उनका जो लीड है 15-12 का हेड टू हेड लीड है
0: जी,
1: मगर आंकड़े कुछ माने नहीं रखता। क्योंकि देखिए, सिंधु का जैसे आपने कहा कि कम बैक फ्रॉम इंजरी से वापसी में, ये अकाने यामागुची अगर थर्ड गेम तक पहुंच गया ये मैच बहुत टफ होगा। इसी से आपको एक्चुअल टेस्ट सिंधु को कल ही मिलेगा जब वो जापानीज के साथ खेलेंगे।
0: और सात्विक चिराग की भी बात करें तो अच्छा खेल किया, प्रदर्शन दिखाया उन्होंने, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं इस टूर्नामेंट पे ऑलरेडी, और किसी भी टूर्नामेंट में जब ये जोड़ी जाती है तो उनसे उम्मीदें रहती ही हैं कि वो जीत के आएंगे।
1: और ये खास करके इस टूर्नामेंट वो टॉप सीड है
0: जी,
1: और देखिए वो हमेशा कोई भी टूर्नामेंट खेलते हम और जीतने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमारा भारतीय की उम्मीद बहुत ज्यादा है। और देखिए कल क्या होता है, मगर एवरी डे इज ए न्यू डे, हर एक पेयर जो आता है कभी भी उलट फिर हो सकता है, मगर सात्विक और साक्षी जो हम बोलते हैं साक्षी के ऊपर हमारा काफी उम्मीदें हैं
0: जो टॉप सीड है, और 2019 और 2024 में इन्होंने जीत भी हासिल की थी। चर्चा करते हैं अब बॉक्सिंग पर। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीते और लड़कियों के अंडर 15 वर्ग ने शीर्ष स्थान हासिल किया। अंडर 15 गर्ल्स वर्ग ने 7 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन जारी रखा है, जबकि अंडर 15 लड़कों ने 2 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। 33 किलोग्राम वर्ग में अक्षिता ने रजत पदक जीता, 43 किलोग्राम में तन्वी ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं भूमिका ने 61 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लड़कों के अंडर 15 वर्ग में यश कुमार और मोहम्मद यासर ने अब्दुल्ला स्वर्ण पदक को अपने नाम कर लिया है। बेहतरीन प्रदर्शन रहा है

0: खिलाड़ियों का, और अंडर 15 अभी युवा खिलाड़ी हैं, आगे चल के उनको और भी मौके मिलेंगे और ये एक एक्सपोजर जो है काफी उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है।
1: हमेशा देखिए कोई भी जो हमारे सारे बॉक्सर्स जो हैं खास करके जूनियर डिवीजन में भारतवर्ष का हमेशा अच्छा प्रदर्शन रहा है, खास करके ये जो बच्चे हैं ये गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता है और रोहतक में जो हमारे बॉक्सिंग सेंटर है साई का
2: जी,
1: उसमें इनका सारा इनका ट्रेनिंग होता है, ईयर राउंड ट्रेनिंग होता है और यहाँ से बहुत सारे जो बॉक्सर्स है जो खेलो इंडिया एथलीट भी है खास करके उनको सपोर्ट मिलता है और बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ जो साई का जो तालमेल जो है ये देखने को मिलता है। अब अगर रोहतक सेंटर में जाएं तो आपको देखने को मिलेगा, खास करके 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स अगर भारतवर्ष में होगा और ये 2036 लॉस एंजलिस 2036 ओलंपिक्स अगर इंडिया में हो पाएगा तो ये हमारी इधर फ्यूचर जेनरेशन ऑलरेडी हम बिल्ड कर रहे हैं, मगर ये सब देखिएगा सब लोअर वेट कैटेगरी में है
2: जी।
1: और लोअर वेट कैटेगरी में हमेशा इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर
2: जी।
0: बात कर लेते हैं भारोत्तोलन पर। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इस वर्ग का स्वर्ण पदक कोरिया के वोन जू री को मिला जबकि चीन के जियान चेन ने रजत पदक हासिल किया। अजीत चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय भी बन गए। आज उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा, 174 किलोग्राम और कुल 314 किलोग्राम का वजन उठाया उन्होंने और गुजरात को जो मेजबानी मिली है उस तरह का प्रदर्शन करके भी खिलाड़ी दिखा रहे हैं।
1: खास करके ये जो चैंपियनशिप हो रहा है इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंसी और जिस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है गांधीनगर में। ये वेट लिफ्टिंग के ऊपर तो खास नजर सरकार का भी है, मगर ठीक है ये जो आपने जो अजीत का जो ब्रॉन्ज मेडल बोला है इसका प्रदर्शन तो बहुत बढ़िया रहा, मगर एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि ये जो फॉर्म है ये एशियन गेम्स में बरकरार रख पाते कि नहीं, क्योंकि खास करके आप देखिए अगर चाइनीज और कोरियन गेम्स की आपने जिक्र किया उनका जो वेट डिफरेंस है गोल्ड जीता वो काफी ज्यादा है, तो कम से कम 20 किलो का डिफरेंस है, 20 किलो वेट लिफ्टिंग में बहुत माने रखते हैं, मगर ठीक है आप अप्रिशिएट करना चाहिए कि अजीत का जो प्रदर्शन है और भारतवर्ष में 71 किलो में जो इस तरह से ब्रॉन्ज मेडल आए हैं ये काफी बेहतरीन है।
0: बात कर लेते हैं हॉकी पर। हॉकी इंडिया ने आज फ्रांस के पूर्व खिलाड़ी फेडरिक सोएज को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया है। सोएज भारतीय दिग्गज पीआर श्रेजेस की जगह लेंगे जिनका कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2025 में खत्म हो गया था। खुद भी एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं सोएज और काफी लंबा करियर रहा है, 15 साल उन्होंने फुटबॉल हॉकी खेला है और 1995 से लेकर 2010 तक, और कोचिंग भी किया उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में किया है, फिर रियो में किया, पेरिस में किया, तो अच्छा प्रदर्शन रहा और एक एक्सपीरियंस्ड कोच को लेकर आ रहे हैं।
1: जरूर आप देखिए हॉकी इंडिया जो भी सिलेक्शन करते हैं जो कोचेज आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन कोचेज, हमने बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन कोचेज देखे हैं, ये जो ये फ्रेडरिक सोएज है
2: जी
1: इनके एक्सपीरियंस का तो कोई सवाल पूछ नहीं सकता। हालांकि श्रीजेश का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, 5 टूर्नामेंट में 5-5 मेडल मिला है, जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मिला है, मगर उसको शायद इमोशनली हम सोचे तो शायद श्रीजेश के ऊपर हम थोड़ा सोच सकते हैं अरे श्रीजेश क्यों नहीं हुआ, मगर आप लॉन्ग टर्म विजन देखिएगा तो हमें हमेशा देखिएगा कि जब भी हमारे पास फॉरेन कोचेज आए हैं हमारी जूनियर टीम हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन दिया है और ये जो भी डिसीशन हॉकी इंडिया लेता है साई के साथ गवर्नमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ ये हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचा जाता है, खास करके जो 2036 ओलंपिक्स जो हमने बात की है जैसे बॉक्सिंग में हमने आपको की है हॉकी में भी सेम रूल और लॉजिक अप्लाई कर रहा है
2: जी।
0: महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया है कि उन्होंने भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता पहलवान खशाबा दादा साहेब जाधव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार देने का प्रस्ताव पहले ही भेज दिया है। सरकार ने पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय की कोल्हापुर पीठ को बताया कि 31 जुलाई को नामांकन की तारीख खत्म होने से काफी पहले पद्म पुरस्कार 2027 के लिए भी एक नया प्रस्ताव भेजा गया। एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और हेलसिंकी 1952 में याद आता है हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में उन्होंने कांस्य पदक भी अपने नाम किया था
1: जी। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला मेडलिस्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट दादा साहेब खशाबा जाधव
2: जी
1: ये रहे हैं।

0: और शायद एकमात्र जो ओलंपिक मेडलिस्ट है जिसको पद्मा अवार्ड नहीं मिला है। तो ये जो ये हमेशा जब भी गवर्नमेंट का अवार्ड आता रहता है ये चर्चा में रहता है मगर उनको कभी मिला नहीं। तो इस बार कोर्ट के जरिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं कि शायद सरकार इस बार सुन ले क्योंकि कोई डिजर्विंग वो तो पॉस्ट्यूमसली उनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था 2000 साल में मगर इतना देर तक शायद वेट नहीं करना चाहिए था।
1: बात कर लेते हैं क्रिकेट पर। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 14वें ओवर में 5 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। वहीं कल हुए बारिश बाधित मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: रायपुर में कल टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी कोलकाता ने 48 के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा दिए। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 19, वहीं फिन एलन ने 18 रन बनाए। अंगकृष्ण ने रिंकू सिंह के साथ 4थे विकेट के लिए 76 रन जुटाकर केकेआर को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। रघुवंशी ने ताबड़तोड़ 71, वहीं रिंकू सिंह ने नाबाद 49 रन की पारी खेली। कोलकाता ने 4 विकेट पर 192 रन बनाए। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी ने धमाकेदार अंदाज में शुरुआत करते हुए महज 20 पर 37 रन जुटाए। इसके बाद कोहली ने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर 2रे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी की। विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा और केवल 58 गेंद में अपना शतक पूरा किया। कोहली ने 3 छक्कों और 11 चौकों के साथ 105 रन की नाबाद पारी खेली। बेंगलुरु ने 5 गेंद शेष रहते 193 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद विराट कोहली ने कहा कि क्रिकेट का ये खेल व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक है।
3: Cricket is absolutely something that I truly love and I just give my heart and soul out there on the field whether I'm fielding or batting because it's going to finish one day and I want to make the most of every day that I'm on the field and just enjoy myself and have a lot of fun and look forward to pressure situation, look forward to scenarios where I'm feeling a bit of heat and then I challenge myself to say you know what, just go for it and when you cross the line it makes you a better player so you build your character slowly and surely when you keep performing under pressure and for me even after all these years and it's still the love for the game, I just love hitting the ball in the middle of the bat and that joy is still there and it's all God's grace and I'm very thankful and grateful.
2: इस मैच के दौरान विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मुकाबले खेलने का कारनामा भी अपने नाम कर लिया है। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: 14,000 से ज्यादा रन, 9 आईपीएल सेंचुरीज और लगातार 2008 से जो खिलाड़ी खेलता आ रहा है आज तक वैसा ही परफॉर्मेंस करता है। जब ट्रॉफी नहीं थी तब भी इनका प्रदर्शन ऐसा ही था, आज ट्रॉफी है, डिफेंडिंग चैंपियन है तब भी वैसा ही प्रदर्शन, कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं थ्रू आउट अपने करियर में।
0: सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं है, वो इतना शब्द यूज किया कैरेक्टर।
1: जी,
0: यहाँ विराट कोहली का कैरेक्टर का परिचय है। जो हम जो इनिंग्स जब हम डिस्क्राइब करते हैं, जो हम नहीं बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं कि विराट कोहली 60 बॉल्स में सेंचुरी बनाया, 11 चौका मारा, 3 छक्का मारा, हमने ये नहीं बोलता कि वो 8 डबल लिया।
1: ये
0: इनिंग्स को कैसा पेस किया, जो वो बहुत जरूरी है कि किसी को पकड़ के, एक ओपनिंग बैट्समैन को पकड़ के इनिंग्स को लेके जाए और बढ़ाया जाए। सिर्फ चौवा और छक्का तो हमको दिखता है, जो सिंगल्स और डबल्स में खेलता है वही खास बड़े प्लेयर के जैसे कोहली जैसा प्लेयर को, पेडिग्री वाला जो प्लेयर का, इससे का नमूना है और यही विराट कोहली दिखाया। खास करके लास्ट 2 मैचेस में आपको याद होगा 0-0 में आउट हुए थे, उसके बाद यही कैरेक्टर का परिचय है।
1: इसी श्रृंखला में एक नया नाम हमें अब जुड़ता दिख रहा है, वैभव सूर्यवंशी का, जिनका सिलेक्शन इंडिया ए के लिए जो श्रीलंका में होना है, जिसकी मेजबानी अफगानिस्तान, श्रीलंका, भारत कर, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ इंडिया ए की टीम में। और जिस तरह का प्रदर्शन वो लगातार करते आ रहे हैं, चाहे वो एशिया कप हो, अंडर 19 विश्व कप हो, अंडर 17 हो, लगातार आईपीएल में भी डोमिनेट करके खेल रहे हैं वैभव।
0: एकदम राइट सिलेक्शन है और दिस इज द टाइम कि उसको ब्रेक दिया जाए। जितना भी ब्रेक मिलेगा, जितना इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, खास करके 2 टीम के साथ जो खेलेंगे, श्रीलंका और अफगानिस्तान, और स्पेन ट्रैक में अगर ये प्रदर्शन रन बना सकते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो आपको देखिएगा इसका फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। और क्या जितना बोले उतनी ही कमी है, मगर फ्यूचर तो उनका बहुत ही ब्राइट है।
1: तो क्या हम कहें कि आयरलैंड और इंग्लैंड में जो होना है अभी श्रृंखला, उसके लिए वैभव तैयार है टीम में सेलेक्ट होने के लिए?
0: देखिए, तैयार तो है, जब तक ना आप उसको एक्सपोज करिएगा वेरियस पिच और वेदर कंडीशंस में, तब तक आपको उसका एग्जैक्ट परिचय नहीं मिलेगा। मगर व्हाइट बॉल क्रिकेट एक चीज है, रेड बॉल क्रिकेट है। तो टोटल आप, हमने कुछ क्षण पहले ही हमने विराट कोहली का बात किया है, कैरेक्टर तो वहीं से पता चलेगा।
1: और श्रोताओं, चलते चलते आपको बता दें कि पंजाब ने 15

0: 5 विकेट पर 135 रन बना लिए। और श्रोताओं, समय हो चला आपसे विदा लेने का। सौमित्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद,
0: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
3: Our discussions must advance.
4: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा सांझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है, इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
5: भारत के UAE को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो UAE से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
2: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
6: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर से संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से

0: सरफिरोजी। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सीपीएम के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर उन्हें एसपी वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: इंडियन दो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस

0: जाएंगे और वापस आएंगे।
1: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग

0: साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
1: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
0: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय, पक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेकिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is
4: लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का पहला गीत नया रास्ता फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी का लिखा गीत एंड दत्ता का संगीत।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। आर जी बर्मन के संगीत से सजा ये गीत लिखा है गुलजार ने, आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है गोलमाल।

फिल्म गोलमाल से लता मंगेशकर का गाया ये गीत आप सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में अगला गीत। इस गीत को लिखा है साहिल लुधियानवी ने, राजेश रोशन के संगीत से सजा फिल्म काला पत्थर का गीत।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार।
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है घर। गुलजार की बोल आर डी बर्मन का।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। गुलजार का लिखा, आजी बर्मन का संगीतबद्ध किया फिल्म घर से।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: आशा भोसले का गाया ये गीत सुनिए। शहरयार ने इस गीत को लिखा है, खय्याम का संगीत है, फिल्म का नाम उमराओ जान।

0: उमराव जान फिल्म से ये गीत आपने अभी सुना। शहरयार का लिखा, खय्याम के संगीत से सजा, आशा भोसले की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर।

0: या बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
0: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपके लिए की ये आखिरी प्रस्तुति। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। शागिर्द फिल्म का गीत है। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

शागिर्द फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत से सजा और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके लिए यहीं संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और

0: एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कुचामन सिटी राजस्थान के जिला मुख्यालय में 14 मई 1943 को प्रसिद्ध निर्माता ताराचंद बड़जात्या के यहाँ जन्मे राजकुमार बड़जात्या। खनन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 1962 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन पिता के अनुरोध पर राजश्री प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए इन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी।

राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी फिल्में शामिल रही हैं। राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्में मनोरंजन की मांग को हमेशा ही पूरी करती रही हैं। फिल्मों के वितरण और प्रोडक्शंस के कार्यों को पूरा पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़जात्या ने आरंभ कर दिया था। एक निर्माता के रूप में 1994 से लेकर 2019 तक ये सक्रिय रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में पिया के घर से लेकर मैंने प्यार किया तक का सफर इन्होंने पूरा किया। सह निर्माता के रूप में 1979 की फिल्म नैया से ये जुड़े।

राजकुमार बड़जात्या एक फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बड़जात्या परिवार का एक ऐसा सदस्य जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपने पारिवारिक व्यवसाय को बड़ी ही शिद्दत से निभाया। फिल्म निर्माण की अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक मूल्यों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। एक फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्मों से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बड़जात्या हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं, अभिनय, गीत संगीत के माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विषयों की सार्थक फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बड़जात्या सबसे पहले 1972 की फिल्म पिया का घर से जुड़े। बासु चटर्जी की लिखी और निर्देशित इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ताराचंद बड़जात्या ने।

राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म सौदागर, जिसके निर्देशक थे सुधेंदु रॉय, नूतन, अमिताभ बच्चन, पद्मा खन्ना अभिनीत, इस फिल्म के राजकुमार बड़जात्या सहयोगी निर्माता थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने तपस्या फिल्म में काम किया, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन अनिल गांगुली ने किया और निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। ये फिल्म अनु

अनुभवी बांग्ला उपन्यासकार आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म में राखी, परीक्षित साहनी, ललिता पवार ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। संगीत रविन्द्र जैन का था। इस फिल्म ने 1976 वर्ष की संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही राखी। सन 1980 में इसी फिल्म को तेलुगु भाषा में भी बनाया गया। सन 1976 की चितचोर, 1980 की एक बार कहूँ, 1984 की सारांश और 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में भी राजकुमार बड़जात्या एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में रहे।

1994 में आई हम आपके हैं कौन, HAH के यानि हम आपके हैं कौन, राजकुमार बड़जात्या की एक निर्माता के रूप में आई संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसे इनके पुत्र सूरज बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के बैनर तले इसका निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई ये फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने फिल्म वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा एहसास दिया। साथ ही साथ निर्माण और वितरण का तरीका भी बदला इस फिल्म ने। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य अवार्ड्स में इस फिल्म की

एच ए एच के बाद 1999 में आई निर्माता राजकुमार बड़जात्या की हम साथ साथ हैं। अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या, अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। ये फिल्म भी उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। ये फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन्स पर कनाडा के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर 1999 को स्क्रीन्स पर ये फिल्म आई।

2002 में फिल्म आई हम प्यार तुमसे कर बैठे। जुगल हंसराज और टीना राणा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ जो चितचोर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन। राशि प्रोडक्शंस की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था यशराज फिल्म।

राजकुमार बरजातिया द्वारा निर्मित सन 2006 में फिल्म आई विवाह। मुख्य कलाकार थे शाहिद कपूर और अमृता राव। रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें सगाई से लेकर शादी तक के सफर की कहानी को बखूबी प्रदर्शित किया गया था।

एक विवाह ऐसा भी, इस नाम की फिल्म लेकर आए राजकुमार बड़जात्या साल 2008 में। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोप्पिकर, सोनू सूद और आलोक नाथ ने। ये फिल्म आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित

हम राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

इसी क्रम में 2011 में सचिन पिलगांवकर के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म अखियों के झरोखों से की सीक्वल आई जाना पहचाना, जिसमें सचिन और रंजीता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म। ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रतन।

सलमान खान, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश अभिनीत ये फिल्म दर्शकों के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए

अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया था। यह राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की 58वीं फिल्म

0: राजकुमार बड़जात्या का 21 फरवरी 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जतन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों और प्रस्तुतिकरण के लिए हमेशा ही चिन्ही जाएंगी। और जब भी दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे, राजकुमार जी की कथा शैली और निर्माण कला के मुरीद हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 101.3 MHz पर। इस वक्त रात के 10 बजे हैं। पेश खिदमत है फिल्म संगीत।

आगाज किया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में गाए फिल्म आंधी के नगमे के साथ। कलाम गुलजार का है और मौसिकी राहुल देव बर्मन की।

अभी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में सुना फिल्म आंधी का ये नगमा। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म आपकी परछाइयां में। नगमा निगार हैं राजा मेहदी अली खां और मौसीकार मदन मोहन।

अदालत। जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना जिसे स्वर दिया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। आनंद बख्शी के लिखे शब्दों को सुरों में ढाला था कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का नाम था अदालत। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। अगली पेशकश किशोर कुमार के स्वर में फिल्म अनुरोध से। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। अगली पेशकश आनंद बख्शी का लिखा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में, आवाजें लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथियों की है और फिल्म का नाम है अर्पण।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। अगला गीत आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की मिलीजुली आवाजों में फिल्म कारवां से। कलाम मजरू सुल्तानपुरी का है और मौसिकी राहुल देव बर्मन की।

देखो देखो वो आ गया।

0: धूल का फूल। जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने इस फिल्म में महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को सुना। नगमा निगार थे साहिल लुधियानवी और मौसीकार एन दत्ता।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
0: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। अगली पेशकश राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत मदन मोहन के संगीत निर्देशन में आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है एक कली मुस्काई।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में फिल्म हसीना मान जाएगी से। गीत अख्तर रोमानी का है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश, आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे हमने चुना है फिल्म जाने दुश्मन से। वर्मा मलिक के लिखे शब्दों को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद रफी की आवाज में गाए फिल्म जानी दुश्मन के इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत अभी ही खत्म होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त रात के 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा सांझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।

0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनपिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.3 MHz पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस वक्त रात के 11:05 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं खत्म होती है। कल सुबह 5:53 पर पहली सभा की पेशकश के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शब खैर, जय हिंद।

एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस वक्त रात के 11:05 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं खत्म होती है। कल सुबह 5:53 पर पहली सभा की पेशकश के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शब खैर, जय हिंद।